सुप्रभात, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की तिथि 27, तदनुसार जुलाई 18, ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
1: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केशगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिसे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अयोध्या में श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। संध्या समय हर्षित मन से महाराज दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे, किंतु वहां रानी के कोप भवन में होने का समाचार सुनते ही सहम गए। आशंका ने उनके पांव बांध लिए। जिनकी भुजाओं में इंद्र का बल है, राजे जिनका मुंह जोहते रहते हैं, वही राजा पत्नी के क्रोध की कल्पना करके सूख से गए। आशंकित अवस्था में वो रानी के पास पहुंचे, जो मोटे मलिन वस्त्र धारण कर भूमि पर लेटी थी, आभूषण शरीर से उतार फेंक

राजा ने रानी से रूठने का कारण पूछा। उसे रुष्ट करने वाले मनुष्य तो क्या देवताओं का भी विनाश कर देने का वचन देते हैं। अपना वचन निभाने के लिए श्री राम की सौगंध उठाते हैं। राजा के वचन तथा राम की सौगंध का विचार कर रानी उठकर गहने पहनने लगी, जैसे कोई वन्य कन्या मृग को देखकर उसके लिए फंदा तैयार करने लगी हो। राजा पुलकित हुए और अगले दिन राम को युवराज पद देने का शुभ समाचार सुनाया। यह सुनकर कैकई के कठोर हृदय में ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, ये आकाशवाणी का चाहे बसा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण अनूप चलोटा के स्वर में।

बार कन्हैया अपने घर में माखन चोरी कर रहे थे और माँ ने देख लिया। बाद में माँ अचानक पूछ बैठी, कन्हैया अपने घर में मिठाई मिश्री दूध दही सब तो है, फिर तू हमेशा माखन चोरी क्यों करता है? और कुछ क्यों नहीं चुराता? तो कन्हैया

अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण अनूप जलोटा के स्वर में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह के 6:45 का समय होगा सुगम संगीत का। आप सुनेंगे के आर सेन के स्वर में। सुबह के 7 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जो हर चायवासा का। सुबह 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार सुबह के 8:15 पर। सुबह 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। सुबह के 8:40 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम।

की महक। आज आप सुनेंगे उड़िया लोकगीत, कलाकार होंगे सुरोभि पान और साथी। सुबह 9 बजे का समय होगा कार्यक्रम विविधा का। सुबह 9:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह के 10:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर के 1:10 पर आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा दोपहर के 1:20 पर। 2:55 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। 3 बजे आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 3:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। शाम के 4 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 4:02 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। शाम 5 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 5:02 का समय होगा कार्यक्रम विवरण का। शाम के 5:05 का समय होगा कार्यक्रम गुलदस्ता का, जिसमें आज आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा वर्षा जल प्रबंधन। उसके बाद आप सुनेंगे हो लोकगीत जगबंधु बारी और साथी को। मौसम की जानकारी के बाद आप सुनेंगे भेंटवार्ता मिश्रित खेती से लाभ कमाएं। भेंटवार्ताकार होंगे तुरेंद्र नाथ चंपिया, उनसे बातें करेंगे डोगरो बुड़ूली। कार्यक्रम के अंत में सुनेंगे पंच परगनिया लोकगीत प्रेमनाथ कुमार और साथी को। शाम के 6 बजे सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 6:02 का समय होगा बांग्ला कार्यक्रम सात रंग का। शाम के 6:30 का समय होगा आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम। शाम के 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची से सुनेंगे जिले में आजकल। शाम 7:15 का समय होगा श्रोताओं के फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि के 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि के 8:45 का समय होगा समाचार संध्या का आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 9 बजे। रात्रि के 9:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। रात्रि के 10 बजे आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि के 10:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि के 11:05 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का आकाशवाणी दिल्ली से। और रात्रि के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का चाय बसा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत केया सेन के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत की आसेन के स्वर में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जौहर चाईबासा। कार्यक्रम जौहर चाईबासा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के इस गीत से।

अभी आपने सुना फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म रजिया सुल्तान से लता मंगेशकर के स्वर में।

अभी आपने सुना फिल्म इज्जत का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

0: अहिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: परिवार जो बेटा क्रांति बेसरा नेहर में बोले परिस्थिति बोले सब वापस को रुआ धारा रे हम बोले रुआ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये
3: मोर नाम मंगल राय को गाँव बारिगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहाँ मना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे हत्तो तो घर आई में हमारे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए है
5: तुम लोग बुरा मिशन काम सोए अनिता तमसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा निका
6: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितमाई कोड़ा मिनिमल उड़ी ने बागिया तो कि दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तमा दुरुगम गया तब जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आपीले तन अलिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है हुआ गया बिटा हुरेन का
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए 8700014242।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
10: अभी आपने सुना यह जरूरी संदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चायवासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म उमराव जान के इस गीत से आशा भोसले और साथियों की आवाजों में।

अभी आपने सुना किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में फिल्म मिस्टर इंडिया का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है द ग्रेट गैम्बलर से, आशा भोसले और शरद कुमार की आवाज़ों में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

0: द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशय से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
3: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
3: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश प्रदेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं ये कहना चाहूँगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: वर्किंग टू स्ट्रेंथन ईच अदर्स,
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफटीए के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ. हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची है। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
7: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नास।
8: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मॉनसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sanjay Mattu. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off Burkhard Toli Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9 kilometre long Package 6 of the four-lane

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में एसआईआर अभियान के तहत आज सभी शहरी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की जल्द फॉर्म जमा करने की अपील। जामताड़ा सदर अस्पताल तोड़फोड़ मामले ने पकड़ा तूल। भाजपा और स्वास्थ्य मंत्री ने जच्चा बच्चा की मौत के बाद हुए हंगामे के लिए एक दूसरे पर मढ़े आरोप। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कल रांची रेल मंडल चलाएगा 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। पटना, दुमका और हजारीबाग रूट शामिल। झारखंड में मॉनसून की बेरुखी से जुलाई में भी बारिश का घाटा -40% पर अटका। खेती और धान की बुआई पर मंडराया गंभीर संकट। और रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन में आज होगा 135वें डोरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी का भव्य अनावरण। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार रहेंगे मौजूद। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में घर घर जाकर 97% मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म बांटने का काम पूरा हो चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आज राज्य के सभी शहरी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छूटे हुए शहरी मतदाताओं की सहायता करना और इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करवाना है। अगला शिविर 20 जुलाई को आयोजित होगा। उन्होंने शेष मतदाताओं से जल्द फॉर्म जमा करने की अपील की है।
1: इनमरेशन फेस है आपका 29 तक। आपका आवेदन आने के बाद उसका डिजिटाइजेशन कराना है, उसका बूथवाइज अलॉटमेंट करना है, उसका सीरलिस करना है। इसलिए यथासंभव आप जल्दी दे देंगे। उसमें कुछ त्रुटि होगा, मतलब ही बीएलओ आपका त्रुटि का करेक्शन करके करेक्ट फॉर्म जमा करने के लिए वो मदद कर सकते।
0: देवघर के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए बीएलओ तनुजा कुमारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। देवघर विधानसभा क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने उन्हें यह सम्मान सौंपा। तनुजा कुमारी ने अपने बूथ क्षेत्र में समय सीमा के भीतर 100% प्रपत्र वितरण और 100% डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जामताड़ा सदर अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद हुई तोड़फोड़ पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने पीड़ित परिवार को उकसाकर अस्पताल में हंगामा कराया।
2: क्या बीजेपी वाले को यह दिखाई नहीं दे रहा है? इतना

0: हिसर में हो गए हो, परिवार वाले तो 20,000 लालच देते ताकि छवि इरफान सर की खराब हो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने केस नहीं किया, जिला प्रशासन ने केस किया। हम तो जिला प्रशासन से मांग करते हैं जो दोषी है, चाहे भाजपा हो, चाहे वो हमारे पार्टी का हो, कोई भी हो कार्यकर्ता हो, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
1: इधर भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी ने आरोप लगाया कि परिजनों के सहज आक्रोश को डायवर्ट करने के लिए मंत्री के इशारे पर तोड़फोड़ की गई। बाउरी ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री अपनी छवि बचाने के लिए अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने से बच रहे हैं।
2: उनके इशारे पर कोई पदाधिकारी वहां पर इसका समाधान करने के लिए नहीं जाता है। 4-4.5 घंटे तक सड़क पर रहने के बाद लोग अधीर हो जाते हैं और अधीर होने का फायदा लेकर के कांग्रेस के लोग लोगों को उकसा करके इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी उनके इशारे पर वहां तोड़फोड़ का एक आडंबर रचा जाता है।
1: रांची में आयोजित ग्लिट्स एंड ग्लैम एग्जीबिशन का ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने शुभारंभ किया। जेसीआई रांची उड़ान द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में महिला उद्यमियों के विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। इस अवसर पर मंत्री ने महिला उद्यमियों से संवाद कर उनके उत्पादों और नवाचारों की सराहना की। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल कल से 5 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाएगा। अभ्यर्थियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे रांची दुमका, टाटानगर हजारीबाग रोड, रांची पटना और रांची गढ़वा रोड मार्गों पर इन परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। लंबी दूरी के यात्रियों की राहत के लिए इन ट्रेनों में सामान्य स्लीपर और मेमू कोच शामिल किए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य का कभी सबसे मजबूत नक्सली गढ़ रहा कोयल शंख जोन अब पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गया है। शीर्ष कमांडर रविंद्र गंजू की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा बल अब इस पूरे इलाके में माओवादियों के सारंडा बूढ़ा पहाड़ कॉरिडोर को स्थायी रूप से ध्वस्त करने के लिए व्यापक तलाशी अभियान चला रहे हैं। पलामू रेंज के DIG किशोर कौशल ने बताया कि इस पूरे जोन में अब माओवादियों का कोई भी बड़ा कमांडर और लेवी तंत्र सक्रिय नहीं बचा है।
3: इनका जो पूरा नेटवर्क है उसको एक तरीके से ध्वस्त किया गया है। तीनों ही जिलों में गढ़वा लगभग पूरी तरीके से फ्री हो गया है। पलामू में एक दो कुछ एलिमेंट्स इस तरीके के बचे हुए हैं जिस पर की पलामू पुलिस पूरी गंभीरता से काम कर रही है। लातेहार में भी जो इक्का-दुक्का तत्व हैं उनके खिलाफ भी लगातार आसूचना संकलन और अभियान चलाए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में उन सारे तत्वों का भी एक तरीके से समाप्ति कर ली जाएगी।
1: रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के सपारूम से अपहृत 5 वर्षीय बच्ची को पुलिस ने 12 घंटों के भीतर बिहार के गया जंक्शन के पास से सकुशल बरामद कर लिया है। ग्रामीण SP गौरव गोस्वामी ने बताया कि 3 लाख रुपए फिरौती मांगने वाले मुख्य आरोपी सहित 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य में मॉनसून की बेरुखी पर जुलाई में सामान्य से 40% कम बारिश दर्ज की गई है। इससे किसानों के सामने धान की बुआई का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम न बनने से सूखे जैसे हालात हैं। उन्होंने किसानों से वैकल्पिक खेती करने की अपील की है।
4: जिन इलाकों में निचले खेत हैं जहाँ पे पानी जमा होता है, अगर वहाँ अच्छी बारिश हुई है तो आप उसमें ट्रांसप्लांटेशन का काम कर सकते हैं। मिडिल और ऊपर वाले जो खेत हैं वहाँ पे आपको तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने से ही ज्यादा बेहतर होगा। मोटे अनाज या मड़ुआ या तिलहन दलहन मक्के जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है उसको करने से ही ज्यादा फायदा रहेगा।
1: रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन स्थित करकेट्टा ऑडिटोरियम में आज पूर्वाहन 10 बजे 135वें डोरंड कप 2026 के ट्रॉफी शो केस का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर खेल मंत्री सुदीव कुमार मुख्य अतिथि और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। रांची के खेलगांव में कल 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अजय नाथ सहदेव ने इसका उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में राज्य के पांचों प्रमंडलों के कुल 240 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पहले दिन के मुकाबलों में संथाल परगना, दक्षिणी छोटानागपुर और उत्तर छोटानागपुर की टीमों ने अपने अपने मैच जीतकर शानदार शुरुआत की। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, राज्य में बारिश कम, सुखाड़ को देखते हुए योजना बनाएं। हिंदुस्तान के अनुसार गिरिडीह से 25 लाख रुपए का इनामी माओवादी अजय महतो गिरफ्तार। प्रभात खबर की सुर्खी है, राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में अब लिखित परीक्षा अनिवार्य। दैनिक जागरण के शब्द हैं, देश में चली पहली हाइड्रोजन ट्रेन, पांचवा देश बना भारत। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य में एसआईआर अभियान के तहत आज सभी शहरी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की जल्द फॉर्म जमा करने की अपील। जामताड़ा सदर अस्पताल तोड़फोड़ मामले ने पकड़ा तूल। भाजपा और स्वास्थ्य मंत्री ने जच्चा बच्चा की मौत के बाद हुए हंगामे के लिए एक दूसरे पर मढ़े आरोप। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कल रांची रेल मंडल चलाएगा 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, पटना दुमका और हजारीबाग रूट शामिल। झारखंड में मॉनसून की बेरुखी से जुलाई में भी बारिश का घाटा -40% पर अटका। खेती और धान की बुआई पर मंडराया गंभीर संकट। और रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन में आज होगा 135वें डोरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी का भव्य अनावरण। खेल मंत्री सुदीव कुमार रहेंगे मौजूद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे उड़िया लोकगीत, कलाकार हैं सुरोबी पान और साथी।
1: कौन कौन काचो आनी छो देखा।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आपने सुना उड़िया लोकगीत कलाकार थी सुरोबि पान और साथी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। 18 जुलाई को हर साल विश्व स्तर पर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह दिवस दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और रंगभेदी विरोधी नेता नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके मानव अधिकारों और शांति के संदेश को याद करने के लिए मनाया जाता है। श्रोताओं, बातें हम आपसे और भी करेंगे। सुनते हैं ये गीत फिल्म रोजा से। आवाजें हैं SV बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: आले नवागे नेहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहेगी आम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोर आए को गांव वाले जरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
5: मुतम बुरान सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुकूर मिनाया यापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा मिका
6: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा उरो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा दुनिया में बुरी बुरी ने बागिया तोड़ के यूं दुना से यार पी कोलो पुलिस कोलो उन्हीं लड़ाई चलाओ तमे दूर रंग गया तब जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन तो ऐसे आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिना ही रो जिता हुरा रे मिना ही रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम ते ही ना मिल आप ही लेते ना।
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: इस जरूरी संदेश के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम विविधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, कुछ ही पल में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से विशेष कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है नीति शुक्ला।
1: जल ही जीवन है, ये कहावत तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसे सही मायने में समझकर और इसके लिए काफी अच्छा काम किया है आज की हमारी इस शख्सियत ने, जिनसे कि हम आपको मिलवाने वाले हैं। मैं हूँ आरजे नीति और हमारे आज के जो गेस्ट हैं, इन्हें पॉन्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने तालाब के संरक्षण के लिए, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए काफी अच्छा काम किया है। और यहां तक कि इनका जिक्र मन की बात प्रोग्राम में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। तो आइए स्वागत करते हैं रामवीर तंवर जी का। बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: रामवीर जी। आपको पॉन्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन कब इसकी आपने शुरुआत की? क्या आपने सोचा कि अब तालाबों का संरक्षण करना है, इन्हें पुनर्जीवित करना है?
2: देखिए, ये अचानक से ऐसी कोई घटना नहीं है जिसकी वजह से मैंने काम किया हो। इस तरह की घटनाएं किताबों में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये है, मेरा मानना है कि वो धीरे धीरे धीरे धीरे ना कोई भी इनिशिएटिव आपको अपनी ओर खींच लाता है, और उसके लिए जिम्मेदार होती है कई बार आपकी चाइल्डहुड यादें, बचपन में आपने जो देखा है और जवानी में आप जो नहीं देख पा रहे। मैं 10th के लास्ट तक अपने गांव में भैंसों को चराने जाता था जंगल में, और मैंने अपना पूरा होमवर्क किसी तालाब के या नहर के किनारे किया। मुझे याद है मेरे गांव से और जंगल जाते समय पे एक नहर पड़ती है बहुत छोटी सी, और हमें वो नहर क्रॉस करनी होती थी, अदरवाइज तो 2-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। जब हम जाते थे, मैं 3री-4थी क्लास में जब था तो तैरना नहीं आता था, बहुत छोटा बच्चा था, तो हम भैंस की पूंछ पकड़ के क्रॉस करता था मैं, और कई बार भैंस जो है वो बीच नहर में जाके लेट जाती थी, तो हमें भी लेटना पड़ता था उसके साथ, तो उस वजह से तैरना सीखा। लेकिन आई एम सो सैड टू टेल यू कि वो नहर अब एक नाला है, और वो ऑफिशियली नाला है। वहां पे सिर्फ अभी पूरे शहर का इंडस्ट्रियल वेस्ट और म्युनिसिपल वेस्ट वहां से बह के जाता है। आप वहां किनारे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, जबकि उस नहर का पानी कई बार हमारे मुंह में चला जाता था, पेट में चला जाता था। मुझे कभी याद नहीं है कि हम बीमार हुए हों। वही नहर, मैं कई बार जब वहां से गुजरता हूं तो आज अपने रुमाल को नाक पे रख के गुजरता हूं, दुख होता है। जब मैं 11वीं क्लास में गांव से बाहर 20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाता था बस में, डेली मुझे 25-30 किलोमीटर जाना था, 25-30 किलोमीटर आना था, तो वहां जब मैं रास्ते में ये देखता था कि जो भी रोड के किनारे के तालाब है वो धीरे धीरे धीरे धीरे लैंडफिल साइट बनते जा रहे हैं, क्योंकि आदत होती है कि जब भी हम जाते हैं हाथ में जो भी कचरा होता है वो सबसे पहला निशाना हमारी बनती है कोई नाली, नाली नहीं मिली तो नाला, नाला ना मिले तो नहर, नहर नहीं मिली तो तालाब। तो आज भी आप गांव में देखिए, तालाब सबसे इजी टारगेट है कचरा फेंकने के लिए। तो जब मैं बाहर निकला गांव से और मैंने देखा कि ये मेरे गांव की समस्या नहीं है, ये तो सब जगह सेम इश्यू होता जा रहा है। जब मैं अपना ग्रेजुएशन में था, कॉलेज

0: स्टेज में था, तो पॉकेट मनी के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मेरे पास दो स्टूडेंट थे और दोनों भाई थे। उसके पिताजी ने कहा पूरे दिन इधर उधर कंचा खेलते हैं, सारे दिन उधर जाते हैं, तो तुम अगर इनको पास करवा दो 33% से तो मैं तुम्हें जो है इनाम दूंगा। मैंने उनको पढ़ाया और उनके 70% आ गए। तो उन्होंने इतना प्रचार किया कि मेरे पास 40-50 बच्चे आ गए। वो ऐसे प्रचार करते थे, किसी का बच्चा पास नहीं हो रहा हो तो रामवीर के पास भेज दो पास हो जाता है, क्योंकि मुझे मैथ फिजिक्स से बहुत प्यार था। तो मेरे पास इतने सारे बच्चे हुए। वीकेंड पे हमने एक्टिविटी करना शुरू किया। एक्टिविटी क्या थी कि गांव में नए नए समर सर्विल लगे थे, पंप, सबके घर में समर सर्विल पंप है। एक गिलास पानी की जरूरत है तो वो 1000 लीटर पानी निकालेंगे। छोटे बच्चे को नहाना है तो उसको बाल्टी नहीं लाएंगे, उसके लिए बस समर सर्विल का स्विच ऑन कर देंगे, जाओ बेटा नहा लो। अब 10,000 लीटर पानी में बच्चा नहा रहा है। सोचिए, जो 5 लीटर बच्चा नहा सकता था वो 10,000 लीटर में नहा रहा है, और वो ड्रिंकिंग वाटर, उसकी कॉस्ट जोड़ेंगे 20 रुपए के हिसाब से तो लाखों रुपए में बैठ रही है वो। पूरे परिवार की इनकम 10,000 रुपए है महीना है, और पानी बहा रहे हैं 5 लाख रुपए का। तो हमने डिसाइड किया खेल खेल में कि जो भी हमारे गांव में सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करता है उसके घर के सामने हम जल ही जीवन लिख के आएंगे चुपचाप। वो हमारी एक्टिविटी थी और वो हम वीकेंड में करने वाले थे। जब वो 1 महीना किया, 2 महीना किया, बहुत सारी गालियां भी खाई, कई पेरेंट्स ने अपने बच्चे हटा लिए। हमने सोचा था अच्छा पढ़ाते हो तुम, तो इनको ऐब करना सिखा रहे हो, लड़ाई करना सिखा रहे हो लोगों के साथ। तो कुछ बच्चे हट गए, कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। नेक्स्ट फेज में हमने क्या किया कि एक जगह हम बैठ के मीटिंग करने लगे। गांव की जो चौपाल बनी हुई है, चौपाल पे किया, हमने उसका नाम रखा जल चौपाल, और हमने उस ग्रुप का नाम दिया था जागरूक युवा समूह। जब हमने मीटिंग किया और सब कुछ हुआ तो कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोग आए। एक बार क्या हुआ, किसी ने फोटो क्लिक करके मीडिया में लगाया, अखबार में आया, अखबार से डीएम साहब के पास गया। डीएम साहब ने कॉल किया उन भैयाओं के पास कि उन बच्चों को बुला के लाओ। हमको बुलाया, उन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा कि अगली बार मैं आऊंगा। वो अगली बार आए तो हम तो 20 लोग थे, वो आए तो 500 लोग इकट्ठा हो गए। देन आई रियलाइज कि ये जो हम कर रहे थे ये कोई छोटी चीज नहीं है। जिस काम के लिए खुद डीएम साहब, कलेक्टर साहब आपके गांव में आ सकते हैं, जिन्होंने अभी तक गांव देखा ही नहीं हमारा, और उनको पता चला, देन आई रियलाइज कि वी आर डूइंग समथिंग बिग। और वहां से ये फिर मैंने कॉलेज किया, 2 साल जॉब के साथ भी मैंने यही किया, अवेयरनेस कैंपेन चलाया, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन थोड़ा बड़ा हो गया टाइम के साथ। और फिर मैंने सोचा कि जॉब छोड़ के फुल टाइम अभी मैं ये करूँ। वहां से निकल के धीरे धीरे यहाँ तक पॉन्डमैन की जर्नी शुरू हुई।
1: तो पॉन्डमैन की जर्नी इतनी आसान तो नहीं रही होगी, कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, तो किस तरह की मुश्किलें सामने आई?
0: शुरुआती दौर में क्या था, आपके पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास टीम नहीं थी, आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपके पास रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं था जिसको आप ये बोल सके कि मैंने वो काम किया है जी, आपको लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे। इंडिया में क्या है, वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। कोई भी वाटर बॉडी है, तालाब है, पोखर है, कुआं है, कुछ प्राइवेट हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आप उसको बिना परमिशन के गंदा तो कर सकते हैं लेकिन बिना परमिशन के साफ नहीं कर सकते हो। साफ करना है तो आपको एनओसी लानी पड़ेगी। तो एनओसी के लिए हम चक्कर काटते थे। हमसे हर पूछता था एनओसी तब देंगे, पहले बताओ एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा। अब एक्सपीरियंस हो तो बताए, हमने तो जीरो एक्सपीरियंस, हमने कभी तालाब ही साफ नहीं किया। गांव वालों से बात करें वो कहते थे कि यार तुमने कभी किया ही नहीं कुछ, तो ये कैसे करोगे। तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं था जिसको हम उदाहरण के तौर पर बता सके कि हमने वहां पे किया है, उसको देखिए। दूसरा, आप तालाब साफ करेंगे आप मैनुअली कितना कर लेंगे, 5 किलो कचरा हटा लेंगे, 100 किलो हटा लेंगे, लेकिन बड़ा अगर आपको इम्पैक्ट करना है तो मशीन चाहिए, आपको डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मैन पावर चाहिए, टूल्स चाहिए, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं था। हमने क्या किया कि जितना हमारे बस की है उससे करते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया से, कॉलेज से जितने लोग जुड़े थे अपने साथ, उन सबको हमने साथ जोड़ा और क्लीन अप ड्राइव शुरू किया। मुझे याद है जब हम पहले दिन क्लीन अप ड्राइव किया था तो हमें लगा था बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन मैं और मेरा दोस्त दो ही रह गए कोई नहीं आया, हम दो ही लोग हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी उस दिन, है ना। हम दोनों को तो जुनून था, सबको थोड़ी ना। हम गए वहां पे, हमने फावड़ा शुरू किया। अब बहुत सारे लोगों के साथ तो आपके अंदर हिम्मत होती, लेकिन हम तो दो ही लोग थे। और जब वहां पे हम तालाब साफ कर रहे थे, कोई भी हमसे निकल रहा था क्यों कर रहे हो, कहां से हो, तो हमारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम जवाब दे सके कि हम ये कुछ करना चाहते हैं। कोई भी आता था, हाँ भाई कौन हो, क्यों साफ कर रहे हो, तो हम ये कहते थे जी नगर पालिका से है। अच्छा अच्छा उधर भी करके जाना। मैंने कहा हाँ जी बाबू जी करके जाएंगे।
1: तो रामवीर जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि बात तो सही है कि आपको सफाई का किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जो कचरा होता है वो किसी भी तरह का कचरा हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो कपड़ा और पॉलिथिन बैग्स हो, उसमें मेडिकल वेस्ट भी हो सकता है, तरह तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, कांच हो सकता है। तो किस तरह के प्रिकॉशंस आप लेते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सामने आई?
0: देखिए, हम शुरुआत में कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं कि हम बता सके मेडिकल वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये प्लास्टिक वेस्ट है, तो हमारे लिए तो सब एक प्लास्टिक में बंद कचरा। कचरा है, हम तो सबको ऐसे ही उठा के फेंक देते। तालाब क्या है, वो सिंक होल है, आपके घर

0: जो सालों से वहीं पे पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। और कई सारे तालाबों में तो ऐसा भी हमने देखा, क्योंकि जैसे जलकुंभी और सिल्ट और गाद और सिलज हो जाती है तो जानवर भी फंस के मर जाते पानी पीने के चक्कर में, लेकिन उसमें गाद इतनी सारी हो जाती है,
1: फंस
0: उस
1: जाते
0: कचरा
1: हैं।
0: डलते वहीं फंस जाते हैं। तो कई तालाबों में सहता हुआ हमने पानी निकाला तो नीचे ऐसे कंकाल के कंकाल खड़े हुए मिले, जो नीचे फंस गए थे, पानी में डूब गए थे वापस, ऐसे पड़े हुए मिले। बहुत दुख लगा उनको देख के हमें, क्योंकि गांव वाले को लगता था भैंस चोरी हो गई है। भैंस चोरी नहीं हुई थी,
1: डूब गई
0: भैंस
1: थी।
0: डूब के मर गई थी तालाब
1: ओ,
0: में।
1: जब आप कचरा उठाते हैं, आपकी टीम जाती है किसी लोकेशन पर, तो किस तरह से वो कलेक्शन करते हैं कि उन्हें हार्मफुल इफेक्ट से
0: देखिए, उसके लिए
1: मुक्त।
0: तो सेफ्टी टूल्स होते हैं, एक स्पेशली ग्लव्स आते हैं
1: जी
0: जो इस तरह के वेस्ट को एक तरह से उठाने के लिए काम आते हैं। वहां पे प्रॉपर मास्क, और हमारे पास ना एक ड्रेस होती है प्रॉपर
1: अच्छा,
0: जो पूरा पहन
1: बूट्स
0: लेते हैं, तो
1: वगैरह
0: यहाँ तक आती है वो बहुत मोटी होती है, प्लस उसमें पानी भी नहीं घुसता है। सेफ्टी
1: पहनकर।
0: किट होती है, तो उसी को पहन के वो तालाब में घुसते हैं। एक तो आपके कपड़े भी गंदे नहीं होते, प्लस आपको नहीं पता कि पानी में क्या केमिकल घुला हुआ है, तो वो भी आपके टच में नहीं आता है। और वो उसी तरह से फिर वो उठाते हैं। अब तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नगर पालिका गाड़ियों में भी अलग अलग बॉक्स बने हुए होते हैं, क्योंकि हम कचरे को निकाल तो सकते हैं लेकिन उसको अपनी मर्जी से डिस्पोज नहीं कर सकते,
1: जी
0: क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक्स जगह से उठा के वाई जगह पे डाल दूंगा,
1: सही
0: बात
1: बात
0: तो
1: है।
0: एक ही हुई। तो इसलिए हम जब भी कोई तालाब करते हैं तो वो एक उसमें मल्टीपल पार्टी होती है, एक ट्राईपार्ट एग्रीमेंट होता है। एक होता है कॉरपोरेट या स्पॉन्सर, एक होता है हम एग्जीक्यूटिंग पार्टनर, एक होता है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जहां पे भी उनका निस्तारण एक प्लांट है वहां तक
1: सही
0: उसको
1: जगह तक
0: लेके जाए।
1: पहुंचाए।
0: जी जी लेकिन अभी क्या है, टाइम के साथ हमें भी नॉलेज हुई है, तो उसको अच्छे से सेग्रीगेट करते हैं, और जिस तरह से उसका एक आधुनिक तरीका होना चाहिए उसको सेग्रीगेट करने का, निस्तारित करने का, उसी को उसी से निस्तारित किया जाता है। क्योंकि तालाबों में सिर्फ दो तीन तरह का ही वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट तो तालाब के अंदर चला जाता है, स्लज ले लेता है। इनऑर्गेनिक वेस्ट जूते, चप्पल, प्लास्टिक, ये सारे हमने क्या है, कुछ स्टार्टअप्स के साथ कोलोबरेट किया हुआ है। वो प्लास्टिक उनको देते हैं, उस प्लास्टिक से हमें वो बेंच, ट्री गार्ड, मेज, उसको मोल्ड करके वापस से पिघला के वो हमें देते हैं, और उसी बेंच को हम तालाब किनारे रख देते हैं वापस से लाके,
1: अच्छा,
0: ताकि उसी बेंच पे बैठ के लोग शाम को फिर तालाब को निहारे।
1: तो पूरा आपने एक ये सिस्टम क्रिएट
0: यस
1: कर दिया
0: यस
1: है,
0: यस
1: तो
0: यस
1: ऑटोमेटिकली वो
0: बिल्कुल
1: अच्छे तरह
0: बिल्कुल
1: से, वो जो कचरा है वो जा रहा है और स्टार्टअप
0: यस यस
1: उसे
0: यस
1: किसी अच्छे फॉर्म में लेकर वापस
0: बिल्कुल
1: कर रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो जब आप तालाबों को पुनर्जीवन देने की कोशिश करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, तो लोकल्स का किस तरह से सपोर्ट मिलता है या विरोध करते हैं, क्या रिएक्शन
0: देखो,
1: होता है?
0: लोकल दोनों तरह के ही है। जिन लोगों ने तालाब के किनारे घर बनाया हुआ है, उनका हमेशा सपना रहता है कि अगले साल 100 गज और कब जाएंगे, उससे अगले साल 100 गज और एंक्रोचमेंट करेंगे। उनका जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ना तालाब को बचाने की, वो सबसे ज्यादा तालाब को कब जाने की फिराक में रहते हैं। और ये 90% सक्सेस रेट है मेरी इस बात का। आप कहीं भी जाके देखिए, तालाबों को उन लोगों ने कब्जाया हुआ है जो तालाब के किनारे पे रहते हैं, क्योंकि वो उस जगह को अपनी मानने लगते हैं। उनका डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा है तालाब से, इनडायरेक्टली तो बहुत सारे हैं। भैया, पर्यावरण बच रहा है, आसपास का माहौल ठंडा होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलती है।
1: जी
0: डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली तब मिलता था जब पानी पीते थे उस तालाब से, जब उसमें नहाते थे, जब उसमें से मटका भर के लाते थे। तो इसलिए अब उसको लैंडफिल की तरह यूज करते हैं। ऐसे लोग तो हमेशा विरोध करते हैं जो उसको कब्जाना चाहते हैं, कुछ भी करके आपका काम रुकवाना चाहते हैं। दूसरे टाइप के लोग हैं जो थोड़े अवेयर हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि सपोर्ट करने वाले लोग अभी भी भारत में विरोध करने वालों से ज्यादा हैं, इसलिए शायद हमारा काम चल भी रहा है। दूसरा, जो अलग अलग टाइप के लोग मिले, कुछ लोग हैं जैसे आज हमने तालाब पे काम शुरू किया, शाम तक आ जाएंगे, पहले ये बताइए पैसा कहाँ से मिला, क्यों कर रहे हो, वो सारे लोग हैं। कुछ होते हैं जो अच्छी सलाह भी देते हैं कि भाई यहाँ पे ये पेड़ लगाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों को इसलिए उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं, इसलिए हम जन भागीदारी करते हैं उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि तालाब एक दिन में तो मरा नहीं होगा, तालाब को मरने में 30, 40, 50 साल लगे हैं, और तालाब को मरते हुए उन्हीं लोगों ने देखा है जो उस गांव में रहते हैं, इसलिए उस तालाब के बारे में सबसे ज्यादा, चाहे उसकी हिस्ट्री हो चाहे मरने की कहानी हो, उन्हीं लोगों को पता है जो वहां पे रह रहे हैं, इसलिए हम उसको पार्ट बनाते और हम बताते हैं कि आपको ही रेस्टोर करना है, हम तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने आए हैं। तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बहुत विरोध भी करते हैं।
1: तो जैसे आपने एक बार किसी तालाब की सफाई कर दी, उसको पुनर्जीवन मिल गया, तो बाद में उसकी कौन देखभाल करता है?
0: अब मान लो अगर हम घर बना रहे हैं, या मेरा खुद का खेत है, या मेरा खुद का प्लॉट है, हमेशा वही देखभाल करेगा जिससे उसकी इनकम जुड़ी हुई है या जो ऑनर है उस जगह का। तालाबों के साथ इशू क्या है, तालाबों का कोई ऑनर नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब तालाबों को रेस्टोर करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि तालाबों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाए। सेल्फ सस्टेनेबल बनाए मतलब तालाब अपने मेंटेनेंस का खर्चा खुद निकाले।

0: वो
1: है ना,
0: कैसे?
1: तालाब अपने लिए इनकम करे। सिंगाड़ा कहाँ से आता है? तालाबों से। लोटस कहाँ से आता है? तालाबों से। मछली कहाँ से आती है? तालाबों से। और आजकल ये बिहार में तो मखाना देखिए, तालाबों से। बहुत सारी चीजें हैं जो तालाबों से आती है। और अब दिल्ली में, गुड़गांव में तो तालाब इको टूरिज्म के लिए, आप तालाब के किनारे रेस्टोरेंट खोलिए और एक दूसरी जगह खोलिए, तालाब किनारे वाला के इनकम ज्यादा होगी। तो तालाब अपने लिए इनकम करना सीख, तो तालाबों की इज्जत भी बढ़ेगी। और इज्जत बढ़ेगी मतलब तालाब के किनारे वाले जो रेस्टोरेंट है या कोई भी चीज है वो आपको मेंटेन करेंगे। तो इसीलिए हम तालाबों को इस तरह से एक्वा कल्चर, इको टूरिज्म या किसी ना किसी एक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका अगर कोई 5 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो वो 50,000 रुपए तालाब के मेंटेनेंस पे खर्च करें। अदरवाइज तो फिर हम अपने ऊपर ले लीजिए भाई, अगर हम ये उम्मीद करके चलें कि मैंने तालाब को रिस्टोर कर दिया और अब जनता इसको खुद ही मेंटेन कर लेगी, तो हम भी जनता है। हम महीने में कितनी बार जाते हैं आसपास के तालाबों को मेंटेन करने के लिए? मैं कितनी बार जाता हूँ, आप कितनी बार जाते हैं, आप और जो इस तरह की बातें करते हैं वो कितनी बार जाते हैं? तो तालाबों को हमेशा वही मेंटेन करते हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कुछ फायदा।
0: तो जैसे आपने किसी तालाब को रिवाइव किया और कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आप पलट कर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर पक्षी आने लगे, जीव जंतु आने लगे, एक जनजीवन वहां पे पनप रहा है, तो देखकर कैसा फील होता है, क्या इमोशंस होते
1: बहुत
0: हैं?
1: अच्छा लगता है।
0: कोई एक्सपीरियंस भी हो तो बताइए।
1: हम क्या है, हमारे एक यूएसपी है तालाब रेस्टोर करने का। हम जब भी कोई तालाब बनाते हैं तो उसके बीच में नेस्टिंग आइलैंड बनाते हैं,
0: अच्छा,
1: बीच में छोटे छोटे टापू बनाते हैं। उस टापू पे वहीं की लोकल नेटिव घास भी लगाते हैं। उसका हमारा जो पर्पज है नेस्टिंग आइलैंड बनाने का, वो ये है क्योंकि हमें लगता है कि देखो पिछले 50-100 साल में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आई है। आजकल तो जो घरों में फिल्टर है वो भी AI वाले आ रहे हैं, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी आई किसके लिए है? इंसान ने बनाई है, इंसान के लिए आई है। आज से 100 साल पहले एक तालाब जिसमें इंसान भी उतना ही डिपेंड था उस तालाब पे और एक पक्षी भी उतना ही डिपेंड था। इंसान के पास तो पानी आ गया, पाइपलाइन से आ गया, RO से आ गया, रिमोट से आ गया, लेकिन उसके लिए तो आज भी उतना ही रिलेवेंट है वो तालाब। तो जैसे ही मेरी पूर्ति हुई, जैसे ही मेरी जरूरत खत्म हुई, अब मैं तालाब को पाट दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को मार दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को कूड़ा घर बना दे रहा हूँ? नहीं भाई, आपके लिए ही तो टेक्नोलॉजी आई है, उनके लिए थोड़ी ना आई है। वो तो आज भी तालाबों पर उतने डिपेंड है। दूसरा, अभी पॉपुलेशन उतनी है, ट्रैफिक साउंड उतना है, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि अब डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल या तो तालाब जो है वो शहर के बीच में आ गए या रोड किनारे आ गया। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पे बैठने की व्यवस्था करते हैं
0: पक्षियों के।
1: बिल्कुल, आप और मैंने अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए। आप इस साल बनाइए आईलैंड और अगली साल देखिए, कम से कम आपको 100 बर्ड्स मिलेंगे, एक्वेटिक बर्ड्स मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर बत्तखें मिलेंगे, क्योंकि बीच में फिर अब वो ना घोंसला रख सकती है, बीच में वो अपना नेस्ट बना सकती है, बीच में अपने बच्चों को पाल सकती, अपने बच्चों को ट्रेन कर सकती है। मैं अभी 1 महीने पहले गया था एक तालाब पर, ग्रेटर नोएडा में हमने वो डेवलप किया था, दुजाना गांव में। मैंने बीच में देखा तो मिट्टी के ना बहुत सारे छोटे छोटे होल थे नेस्टिंग आइलैंड के ऊपर, वहां बत्तखों ने अपने बच्चे छिपाए हुए थे और पूरा तालाब एकदम बत्तखों से भरा हुआ है। अब सोचिए अगर वो बीच में नहीं होता, किनारे पे तो कोई नहीं रखेगा, रखेंगे भी तो कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, कोई बच्चा उठा लेगा। तो जब भी मैं एक ऐसे तालाब पे जाता हूँ जो मैंने 2 साल पहले रेस्टोर किया था और आज पूरा पक्षियों से भरा हुआ है, बत्तखों से भरा हुआ है, जलीय जीवों से भरा हुआ है, उसको देख के जो तसल्ली मिलती है दिल को, बुरा नहीं लगता कि मैंने जॉब छोड़ दी।
0: अब मैं इसी पे आ रही थी कि इतना मुश्किल रहा होगा कि जॉब छोड़ के आप फुल टाइम इस काम में लग रहे थे, अपने डिसीजन से ज्यादा मुश्किल रहा होगा घर वालों को कन्विंस करना, उन्हें समझाना, क्योंकि आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर चुके थे, तो उसके बाद कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को?
1: क्या है, 5 भाई बहन है, अभी मैं सबसे छोटा हूँ, और मेरी मम्मी बताती है कि हम 5 नहीं, हम 10 भाई बहन थे, 10 में से 5 नहीं रहे, 5 बचे, और 5 जो भी नहीं रहे वो गरीबी के कारण नहीं रहे। 5ों में से भी मैं ऐसा हूँ जिसने 11th क्लास में पढ़ाई की, पहली बार घर का सबसे छोटा, क्योंकि मेरे बाद तो नेक्स्ट जनरेशन शुरू होने वाली थी, हमारे बच्चे आने वाले थे, तो आई वॉज द पर्सन जिसने 11वीं क्लास में एडमिशन लिया, और मैं कॉलेज गया पहली बार, और जिसने पहली बार MNC में जॉब भी की। तो मेरे घर वालों के लिए तो कितना बड़ा अचीवमेंट था कि कोई कॉलेज गया है। जब मैं कॉलेज गया था तो मैं कॉलेज में घुसने के अगले दिन ही मेरे इतने सारे रिश्ते आने वाले थे, क्योंकि रिश्तेदारियों में कोई था नहीं जो कॉलेज
0: जा पढ़ा लिखा और MNC में जॉब करने
1: जबकि
0: वाले।
1: जबकि जो मेरे साथ के थे वो बता रहे हैं कि मेरे दादाजी वहाँ के ग्रेजुएट थे, मेरे परदादाजी वहाँ दरोगा थे, और मैं वहाँ पहली बार कॉलेज में जा रहा हूँ। वहाँ फिर मुझे शर्म लग रही थी कि हम कितने पीछे हैं, लेकिन मेरे घर वालों को लग रहा था कि हम कहाँ पहुंच गए चांद पे। प्राउड फील कर रहे थे, घर वालों को उम्मीद थी। और जब जॉब लगती है किसी की, पहली बार कोई जॉब करता है तो अलग बात होती है। तो जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि जॉब छोड़ना मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आप

0: पास खोने को कुछ है ही नहीं तो आपको डर किस बात का, जॉब ही तो अगले साल फिर लग जाएगी, यहाँ छोड़ के कहीं और लग जाएगी। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जस्टिफाई कैसे करूं। तो उन दिनों में क्या था, ये 2016 से 18 जॉब किया था, तो 18 में जब मैंने जॉब छोड़ी तो नक्सली वाला कुछ चल रहा था इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ, झारखंड की तरफ। मैं जॉब छोड़ चुका था और मैं जॉब छोड़ने के एक महीने तक मैं घर से उसी समय निकलता था जिस समय जॉब के लिए निकलता था,
1: अच्छा,
0: और उसी समय घर पे आता था जिस समय जॉब से आता था,
1: तो क्या बताया नहीं
0: ताकि
1: था घर
0: घर
1: पे?
0: वालों को रियलाइज ना हो। और मैं
1: अच्छा
0: करता क्या था उस बीच कि कहीं पे कोई पर्यावरण का सेमिनार हो रहा है, एक दो भैया थे जो काम कर रहे थे उनके ऑफिस पे जाके बैठता था, कहीं ऐसा प्रोग्राम चल रहा है उसको जाके सुनना है, और कई बार उधर से मेट्रो में बैठ के आता था, यहाँ एक सीपी में बीच में गोल चक्कर है बहुत बड़ा सा, उस पे जाके बैठ जाता था। तो वो मेरा काम था। तो मैंने फिर एक दिन ऐसे ही कहा अपनी मम्मी से कि वहां जो है मेरा ट्रांसफर उधर हो रहा है छत्तीसगढ़। तो मम्मी ने पूछा छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है, क्योंकि मम्मी तो हमारी कभी स्कूल देखी नहीं कैसा होता है स्कूल, उन्होंने छत्तीसगढ़ क्या, उन्होंने अपने नोएडा के बाहर कभी जाके नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा छत्तीसगढ़ वही जगह है जहाँ पे आजकल नक्सली और बहुत हमले हो रहे हैं जो टीवी में देखा था। तो उसने कहा नहीं नहीं बेटा वहां नहीं जाना, तुम जॉब छोड़ दो कहीं और ढूंढ लो। तो मैंने कहा
1: अच्छा
0: ठीक है कल छोड़ दो वहां। तो
1: तो पहले आपने पूरा वो भूमिका तैयार की,
0: हाँ,
1: उसके बाद
0: क्योंकि
1: बताया।
0: जस्टिफाई करने में मुझे समय लगा उसको कि उनको बताऊं कैसे, है ना, मैं बोलूंगा क्या, हाल दो मेरी जॉब मेरा डिसीजन वो वाला नहीं है, बट हम गांव के लोग हैं, हमें पेरेंट्स को भी
1: पूछ रहा
0: साथ
1: होता है।
0: लेके चलना है, को भी बुरा नहीं फील कराना है, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है हमसे हमारे। लेकिन पिताजी इस काम से बिल्कुल ना खुश थे, वो मुझसे नहीं कहते थे लेकिन मेरी मम्मी को बहुत डांटते थे, तुम्हारी वजह से ये कर रहा है, तुम बोलती नहीं हो, कुछ ही है, घर का नाश हो जाएगा, ये है वो है। तो
1: ऑब्वियसली लगता है कि बेटा
0: हाँ
1: इंडिपेंडेंट हुआ,
0: बेटा जो
1: जॉब
0: है
1: कर रहा
0: वो,
1: है तो।
0: हाँ, छोड़ के गलत डायरेक्शन में जा रहा है ना, उनके लिए गलत डायरेक्शन थे, और कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि बच्चा इनसिक्योर फील्ड की तरफ।
1: टाइप
0: तो कई बार ऐसा होता था कि न्यूज पेपर में मेरा आता था, आज इंटरव्यू देकर आया हूं तो कल आएगा ही आएगा, तो मैं गली के बाहर खड़ा हो जाता था, न्यूज पेपर वाले को रोकता था, वो पेज फाड़ लेता
1: पिताजी
0: था और
1: तक ना
0: बोलता था हाँ कि तुम ले
1: पहुंचे।
0: जाओ अब इसको। तो बेचारे तक नहीं पहुंचता था, लेकिन भाई गांव में आया तो गांव वाले खुद ही आ जाते थे, आता तुम्हारे लड़के का
1: तो वो बताइए मुझे घटना कि जब मन की बात में पीएम मोदी ने आपका जिक्र किया तो फिर क्या माहौल था? आपने सुना था वो?
0: नहीं मैं तो सुन नहीं पाया था, उस दिन मैं अपने घर पे ही था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, मेरा भतीजा आया था, मैं ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पे, वो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो भगा भगा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है। तो मैंने तुरंत लैपटॉप साइड में रखा और मैं भगा भगा नीचे गया, और जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। तो मैंने उसको बोला कि तुम मजाक क्यों करते हो, अरे नहीं अंकल अभी देखा था, सच में देखा था मैंने। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था और
1: अच्छा
0: बार बार बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे, कॉल थे, मेरे जितने भी लोग मुझे जानते थे आसपास के तो सब लोग कॉल करके बधाई देना चाहते थे।
1: वाह,
0: तो जब मैंने एक दो मैसेज पढ़ा तो फिर मुझे अपने भतीजे की बात पे
1: यकीन
0: यकीन
1: आया।
0: आया कि हाँ वो सही कह रहा था। उसके बाद से जो लोग कुछ मजाक उड़ाते थे क्या ये ऐसा काम करते हो ये करते हो,
1: वही लोग
0: तो
1: अप्रिशिएट
0: मेरे
1: करते थे।
0: पास एक जस्टिफिकेशन और आ गया कि
1: हाँ
0: जब प्रधानमंत्री जी तारीफ कर सकते हैं तो आप कौन हो कि मजाक उड़ाने
1: और
0: वाला।
1: आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था?
0: देखो गांव में ना हमारे एक बेटा और पिताजी के बीच में इस तरह के कन्वर्सेशन होते नहीं है, उनको मनी मन खुशी हुई होगी लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं कि बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ऐसा सिर्फ हम टीवियों में देखते हैं कि पिताजी कहते हैं जाके।
1: तो जब इतने बड़े लेवल पे आपकी तारीफ आ गई और सब कुछ अच्छा चलने लगा तो आपने अपने पिताजी को फिर कैसे कन्विंस किया?
0: नहीं, मैं तो क्या करता था कि जैसे शुरू में जब तालाबों की बात आती थी तो हमारे पिताजी चाहते थे कि तुम कुछ भी करो लेकिन ऐसा काम करो जिससे पैसा आए, तुम्हें इसलिए पढ़ाया ताकि तुम पैसे कमा सको। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं जब भी तालाबों के बारे में वो पूछते थे तो मैं कहता था मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मछली पालन में बहुत पैसा आए, हाँ
1: अच्छा
0: इससे मछली पालन करेंगे और करोड़ों रुपए कमाऊंगा मैं। तो वो उस बात से खुश हो जाते थे, अच्छा मछली पालन का काम करना है, मैंने कहा हाँ जी मैंने सुना उसमें बहुत पैसा है, 1 साल ट्राई कर लेता हूँ, हो जाएगा तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे पिताजी को किसी भी काम से कोई दिक्कत नहीं है जिससे पैसा आए, तो इसलिए मैंने तालाबों के काम को मछली पालन से जोड़ के मैंने उनको जब बताया तो ही सैड की ठीक है भाई मछली पालन में मैंने भी सुना है बहुत पैसा है।
1: तो कभी फिर ट्राई किया आपने सच में मछली पालन?
0: नहीं मेरे साथ के करते हैं ना,
1: अच्छा
0: मैंने मछली पालन कराया अगर तालाबों को सस्टेन कराना था तो किसी ना किसी तरह से एक्वा कल्चर से जोड़ना है, अदरवाइज तो आज आप तालाब साफ करेंगे अगले साल फिर उतना ही भर जाएगा। आप एक साल में तालाब ही तो रेस्टोर कर सकते हैं, लोगों का माइंड सेट थोड़ी ना रेस्टोर कर सकते हैं। जो लोग कचरा फेंक रहे हैं उनको दिमाग को थोड़ा ना अंडू कर सकते हैं कि आज से कचरा फेंकना बंद, क्योंकि आदत खराब होती है धीरे धीरे, धीरे खराब होती है तो धीरे धीरे सही भी होती है। अब हमारा हाथ चलता ही नहीं है डस्टबिन की तरफ, अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया, तो थोड़ा थोड़ा आदत में आ रहा है डस्टबिन की तरफ, अदरवाइज तो फेंकने की तरफ ही चलता है। मैं तो जब कॉलेज में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को उदाहरण देता हूँ कि भाई अगर मैं आपको आज होमवर्क देके आऊँ, होमवर्क देके जा रहा हूँ कि आपको नेचुरल सीनरी ड्रॉ करके लानी है कल, तो मुझे पता है 90% बच्चे क्या ड्रॉ करके लाएंगे, दो पहाड़ पीछे से उड़ता हुआ, एक पक्षी, आगे झोपड़ी, एक छोटा सा पॉन्ड, सूरज निकल रहा है, कहाँ से आया ये, है ना, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनाते आ रहे हैं। लेकिन अब वो सब झूठ है, अब ऐसे तालाब नहीं बचे हैं। अब तालाबों की असली पिक्चर बनाइए ना कि तालाब कैसे कचरे से भरे हुए हैं।
1: अब तक आपने कितने तालाब साफ किए हैं और उन्हें पुनर्जीवन दिया है?
0: अभी तक तो हम 100 से ज्यादा तालाब कर चुके हैं।
1: अच्छा,
0: और ये 100 तालाब कोई बड़ा है कोई छोटा है, है ना, कोई 50-50 एकड़ के भी है जिसमें एक में से भी 50 तालाब निकल सकते हैं छोटे छोटे। है क्या, जैसे उत्तर भारत में आप रहेंगे तो यहाँ पे अगर 500 एकड़ की भी कोई वाटर बॉडी है ना, ह्यूज वाटर बॉडी, उसको भी तालाब ही बोलेंगे। वैसे आमतौर पर तालाब एक छोटी वाटर बॉडी है और झील बड़ी वाटर बॉडी है, लेकिन यहाँ पे उत्तर भारत में आप चाहे कितनी भी बड़ी वाटर बॉडी ले लीजिए उसको तालाब ही बोलेंगे। उदाहरण के लिए कहता हूँ भोपाल का बड़ा तालाब, आप उसको इस किनारे खड़ा होके देखिए आपको दूसरा किनारा ही नजर नहीं आता और वो समुन्दर लगता है आपको, लेकिन नाम क्या है, बड़ा तालाब, उससे थोड़ा छोटा होता तो छोटा तालाब। तो इसलिए यहाँ अपने झील भी रिवाइव करिए तो वो भी तालाब ही है। तो ऐसे कर करके हमने 100 से ज्यादा तालाब अभी तक रिवाइव किए और अभी हम 11 स्टेट्स में काम कर रहे हैं एक साथ।
1: अच्छा।
0: हमने गांव से शुरू किया था लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पौंडीचेरी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, एवरीवेयर वी आर वर्किंग।
1: आने वाले समय में किस किस जगह को, कौन से तालाब आपने टारगेट किए कि अब यहाँ पर काम करें?
0: नहीं, टारगेट हम नहीं करते हैं, हम क्या है अगली साल के लिए हमेशा एक नई लिस्ट बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: और वो लिस्ट बनती है लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। भाई मान लो आप स्पॉन्सर है, आप किसी गांव से निकले हैं और आप यूएस में रहते हैं और आपके पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं है और आप बोलते हैं मुझे अपने गांव के तालाब की बहुत याद आती है, मैं जिस तालाब में नहाया हूं अभी वो एकदम कचरा घर बन चुका है, मैं इसको रिवाइव कराना चाहता हूं।
1: अच्छा।
0: तो हमारी टीम जाती है उसको रिवाइव करती है, जो खर्चा होता है वो देते हैं।
1: अच्छा, तो इस तरह से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है और
0: फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। दूसरा है कुछ कॉर्पोरेट है, मान लो मैं एक कंपनी हूं और मैंने इस जिले में एक अपनी कंपनी लगाई हुई है और मैं पूरा मेरा प्रोडक्शन ग्राउंड वाटर से है, मान लो मैं कोल्ड ड्रिंक की बना रहा हूँ, मैं पैक्ड वाटर बना रहा हूँ, तो मैंने ऊपर वाला प्लॉट खरीदा है उस जिले का या उस गांव का, मैंने नीचे का पानी नहीं खरीदा है, क्योंकि जब मैं वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, स्पेशली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो वो उसी प्लॉट का पानी नहीं कि निकल के आता है, वो वहां से 1 किलोमीटर के दूर का भी पानी आता है, वो 500 मीटर दूर का भी, लेकिन वो तो आपने खरीदा नहीं है, आपने तो सिर्फ वो प्लॉट खरीदा है। तो फिर आपकी एक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र का आप रिसोर्सिस यूज कर रहे हो, जिस पर पब्लिक का हक था, यहाँ की हवा पर पब्लिक का हक है, जितना एक कंपनी के मालिक का हक है उतना ही गांव के एक आदमी का हक है, तो आप कम्युनिटी रिसोर्सिस को यूज कर रहे हो फ्री में, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सोसाइटी के लिए, उस क्षेत्र के लिए आप कुछ करें। इसीलिए CSR लाया गया, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बड़े कॉर्पोरेट है वो अपने प्रॉफिट का 2% निकाल के अलग रखते हैं और उस क्षेत्र के लिए खर्च करते हैं जहां पे उनका प्लांट काम कर रहा है, और ये मैंडेटरी है, ये हर कॉर्पोरेट को करना ही करना है। हम क्या करते हैं, उन कॉर्पोरेट को बोलते हैं कि भाई आपकी फैक्ट्री यहां पे है, आपसे 20 किलोमीटर दूर एक तालाब है जो गांव वाले रिवाइव कराना चाहते हैं और हम उसको रिवाइव करने के लिए रेडी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है हमें सपोर्ट करने की। तो वो CSR के अंतर्गत जरूरी है, सब मदद करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट हमारी मदद करते हैं और ऐसे करते करते अभी तक हमारा 60 से ज्यादा कॉर्पोरेट पार्टनर्स हमारे बन चुके हैं अलग अलग क्षेत्र।
1: जैसे मेरे जैसे कोई आम जन के लोग अगर जुड़ना चाहें सफाई के या रिवाइव करने के लिए तो वो क्या कर सकते हैं?
0: देखो शुरुआत तो घर से होती है, अगर तालाब में जो कचरा है वो भी हर इंडिविजुअल का ही कचरा है ना, किसी ने जाके एक ट्रक कचरा तो डाला नहीं है एक साथ, तो हमारा हर घर से एक एक बोतल निकलती है जब वहाँ पे एक ट्रक कचरा होता है। तो जब मैं स्कूलों में जाता हूँ मैं बच्चों को बोलता हूँ अगर आपने 5 किलो प्लास्टिक स्कूल में इकट्ठा कर लिया तो मतलब आपने 1 स्क्वायर मीटर पॉन्ड आपने साफ
1: कर लिया, बेहतर है कि उसे गंदा ही ना किया जाए।
0: हाँ, तो तालाब को रिवाइव करने के 2 तरीके हैं, एक आप जाके तालाब से कचरा निकाले, एक आप तालाब में कचरा जाने ही ना दे। तो जब आप जाने नहीं देते तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा काम का होता है, इसलिए हम स्कूल के बच्चों को जोड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे ही बदलाव ला लगा पाएंगे। इसके अलावा और कोई, क्योंकि जब आप बड़े पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं और एक छोटे पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं, मतलब अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो बड़े पेड़ का सक्सेस रेट बहुत 5-10% होता है, बड़े पेड़ नहीं बच पाते। छोटे पेड़ तो आप लगाते ही रहते हैं, जंगल लगाइए, तो वो एडॉप्ट कर लेते हैं नई जगह को, उनको अंदर सीखने की क्षमता होती है। तो इसलिए हम बच्चों को जाके बहुत सारी वर्कशॉप करते हैं, हम बच्चों के साथ जाके बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो तालाबों को गंदा ना हो।
1: मतलब हर बड़े काम की शुरुआत जो है वो छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव से की जा सकती है। रामवीर जी, आप यहाँ पर आए और हमारे पॉडकास्ट में इतने सहज तरीके से आपने इतनी अच्छी बातें बताई जल संरक्षण के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप भी ये छोटे छोटे बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, कचरा कम फैलाएं ताकि जो हमारी वाटर बॉडीज है वो गंदी ना हो। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए नीति को, नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, आकाशवाणी दिल्ली से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म अलग अलग के इस गीत से, किशोर कुमार के स्वर में।

अभी आपने सुना फिल्म नाम, फिल्म का ये गीत कविता कृष्णमूर्ति के सुरों में। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म नगीना से कविता कृष्णमूर्ति के ही स्वर में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सुनते हैं अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म दीवाना के दीवाना फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की।

अभी आपने सुना फिल्म रंग का ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म छुपा रुस्तम से। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का।

0: जोहार रांची कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त रचना
1: और मैं विनोद।
0: आप सबको हमारा
1: नमस्कार
0: जोहार। हाँ तो विनोद जी कैसे हैं आप?
1: तुम बहुत बढ़िया।
0: लेकिन आपके आवाज से ऐसा लग नहीं रहा है कि आप बढ़िया।
1: हाँ बिल्कुल, कभी कभी होती है कि व्यस्तता कुछ इस हद तक हावी होती है कि लोग जो सही एक मानक है कि सोना चाहिए, कितना सोना है, तो कभी कभी इस तरह की व्यस्तताएं होती हैं। लेकिन व्यस्तताएं तो होती रहेंगी और इसी बीच कार्यक्रम भी हम लोग का जारी रहेगा और भरोसा दिलाते हैं कि कार्यक्रम बेहतर रहेगा। नींद से कहीं मतलब कि अगर देखा जाए तो कहीं से प्रभावित होने वाला नहीं है।
0: बिल्कुल, तो वैसे ही है ना कि आज का मनुष्य जो है सुख की तलाश में मृग की तरह बाहरी साधनों के पीछे निरंतर दौड़ रहा है, जबकि वास्तविक आनंद का स्रोत तो उसके अपने भीतर ही छिपा हुआ है।
1: बिल्कुल, जब तक व्यक्ति अपने अंतर्मन से जुड़ना नहीं सीखता तब तक बाहरी सुख क्षणिक ही सिद्ध होते हैं। स्वयं में आनंद खोजने का अर्थ है अपने व्यक्तित्व, गुणों और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानना।
0: आत्म स्वीकृति, सकारात्मक सोच और संतोष की भावना मन को स्थिर बनाती है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए निरंतर आत्म विकास का प्रयास करता है वह छोटी छोटी उपलब्धियों में भी प्रसन्नता का अनुभव करता है।
1: बिल्कुल, इसके विपरीत दूसरों से तुलना करने वाला व्यक्ति कभी अस्थायी आनंद प्राप्त नहीं कर पाता। सुख और दुख
0: कहीं
1: बाहर से नहीं अपितु अपने भीतर से उत्पन्न होते हैं। इसलिए एक ही चीज किसी को सुख देती है तो किसी को दुख।
0: बिल्कुल सही बात है। आनंद प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम स्वयं को समय दें, अपने मन की आवाज सुने, कृतज्ञता का भाव विकसित करें और जीवन के प्रत्येक क्षण का स्वागत मुस्कान के साथ करें।
1: जो व्यक्ति स्वयं में आनंद खोज लेता है वही विपरीत परिस्थितियों में भी आशावान बना रहता है और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी सुख, शांति और सकारात्मकता का संचार करता है।

0: इस गीत के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं हम मौसम की। तो मौसम में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनोज जी की कल रात में काफी बारिश हुई थी और ऐसा कहा जा रहा है कि आज से 20 जुलाई तक रांची सहित 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।
1: बिल्कुल, और अगर देखा जाए इसके पीछे के कारणों की हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने से झारखंड के कई जिलों में बारिश हो रही है। रामगढ़ में सबसे अधिक 61 मिलीमीटर, रांची में 20 मिलीमीटर, जमशेदपुर में 9 मिलीमीटर, बोकारो में 10, चाईबासा में 20, खूंटी में 5, लोहरदगा में 10 और कोडरमा में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रांची में जैसा कि आपने कहा है कि देर रात बारिश हुई है और अच्छी बारिश हुई है। अगर देखा जाए तो जो अगर शहर के जो खासकर निचले इलाके हैं वो भी जलजमाव से मतलब वहाँ देखा गया है। कई सड़कें हैं और सबसे बड़ी बात है कि अगर देखा जाए तो बरसात के समय में जब अगर बारिश होती है तो सड़कें खासकर जो कोलतार की सड़कें होती है वो बहुत टूट जाती है, क्योंकि कहा जाता है जो पानी जो है वो कोलतार का दुश्मन है। तो चाहे जो भी मतलब कि, और केवल हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि अब चूंकि हम लोग मौसम की बात कर रहे हैं, लेकिन मौसम से जो ये जो परेशानियां हो रही हैं उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। और जो मौसम विज्ञान विभाग का जो अभी कहना है कि उसने जो है येलो अलर्ट भी जारी किया है और अभी जो है रह रहकर कभी मतलब कि मौसम साफ होगा यानी कि धूप और जो ये है बादल दोनों का क्रम जारी रहेगा, धूप छाव का खेल चलता
0: वैसे
1: रहेगा।
0: हमने कहा कि बारिश तो हो रही है और 20 जुलाई तक रहेगा अभी बारिश, लेकिन इसके बाद भी मौसम विज्ञान का कहना है कि ये 1 जून से 17 जुलाई तक राज्य में सामान्य से 40% तक कम बारिश हुई है और रांची में भी अभी तक सामान्य से जो है वो 24% तक की कम बारिश हुई है। यानी कि मानसून तो है लेकिन अभी बहुत अच्छी तरह से नहीं आया है, लेकिन आज बादल फिर से गरजेंगे और बरसेंगे, इतनी संभावना तो है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इस समय आप सुन रहे हैं जोहार रांची और विनोद जी अब बातें करते हैं इतिहास की। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि आज के दिन यानी 18 जुलाई को क्या कुछ खास घटनाएं घटी थी देश और दुनिया में।
4: बिल्कुल, और आज की बात करें तो आज के दिन 1947 में इसी दिन ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली थी। इसी अधिनियम के माध्यम से 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी की तारीख तय की गई थी।
3: और 1857 में आज ही के दिन भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्थानों में से एक बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी।
4: आज ही के दिन 1980 में भारत ने अपना पहला सफल स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यानी SLV-3 लॉन्च किया, जिससे रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। और 1980 में ही आज के ही दिन टेलीविजन से पहला रंगीन प्रसारण मद्रास से किया गया। यह भारत में रंगीन टेलीविजन प्रसारण की शुरुआती प्रयोगों में से एक था, जो 1982 के एशियाई खेलों में पहले रंगीन प्रसारण के लिए की जा रही तैयारियों का हिस्सा था।
3: और 1743 में साप्ताहिक अखबार न्यूयॉर्क में दुनिया में पहली बार आधे पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। और 1781 में ब्रिटेन के विख्यात खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने आकाश गंगा की वास्तविकता का पता लगाया था।
4: आज ही के दिन 1872 में ब्रिटेन में चुनाव में गुप्त मतदान अधिनियम आया, इससे पहले मतदान खुले तौर पर किया जाता था।
3: अगर हम 1955 की बात करें तो परमाणु ऊर्जा से उत्पादित बिजली को व्यावसायिक रूप से पहली बार बेचा गया। और 1968 में कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में इंटेल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी।
4: 1985 में आज के ही दिन सोवियत रूस ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। और 1994 में ब्राजील ने चौथी बार विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती।
3: 2002 में आज ही के दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के 12वें राष्ट्रपति चुने गए। और 2003 में वाई वेणुगोपाल रेड्डी रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने।
4: 2005 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के बीच वार्ता के बाद अमेरिकी प्रशासन ने भारत को परमाणु ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी विषयक आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का फैसला आज के ही दिन लिया।
3: और 2008 में आज ही के दिन भारतीय मूल के सलमान रुश्दी ने प्रमोशन टूर के दौरान 57 मिनट में 1000 पुस्तकों पर हस्ताक्षर करने का रिकॉर्ड बनाया।

0: और आज के दिन की हम बात कर रहे हैं, तो अब बातें करते हैं उनकी जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था।
1: 18 जुलाई 1861 की अगर हम बात करें तो भारत की पहली जो महिला
0: महिला
1: स्नातक और पहली महिला फिजिशियन कादम्बिनी गांगुली का जन्म हुआ था। यही नहीं, इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला का गौरव भी प्राप्त है। कादम्बिनी गांगुली पहली दक्षिण एशियाई महिला थी जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था।
0: और 1918 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जन्म भी हुआ था। और 18 जुलाई 1927 को प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का जन्म हुआ था।
1: भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना का जन्म 18 जुलाई 1996 को मुंबई में हुआ। ये बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं। साल 2021 में स्मृति मंधाना ने दूसरी बार आईसीसी का बेस्ट क्रिकेटर का खिताब जीता और आईसीसी ने उन्हें 2021 के तीनों फॉर्मेट में बेस्ट वुमेन्स क्रिकेटर भी चुना है।
0: और 18 जुलाई 1989 में बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर का जन्म हुआ था। उन्होंने 2015 में आई फिल्म दम लगा के हईशा के द्वारा बॉलीवुड में अपना कदम रखा था। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।
1: 18 जुलाई 1982 को भारतीय अभिनेत्री, मॉडल, फिल्म निर्माता और गायिका प्रियंका चोपड़ा का जन्म हुआ था। प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड 2000 के खिताब को जीतकर 17 साल की उम्र में ही पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ती थी। प्रियंका चोपड़ा भारत की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री हैं।
0: और प्रियंका चोपड़ा को बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और टाइम पत्रिका ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भी एक का नाम उन्हें दिया। और अगले 2 वर्षों में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में सूचीबद्ध किया। तो इनको जन्मदिन की ढेरों बधाई और सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का एक गीत।

अब बात करते हैं जिनका आज के दिन निधन हुआ था। तो कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत राजस्थान के एक महान सैनिक थे, जिन्हें 1948 के भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। वे 18 जुलाई 1948 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके अद्वितीय बलिदान को याद करते हुए भारत सरकार द्वारा अंडमान

0: खाते हैं, अंकुरित जो भी अनाज है तो उसको थोड़ा पका के खाएं, क्योंकि अगर वो अंकुरित अनाज आप कच्चा खाते हैं तो उसमें फंगस लगने या कीटाणु पनपने की आशंका बनी रहती है। तो अगर आप खाना चाहते हैं वो, तो उसको उबाल लें या थोड़ा सॉटे कर लें, भून लें, तब उसके साथ उसको खाएं। और इसके लिए एक जरूरी भी है कि स्वच्छता से हम बात कर रहे हैं तो हाथ धोना भी एक बहुत जरूरी बात है। आमतौर पर हम बोलते हैं ना कि हाथ क्यों धोना, भाई हमारे हाथ साफ हैं, ऐसा ही कहते हैं हम।
1: बिल्कुल, यह भले ही लगे कि बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन यह संक्रमण से बचाव का सबसे
0: सबसे
1: प्रभावी तरीका
0: सही
1: है।
0: सही बात।
1: फोन, दरवाजे के हैंडल, करेंसी नोट, सार्वजनिक वाहन और ऐसे कई स्थानों से आप खाना खाने से पहले गुजरते हैं, संक्रमण इनमें से कहीं
0: से भी हो
1: से भी
0: सकता है।
1: आपके खान पान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए खाने तैयार करने से लेकर खाना खाने तक हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए, और निश्चित है कि इसे जो अगर देखा जाए तो यह बच्चों को बचपन से ही जो
0: आदत
1: प्राइमरी
0: डालनी
1: कक्षाएं हैं
0: चाहिए।
1: उस समय से ये बताया जाता है कि सबसे पहला जो अगर वाहक है, किसी तरह से अगर कीटाणु की बात करते हैं तो सबसे बड़ा वाहक जो है हमारा हाथ
0: हाथ
1: होता है।
0: है,
1: अगर हाथ स्वच्छ रहेगा तो आप बहुत हद तक
0: हाँ,
1: सुरक्षित
0: सुरक्षित
1: रहेंगे और
0: रहेंगे,
1: स्वस्थ रहेंगे।
0: बिल्कुल सही बात है। और स्टमक फ्लू के लक्षण जो दिखते हैं वो है कि पेट में मरोड़ और ऐंठन होना, निरंतर या रुक रुक कर उल्टी, सिरदर्द और हल्का बुखार, और अत्यधिक कमजोरी या डिहाइड्रेशन होना। तो आप स्टमक फ्लू के लक्षण जानकर उसी अनुसार आप डॉक्टर से विचार विमर्श कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो है इस मौसम में अपना ख्याल रखें।

0: जी हाँ विनोद जी, स्वास्थ्य की बात तो हो गई, अब कहीं घूमने की बात भी कर लेते हैं। तो आज हम जा रहे हैं मालवा, मध्य प्रदेश में जो है। तो बारिश की फुहार पड़ते ही मालवा की धरती जैसे नया जीवन ओढ़ लेती है। पहाड़ियाँ हरे मखमली कालीन में बदल जाते हैं, झरने चट्टानों से उतरते हुए संगीत रचते हैं और बादल घाटियों में ठहर जाते हैं और नर्मदा का जल अपनी पूरी गरिमा के साथ बहने लगता है।
1: बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो सुबह 6 बजे से इंदौर से सड़क मार्ग से निकले, करीब 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर आप जाना पाओ की ऊंची पहाड़ियों पर पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे वाहन ऊपर चढ़ता है, सामने बादलों से ढकी घाटियां और हरियाली का विहंगम दृश्य नजर आता है। कई बार बादल जमीन को छूने का एहसास कराते हैं। दूर तक फैले जंगल, पहाड़ों से उतरती जलधाराएं और ठंडी हवा प्रकृति के करीब ले जाती है।
0: बिल्कुल, ये तो आपका था पहला पड़ाव और उसके बाद दूसरा पड़ाव। जाना पाव से आगे बटरफ्लाई पार्क आप जा सकते हैं, उसके बाद मानसून में ये जंगल रंग बिरंगी तितलियों से आबाद होता है और नमी से भीगे पेड़ों, पक्षियों के चहचहाट और मिट्टी की सौंधी खुशबू के बीच बिताया गया समय प्रकृति के बेहद करीब ले जाता है। और जो फोटो के शौकीन हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा जगह है, उनके लिए स्वर्ग से कम नहीं है।
1: और बिल्कुल हनुवंतिया जो है वो तीसरा पड़ाव है यहाँ का, जहाँ वाटर स्पोर्ट्स का आप लुत्फ ले सकते हैं। इसके बाद ओंकारेश्वर मार्ग से, जहाँ तक वहाँ तक पहुँचने की बात है, तो जो हम ओंकारेश्वर मार्ग से हनुवंतिया
0: पहुंच
1: पहुँचे,
0: सकते हैं।
1: इंदिरा सागर बांध का अथाह जल हरिद्वीप और

0: ही इस पड़ाव को और यादगार बना देता है। और अगर आपके पास समय है तो आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी जरूर करें।
1: और बिल्कुल अगर हम बात करें तो एक जाने के पहले एक प्लान बना लें, और अगर वहाँ जो भी जिन भी पर्यटन स्थलों और
0: या
1: हमने
0: मंदिर
1: जो
0: है।
1: जिन वहाँ की जंगलों या पहाड़ों की बात हमने की है, तो अगर अगर आप चाहें तो 2 दिनों का अगर आप प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले जो पहला दिन है सुबह में इंदौर से जना पहुँच जाएँ, और इसके बाद बटरफ्लाई पार्क, दोपहर में ओंकारेश्वर और शाम में हनुवंतिया, वहाँ आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। और दूसरे दिन अगर आप चाहें तो शैलानी आइलैंड, दोपहर में महू, शाम में पाताल पानी, कालकुंड हेरिटेज ट्रेन, और रात में फिर इंदौर वापसी कर सकते हैं। इसमें अगर एक और हम पड़ाव की बात करें तो आखिरी पड़ाव की हम बात करते हैं, वापसी में महू से मध्य प्रदेश की इकलौती हेरिटेज ट्रेन का सफ़र ज़रूर करें। जैसा कि अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि दूसरे दिन आप ट्रेन की सवारी करें। 148 साल पुराने इस रेल मार्ग पर ट्रेन घने जंगलों, गहरी घाटियों और पाताल पानी जलप्रपात के बीच से गुजरती है। झरनों का शोर, बादलों की धुंध और पहाड़ियों पर बिछी हरियाली इस यात्रा को अविस्मरणीय बना देती है। 9 किलोमीटर लंबा यह छोटा सा सफर मानसून ट्रिप की सबसे खूबसूरत याद बनकर साथ लौटता है।
0: बिल्कुल, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो इस जगह जरूर जाएं और वहां की खूबसूरत वादियों का आनंद लें।

अगला गीत आइए अब सुनते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी से, और आवाजें हैं आतिफ असलम और अलीशा चिनॉय की, और इस गीत को सुनना चाहा है दंतरेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास, मानिकपुरी रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली से सालिक पुजारी, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं। मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गनवानकर, श्रीमती सरिता गनवानकर, प्रिंस एकांश गनवानकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गनवानकर, प्रणीता गनवानकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गनवानकर, वैशाली गनवानकर, श्वेता सुमित गनवानकर और कुमारी ध्वनि गनवानकर, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मिका, बलविंदर बिरक, चेतक बिरक और मिका बिरक, ये सब सुनना चाहते हैं। जरा हटके जरा बचके फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और सचिन जिगर ने।

अगला गीत आइए अब आपको सुनवाते हैं आतिफ असलम और तुलसी कुमार की आवाजों में सत्यमेव जयते फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, कोटवा नारायणपुर बावपट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, प्रतीक और प्रज्ञा।

अगला गीत सुनना चाहे ग्राम बड़बुड़ुआ पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम, इनू रांची से प्रवीण कुमार, खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, गौरव नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और उनके परिवार वाले, महादेव घाट अमलेश्वर से डूमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, बड़ा बाम्बो गांव सुपाईसाई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेन, चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, अनुबन माले, सिद्धू कुमारी और पूजा

आप सुन रहे थे एमएस धोनी फिल्म का ये गीत पलक मुचाल की आवाज में। इसी के साथ ही आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगर आप भी अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें खत लिख सकते हैं। खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी केंद्र रातू रोड रांची झारखंड। पिन संख्या है 834001।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजे हैं, वक्त हो चला है महिलाओं के कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

बहनों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। तो बहनों, आज है शनिवार और मैं महजबीन आपका स्वागत करती हूँ अपने किचन में, यानी कि महजबीन की रसोई में लिए चलती हूँ। बहनों, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, तेज बारिश ने सभी को घर में कैद कर दिया है। ऐसे में मन करता है कभी चटपटा खाया जाए, तो कभी मन करता है नमकीन खाने का, तो कभी मीठा। तो बहनों, आज आपको हम कुछ टिप्स देंगे कि बरसात में आप क्या क्या बना सकते हैं, और इसके अलावा आपको एक व्यंजन की रेसिपी भी बताऊंगी। कहीं जाइएगा नहीं, मगर वो राज है। अभी आप मनोरंजन का लुत्फ उठाएं और सुनिए ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

बहनों, इस प्यारे से गीत के बाद अब समय है इजी नाश्ता का, और निकालिए कलम और कॉपी और नोट करिए आज की रेसिपी। ये है इजी नाश्ता की रेसिपी। सबसे पहले आधा कप गेहूं का आटा, 4 चम्मच सूजी, 4 चम्मच बेसन, 1 टमाटर, 1 बड़े साइज का प्याज, अगर आप प्याज खाते हैं तो, 4 पत्ते पालक के, आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा कढ़ी पत्ता, हरी मिर्च आप अपने अनुसार ले सकते हैं या 2 पीस, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें आप मिर्च लिए चिली फ्लेक्स और हरी मिर्च डाल रहे हैं तो काली मिर्च आप उसी अंदाज से डाल सकती हैं। सबसे पहले गेहूं, सूजी, बेसन को थोड़ा थोड़ा पानी देकर एक थिक घोल बना लें। इस घोल में नमक, चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, काली मिर्च डालकर इसे साइड में रख दे थोड़ी देर के लिए। दूसरी तरफ प्याज को बारीक काटे, साथ में टमाटर, पालक को भी बारीक बारीक काटे। इधर आप गैस पर एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर उसमें जीरा, कढ़ी पत्ता डालकर बाकी सब्जियों को हल्का भूने। इन भुनी सब्जियों को आटे में धीरे धीरे मिलाएं और इसके साथ ही आप एक ये तवे पर कम तेल में, यानी अगर तेल अगर आप अच्छे से डालना चाहें तो डालें, लेकिन कम ही तेल डालें तो अच्छा रहेगा। किसी भी ये आप साइज का बना सकते हैं, छोटा या बड़ा बना लिए, और इसके उसको धीरे धीरे हल्की आंच पर पकाएं। और लीजिए, तैयार है, आप किसी भी चटनी या अचार के साथ इसे खाएं और खिलाएं। झटपट सुबह का नाश्ता तैयार है, बच्चे भी खुश और आप भी खुश, समय भी बचता है और टेस्टी भी बनता है। तो आप इस नाश्ता को ज़रूर बनाएं। अब बहनों, हम आपको लिए चलते हैं एक और प्यारे से खूबसूरत गीत की ओर। लीजिए, सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा।

0: बहनों, आपका फिर से स्वागत है गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मनोरंजन की भी बात हुई। अब समय है आपको मेहमान से मिलवाने का। आज ये हम आपको मिलवाते हैं मेहमान से, और विषय है भारतीय लोकगीत के बारे में। लीजिए सुनिए ये भेंट वार्ता। बहनों, आज हम जानकारी देंगे कि लोकगीत के बारे में, कि लोकगीत किस तरह से हमारी परंपरा से जो जुड़ी हुई है। हर किसी ओकेजन पे भी हम लोकगीत गाते हैं, चाहे खुशी हो या फिर किसी तरह के भी त्योहार हुए, तो बहुत सारी बातें लोकगीत से जुड़ी हुई। तो आज की मेहमान हमें लोकगीत के बारे में जानकारी देंगी। आज की हमारी मेहमान है रेणु बालाधर। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो लोकगीत के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी?
1: नमस्कार। मैं यही बताना चाहूंगी, लोकगीत आज जितना प्रचलित है वो भी इसलिए कि कुछ लोग जो हैं हमेशा परंपरा से गाते चले आए हैं। लोकगीत का मतलब ही होता है लोक के गीत, जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि समझिए पूरा समाज अपनाता है।

0: मान सकते हैं, क्योंकि उनका रचनाकार जो भी होता है उनका व्यक्तित्व पूरे समाज के लिए समर्पित रहता है। तो वो जब गाते हैं तो उससे फिर दूसरे सुनते हैं या दूसरे को सुनाते हैं, उसको करते करते वो एक मतलब परंपरा से चली आ रही गीत बन जाती है। और इस तरह से लोकगीत होता है हमारे समाज में, या मान लीजिए शादी ब्याह हो, मुंडन हो, छठी हो, कुछ भी पारंपरिक पारिवारिक समारोह हो, या फिर किसान ही गुनगुना रहे हैं। तो आज से नहीं, वो मैंने किसान का एक समझिए कि श्रम शक्ति भी उसमें जुड़ जाता है और वो मिठास गाने के रूप में आता है, उससे भी आप लोकगीत कह सकते हैं। लोकगीत आप इसे भी, जैसे आप ये मान लीजिए कि लोकगीत हमारी संस्कृति को एक तरह से दर्पण है, हमारी संस्कृति के वो हमारी संस्कृति को दिखाते हुए बहुत से काम करते हैं। समय समय पर हमारी संस्कृति, संस्कृति के संदर्भ में समाज, समाज की स्थिति और समाज के समस्याओं को भी दर्शाते हैं। लोकगीत का अपना बहुत महत्व है। समझिए कि ये सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सुझावों को समझाने में भी मदद करते हैं, संस्कृति को समझाने में भी मदद करते हैं, और संस्कृति को बदलने के लिए समय समय पर संकल्प भी देते हैं। इसको आप कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए कि वो बता रहे हैं कि आज राजा मेरे ऐसे थे वैसे थे, तो वो गाना में, गीत के ही बोल में ऐसे रहते हैं कि समाज को संदेश मिल जाता है कि अगर राजा के गुणगान भी हो रहे हैं तो राजा वास्तव में उस गुण के लायक है। इस तरह से वो समाज का पूरा दर्पण दिखाते हैं। जिस वक्त की रचना रहती है, जब की रचना रहती है, उस समय की स्थिति या उस समय के ये को देखते हुए गीतकार, रचनाकार जो भी है वो गाते हैं, और उसी को फिर सुन के और लोग भी, समाज पूरा गाने लगता है और उसको अपनाने लगता है, पूरा लोग समाज में अपनाता है। ये लोकगीत है, अभी थोड़ी इधर थोड़ी आते जा रही है, फिर भी अब ये विलुप्त होने की कगार पर क्यों है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये एक समझिए कि ज्वलंत समस्या है कि हम लोग, हमारी पीढ़ी जो है ये पूरा पारंपरिक गीतों को अभी अपनाने से कतराती है। उन लोगों को क्या है कि आजकल मॉडर्न गाना या फिर उस तरह की संस्कृति में चले आए हैं, उनका जुड़ाव लोकगीत से कुछ कम हो गया है, क्योंकि उसका कारण है गांव के, गांव वाले लोग शहर में आ जा रहे हैं तो गांव की मिट्टी का जो खुशबू है उसके गीतों में जो रहता है वो भी पीछे छूट जा रहा है। इधर शहर में भी जो है वो पाश्चात्य संगीत को या पाश्चात्य सिनेमा को, जो भी मीडिया है वो सबका वर्तमान में जो टेक्निकल समझिए कि उन लोगों के हिसाब से वो सब ज्यादा उन लोगों को अच्छा लगने लगा है, वहाँ ज्यादा म्यूजिक, ज्यादा गुर, हालांकि उसमें सार कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन ये बात समझाने के लिए हमारे बच्चों को इनकरेज करना होगा। आज समस्या यही है कि इसमें आपको मतलब उन लोगों को रुझान पैदा करना पड़ेगा, इसलिए लोक कलाकार को भी प्रोत्साहन देना होगा, जो अभी हैं भी उनको पूरे से प्रोत्साहन देना होगा, लोकगीत को अपनाने के लिए हम लोगों को भी, जैसे मान लीजिए साहित्यिक मंच है या सामाजिक मंच है, समारोह में ज्यादा प्रेफरेंस देना होगा, क्योंकि उन लोग का जो हमारी यंग जनरेशन है वो युवा पीढ़ी थोड़ा ये होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं हमारी संस्कृति से, और लोकगीत हमारी संस्कृति के दर्पण है, इसलिए लोकगीत के थ्रू के द्वारा हम ज्यादा अच्छा से समझा सकते हैं।
1: और मैम, आपका क्या संदेश होगा कि लोकगीत के बारे में, कि लोग इससे जुड़े, इस धरोहर को बचा करके रखें और इस पारंपरिक लोकगीत को अपनाएं, क्या संदेश होगा?
0: हमारा संदेश यही है कि सच पूछिए तो हमारा समाज शुरू से ही एक तरह से जन समाज है, इसमें कोई तो दो राय है ही नहीं, और हमारे समाज में अभी जितना थोड़ा सा नैतिकता का पतन हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है कि पाश्चात्य सभ्यता कहिए या फिर पाश्चात्य के दौर में आना, और उन लोगों का बहुत चीज ऐसा हो जा रहा है कि हम लोगों के लिए एक संदेश हो जा रहा है कि कम से कम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें और ऐसी बात सिखाएं कि लोकगीत के अर्थ को समझें, लोकगीत के रुझान को की तरफ उनकी रुझान जाए, ताकि वो भी समझ पाए, क्योंकि हमारे लोकगीत में एक चीज नहीं है, शादी ब्याह का तो होता ही है,

0: अगर काम भी कर रहे हैं तो उसमें जो मिठास है, काम करने की जो श्रम शक्ति, श्रम की महिमा है, वो भी आसानी से बता देते हैं। फसल का मान लीजिए कि ये है कि उपज आज अगर कम भी है तो फिर कल बहुत अच्छा होगा, बारिश है वो, ये होगा, कहने को मतलब प्रकृति से भी बहुत जुड़ता है। और ये जुड़ाव तभी आएगा जब उसके नजदीक हम आए। तो इसलिए हमारे हमारा यही संदेश रहेगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को और युवाओं को लोकगीत के माध्यम से या फिर लोक कलाकार को पूरा प्रोत्साहन देते हुए, सम्मान देते हुए आगे बढ़ने के लिए कहें, ताकि और भी जो हैं युवा पीढ़ी के वो प्रेरणा लें कि नहीं, ये भी बहुत अच्छा चीज है, इसमें पूरा नाम भी है और पूरा पूरी प्रतिष्ठा भी है। ये चीज इन लोगों को समझ में आनी चाहिए। पहलू, अब ये लोकगीत के बारे में हमारी मेहमान रेणु बालाधर जी बहुत ही अच्छी जानकारी दे रही थी। उन्होंने बताया कि किस तरह से लोकगीत में कितने सारे लोगों की जो अगर प्रशंसा भी कर सकते हैं या फिर सांस्कृतिक जिस तरह से बातें होती है, बहुत सारी जीवनी की बड़ी बातें होती है कि ये लोग किस तरह से इस कहानी को सुने, आगे बढ़ाए और ये दर पीढ़ी दर आगे बढ़ती जाए। और मैंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि इससे युवाओं को किस तरह से हम जोड़ सकते हैं। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका भी।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी ये भारतीय लोकगीत के बारे में कि लोकगीत किस तरह से विलुप्त हो रहे हैं, इन्हें बचाने की जरूरत है। हमारी आज की मेहमान थी रेणु बाला धर जी। तो चलते चलते बहनों, अब हम आपको बारिश के मौसम में एहतियात बरतते हैं किस तरह से आप अपने जो स्वास्थ्य का ख्याल है वो रख सकती हैं। ताज़ा गर्म भोजन करें और पानी उबाल कर पिए, मच्छरों को पनपने बिल्कुल भी ना दें, नियमित रूप से हाथ धोते रहें और ये भी ध्यान रखें कि पानी जो हो ना वो उबला हुआ हो। और इसके अलावा जो पानी है उसे अच्छी तरह उबाले या फिल्टर किया हुआ पानी पिए और बाहर का जो खाना है उसे खाने से बिल्कुल भी बचे कि वो खाना आपके लिए सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। और ताज़ा भोजन ज़रूर करें, ताज़े भोजन का अलावा आप बासी भोजन से ज़रूर बचें और बाहर के खाना पान को आप बिल्कुल भी अवॉइड करें। यानी कि जो खाना है बाहर का, स्नैक्स है, चाट वगैरह या फिर किसी भी तरह का गोलगप्पे वगैरह है, सबसे खाने से बचें। बहनों, बहुत सारी बातें हमने की आज कि आप किस तरह से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं बरसात के मौसम में और अपनी सेहत को इस तरह ऐसे ही ध्यान रखते रखते हुए इससे बारिश का मौसम के जो लुत्फ है उसे ज़रूर उठाए। और बारिश का मौसम जो है बहुत ही खूबसूरत होता है। तो बहनों, अब इसी के साथ हमें दे इजाज़त कार्यक्रम को समाप्त करने की। आज की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की। दे महज़बीन को इजाज़त। नमस्कार।
3: गृहलक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शैक्षिक प्रसारण। प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार का है, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की है।

0: प्रस्तुत है शैक्षिक प्रसारण। इसके अंतर्गत सुनेंगे वार्ता उष्मा गति की एक परिचय। वार्ताकार हैं अन्नू सिंह।
1: आज हम उष्मा गतिकी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान अवधारणा है। उष्मा गतिकी का महत्व समझने से हमें पदार्थों के गुणों और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वह गर्म क्यों हो जाता है, या जब आप बर्फ को खुले में रखते हैं तो वह पिघल क्यों जाता है? इसका जवाब है उष्मा गतिकी। उष्मा गतिकी भौतिकी और रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो उष्मा, कार्य, तापमान और ऊर्जा के अंतर संबंधों का अध्ययन करती है। यह विज्ञान का वह क्षेत्र है जो उष्मा और ऊर्जा के यांत्रिक कार्य में परिवर्तन का अध्ययन करता है। उष्मा गतिकी मतलब उष्मा का प्रवाह। उष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक्स के मुख्य बिंदु हैं। पहला, प्रणाली, सिस्टम। ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसका अध्ययन किया जा रहा है प्रणाली है। परिवेश, सराउंडिंग। प्रणाली के बाहर की हर चीज परिवेश कहलाती है। सीमा, बाउंड्री, वह परत जो प्रणाली को परिवेश से अलग करती है। इसके बाद आता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। प्रणाली और परिवेश का सम्मिलित रूप ब्रह्मांड कहलाता है। प्रणालियों के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है ओपन सिस्टम, खुली प्रणाली या निकाय। ये ऐसे प्रणाली होते हैं जो अपने आसपास के वातावरण के साथ ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक खुला बर्तन जिसमें पानी उबल रहा है, इसमें पानी भाप बनकर वातावरण में जाता है और वातावरण की हवा भी बर्तन में आती है। दूसरी प्रणाली होती है क्लोज्ड सिस्टम, बंद प्रणाली। इस प्रणाली में ऊर्जा का आदान प्रदान तो कर सकते हैं लेकिन पदार्थ का नहीं। जैसे एक बंद प्रेशर कुकर, इसमें भाप अंदर ही रहती है, पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन गर्मी बाहर से अंदर आती है और अंदर से बाहर जाती है। तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित प्रणाली। ये प्रणाली न तो ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं और ना ही पदार्थ का। जैसे एक थर्मो फ्लास्क में गर्म कॉफी, इसमें न तो गर्मी बाहर जाती है और ना ही बाहर की गर्मी या ठंडक अंदर आती है, और पदार्थ भी अंदर ही रहता है। प्रणाली के दो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। पहला होता है मात्रात्मक गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वे गुण जो प्रणाली में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, मात्रात्मक गुण एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, द्रव्यमान, एंट्रोपी। दूसरा होता है मात्रा स्वतंत्र गुण, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रणाली के वे गुण जो उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते बल्कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, मात्रा स्वतंत्र गुण कहलाते हैं। जैसे दाब, ताप, घनत्व, पृष्ठ तनाव आदि। उष्मा गतिकी प्रक्रम, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी निकाय की अवस्था में परिवर्तन होता है। यह उष्मा गतिकी प्रक्रम कहलाती है। यह भी दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है वह समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। इस प्रक्रम में प्रत्येक स्टेप में निकाय का ताप स्थिर रहता है, समतापीय प्रक्रम कहलाता है। इस प्रक्रम में यदि ऊर्जा मुक्त होती है तो वह परिवेश के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और इस कारण निकाय के ताप में परिवर्तन नहीं हो पाता है। दूसरा, रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस वह प्रक्रम जिसमें किसी भी पद पर निकाय द्वारा परिवेश को न तो ऊष्मा दी जाती है और न ही निकाय द्वारा परिवेश से ऊष्मा ली जाती है, रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाती है। यदि रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा निकलती है तो निकाय का ताप बढ़ जाता है, और यदि इस प्रक्रम में ऊष्मा शोषित होती है तो निकाय का ताप कम हो जाता है। दोनों ही दशाओं में निकाय और परिवेश के मध्य ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम में किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि इसे निकाय को किसी इंसुलेटेड पात्र जैसे थर्मो फ्लास्क में रखकर किया जा सकता है। इस प्रक्रम में जैसा कि हमने पहले भी बताया, निकाय का ताप बदलता है। इसी में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। प्रत्येक निकाय या सिस्टम में एक निश्चित ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा निकाय में उपस्थित रासायनिक पदार्थ की प्रकृति, ताप, दाब आदि पर निर्भर करती है। निकाय में उपस्थित कणों की ऊर्जाओं का सम्मिलित रूप ही निकाय की आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी कहलाती है। इसे हम कैपिटल यू द्वारा व्यक्त करते हैं। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तीन कारण से हो सकता है। पहला कारण होता है जब निकाय या सिस्टम ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन करे। दूसरा होता है जब निकाय पर कोई कार्य किया जाए या निकाय कोई कार्य करे। तीसरा, निकाय में उपस्थित द्रव्य में वृद्धि की जाए या कमी की जाए। आंतरिक ऊर्जा का निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अनेक अनिर्धारित कारक प्रभावित करते हैं। ऊष्मा गतिकी में इसे निरपेक्ष मान की आवश्यकता नहीं होती है, केवल अवस्था परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन चेंज इन इंटरनल एनर्जी की गणना ही महत्वपूर्ण है। ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यदि दो वस्तुएं तापीय साम्य में हों तो उनमें उष्णता की मात्रा, ताप, समान होता है। यह नियम उष्णता की मात्रा मापने का आधार प्रदान करता है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम को हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस नियम को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा जो होती है वो नियत रहती है, अर्थात भौतिक अथवा रासायनिक, फिजिकल या केमिकल प्रक्रमों में ऊर्जा संरक्षित रहती है। यदि ऊर्जा के किसी रूप की कुछ मात्रा अदृश्य होती है तो उसकी तुल्य मात्रा ऊर्जा के दूसरे रूप में उत्पन्न हो जाती है, या फिर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ऐसी शाश्वत गति मशीन का निर्माण संभव नहीं है जिससे बिना ऊर्जा व्यय किए कार्य प्राप्त किया जा सके। हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मा गतिकी के बहुत सारे उपयोग होते हैं। इनके कुछ प्रमुख उदाहरण बताती हूँ, जिसमें पहला है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, एसी। ये हम दैनिक जीवन में प्रतिदिन उपयोग करते हैं। ये जो डिवाइस होते हैं ये वाष्पीकरण और संघनन चक्र का उपयोग करके किसी क्षेत्र से ऊष्मा निकालकर उसे बाहर छोड़ते हैं, जिससे अंदर की जगह ठंडी हो जाती है। दूसरा, जो हम गाड़ी चलाते हैं, वाहन के इंजन, कार, बाइक और विमान के इंजन, ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जिसे बाद में यांत्रिक कार्य पहियों की गति में बदला जाता है। तीसरा, हम हम प्रतिदिन खाना पकाते हैं। खाना पकाना कुकिंग, स्टोव, ओवन और माइक्रोवेव ऊष्मा का उपयोग करके भोजन को पकाते हैं, जहां ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया काम

0: करती है। चौथा होता है मानव शरीर, हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी। शरीर भोजन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है जो मेटाबॉलिज्म के माध्यम से काम और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में परिवर्तित होती है। प्रेशर कुकर, इसमें उच्च दबाव के कारण पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जिससे भोजन तेजी से पकता है। हीटर और गीजर, ये उपकरण विद्युत या ईंधन की ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलकर पानी या कमरे को गर्म करते हैं। थर्मस फ्लास्क, यह आइसोलेटेड सिस्टम का उदाहरण है जो ऊष्मा के स्थानांतरण को रोककर चाय या कॉफी को लंबे समय तक गर्म रखता है। पावर प्लांट्स में बिजली उत्पादन, परमाणु, कोयला और तापीय ऊर्जा संयंत्रों में भाप टरबाइन चलाने के लिए ऊष्मा गतिकी का उपयोग किया जाता है जो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं, केमिकल प्रोसेस, रसायनों के उत्पादन में अभिक्रियाओं की दिशा और उत्पादों की भविष्यवाणी करने के लिए ऊष्मा गतिकी का उपयोग किया जाता है। इंसुलेशन और थर्मल दक्षता, भवन निर्माण और औद्योगिक उपकरणों में तापमान को नियंत्रित रखने के लिए ऊष्मीय इंसुलेशन सामग्री के डिजाइन में इसका उपयोग होता है। ये अनुप्रयोग ऊर्जा संरक्षण, कार्य क्षमता बढ़ाने और दैनिक जीवन में सुख सुविधाओं को सक्षम बनाते हैं। ऊष्मा गतिकी का महत्व हम इसी प्रकार समझ सकते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण विज्ञान अवधारणा है जो हमें पदार्थों के गुणों और व्यवहार को समझने में मदद करती है। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि ऊर्जा संचयन, तापमान नियंत्रण, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, भोजन पकाना और औद्योगिक प्रक्रियाएं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऊष्मा गतिकी भौतिकी ब्रह्मांड और तकनीकी प्रगति का आधार है जो कुशल ऊर्जा प्रबंधन के माध्यम से आधुनिक दुनिया, इंजनों से लेकर जीवन प्रक्रियाओं तक को संचालित करती है। यह हमें सतत विकास के लिए ऊर्जा का बेहतर उपयोग करने में सहायता करती है। हमें उम्मीद है कि आपको ऊष्मा गतिकी के बारे में जानकर आनंद आया होगा। धन्यवाद।
1: सचिक प्रसारण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता ऊष्मा गतिकी एक परिचय। वार्ताकार थी अनु सिंह, प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी और प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार का।

अभी आप सुन रहे थे शैक्षिक प्रसारण। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनवाते हैं आपको सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाजों में अग्निपथ फिल्म का ये गीत। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसकी कुलिका है, अजय अतुल ने संगीत से सजाया है।

दम लगा के हैशा, आइए सुनते इस फिल्म का गीत। आवाज है मोनाली ठाकुर की, शब्द रचना वरुण ग्रोवर की, संगीत अनु मलिक का।

आइए सुनते हैं अनजाना अनजानी फिल्म का ये गीत राहत फतेह अली खां की आवाज़ में। गीतकार है विशाल डडलानी और संगीतकार है विशाल और शिखर।

फिल्म संगीत अब यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय 1 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India's first privately developed orbital rocket, Vikram 1, under Mission Agaman, has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12.05 p.m. from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. The milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Prime Minister Narendra Modi congratulated Skyroot Aerospace for the achievement. Mr. Modi spoke to Team Skyroot.

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में रचा नया इतिहास। देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 ने श्रीहरिकोटा से भरी सफल उड़ान। राज्य में मच्छर जनित और जल जनित बीमारियों के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सिविल सर्जनों को युद्ध स्तर पर फॉगिंग और जांच के दिए निर्देश। राजकीय श्रावणी मेले में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए डीएसपी स्तर के 69 पुलिस पदाधिकारियों की देवघर और दुमका में की गई प्रतिनियुक्ति। साहिबगंज में खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है गंगा नदी। दियारा क्षेत्र के 108 गांवों में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। और रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन में आज खेल मंत्री सुदिव्य कुमार की उपस्थिति में 135वें डूरंड कप हॉकी का हुआ अनावरण, निकाला गया भव्य रोड शो। और अब समाचार विस्तार से। भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने आज एक नया इतिहास रचा है। हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान के तहत श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। मिशन आगमन के तहत यह बहुप्रतीक्षित प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र

0: किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह देश के युवाओं की प्रतिभा का ऐतिहासिक प्रमाण है। राज्य में मच्छर जनित और जल जनित रोगों के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने रांची, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जनों को युद्ध स्तर पर मलेरिया नियंत्रण अभियान चलाने के आदेश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में मलेरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने मनोहरपुर और गोइलकेरा समेत 6 प्रखंडों को हॉटस्पॉट घोषित किया है। बड़ी संख्या में नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। सिविल सर्जन डॉ. जुझार मांझी के निर्देश पर डॉक्टरों की विशेष टीमें प्रभावित दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर रक्त के नमूने ले रही है।
1: अब तक अपने जिला में उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन पर उदयम 2.0 को हम लोग ने संचालित किया और अब तक जो उदयम 2.0 के तहत हम लोग ने जो प्रयास किया मलेरिया को घर घर पहुंच के जांच करके चिन्हित करना, उसको उपचार करके रेडिकल ट्रीटमेंट देना और मलेरिया से मुक्त करना।
0: प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि श्री मरांडी को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और राजनीतिक बयानों में शालीनता बरतनी चाहिए।
2: जब जब राज्य में निवेश की बात होती है, जब जब राज्य में रोजगार की बात होती है, जब जब राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होता है, तब तब बाबूलाल जी या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, चाहे वो डीएमएफटी फंड का मामला हो या कौशल विकास का मामला हो। तो सिर्फ पत्र लिख करके बाबूलाल जी अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होना क्यों चाहते हैं?
0: गौरतलब है कि कल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कौशल विकास मिशन सोसाइटी में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि युवाओं के जीवन में 15 से 22 वर्ष की आयु व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व की नींव रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। जमशेदपुर के एक स्कूल में आयोजित IIMUN कॉन्फ्रेंस में छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे मंच युवाओं को वैश्विक दृष्टिकोण, संवाद कौशल और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने का सशक्त अवसर देते हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राजकीय श्रावणी मेले की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीएसपी स्तर के 69 पुलिस पदाधिकारियों को देवघर, दुमका और रेल धनबाद में तैनात किया है। प्रतिनियुक्त अधिकारियों में झारखंड सशस्त्र पुलिस IRB, एसटीएफ और ATS के अधिकारी शामिल हैं, जो भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा की कमान संभालेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर में रक्षाबंधन के अवसर पर डाक विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान को जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय का समर्थन मिला है। सिंहभूम मंडल के डाक अधिकारियों की टीम ने विधायक से मुलाकात कर विशेष सेवाओं की जानकारी साझा की। सरयू राय ने डाक विभाग की इस पहल की सराहना की।
3: रक्षाबंधन के अवसर पर पोस्ट ऑफिस राखियां पहुंचाने का भी एक उपकरण बने, ये प्रयास हो रहा है। मगर यदि पोस्ट ऑफिस ने इस क्षेत्र में कदम रखा है तो बेहतर होगा कि हमारा एक बहुत ही पुराना जो संस्थान है और इस सेवा के काम में वर्षों से लगा हुआ है, हम उसको महत्व दें और उनसे हम राखी खरीदें तो ये हमारे स्वस्थ संस्थान है, इसकी भी ये सामाजिक पहल है वो कामयाब होगी।
0: साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दियारा क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अंचल अधिकारी बाशुकीनाथ टुडू ने बताया कि तटीय क्षेत्रों के प्रभावित होने वाले 108 गांवों के नागरिकों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थलों, राहत सामग्री और मवेशियों के चारे का प्रबंध किया जा रहा है।
4: गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, 2 दिन में 2.5 मीटर पानी का जलस्तर बढ़ा। जितना प्रभावित इलाका है सभी को हम लोग सूचना दे सको कि पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखना पसंद करें। और जो प्रभावित इलाका है उन लोगों के लिए प्रत्येक साल की बात आश्रय गृह का निर्माण किए हैं।
0: आकाशवाणी जमशेदपुर के नाटक अनुभाग की ओर से नाटक स्वर परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। केंद्र से प्राप्त किया हुआ पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 10 अगस्त तक जमा करना अनिवार्य है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपये प्रति किलो है। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 12 जिलों के लिए अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से रांची, पलामू, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम सहित कई इलाकों में रुक रुक कर अच्छी बारिश होने की संभावना है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि राज्य में मॉनसून फिलहाल सामान्य से कमजोर बना हुआ है, लेकिन इससे पलामू प्रमंडल और दक्षिण हिस्से में बारिश की स्थिति सुधरेगी। रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन में आज 135वें डोरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की प्रतिष्ठित ट्रॉफियों का भव्य शोकेस आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि खेल मंत्री सुदीव कुमार और विशिष्ट अतिथि मेजर जनरल सज्जन सिंह मान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डूरंड कप, प्रेसिडेंट्स कप और शिमला ट्रॉफी का रांची के मोराबादी मैदान और फिरायलाल चौक सहित प्रमुख मार्गों पर भव्य रोड शो निकाला जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में रचा नया इतिहास। देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 ने श्रीहरिकोटा से भरी सफल उड़ान। राज्य में मच्छर जनित और जल जनित बीमारियों के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सिविल सर्जनों को युद्ध स्तर पर फॉगिंग और जांच के दिए निर्देश। राजकीय श्रावणी मेले में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए DSP स्तर के 69 पुलिस पदाधिकारियों की देवघर और दुमका में की गई प्रतिनियुक्ति। साहिबगंज में खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है गंगा नदी। दियारा क्षेत्र के 108 गांवों में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। और रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन में आज खेल मंत्री सुदीव्य कुमार की उपस्थिति में 135वें डोरंड कप ट्रॉफी का हुआ अनावरण, निकाला गया भव्य रोड शो। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत में आज सुनते हैं शोभा गुडू से मिश्र पहाड़ी में ठुमरी और दादरा। ठुमरी के बोल हैं छोड़ो छोड़ो डगरिया और दादरा के बोल हैं अंधेरिया है रात। संगतकार हैं तबले पर अनीस प्रधान, सारंगी पर ध्रुवज्योति घोष और हारमोनियम पर पी वल्लावलकर।

उप शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे शोभा गोटू से मिश्र पहाड़ी में ठुमरी और दादरा। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुगम संगीत में आइए अब सुनते हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई गजलें। सबसे पहली गजल सुनते हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज में।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समय आप सुन रहे सुगम संगीत। अगली गजल सुनते हैं मिताली सिंह की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
2: Congratulations in space for facilitating
1: in space और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
2: इन दी हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी।
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
3: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के 2 बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत के नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
4: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया। हमारी सेना

0: सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
1: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं के कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड रॉबर्ट्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
2: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में

0: यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ಹಿ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: इस संदेश के बाद सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम जय भारती में, और हमारे फौजी भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में. सैनिक यानी फौजी वह इंसान होता है जो पूरे देश को अपना परिवार समझता है और सीमा पर डटकर हम सबकी रक्षा करता है. वह दिन रात मेहनत करके दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं और सच्चे देशभक्त कहलाते हैं. उनका जीवन बहुत ही कठिन होता है, फिर भी वे हमारी रक्षा डट कर करते हैं. और जब एक फौजी या सैनिक कंधों से कंधा मिलाकर चलते हैं तो दुश्मन थरथरा जाते हैं.

एक फौजी का जीवन त्याग और तपस्या का जीवन होता है। ये उनका अपने देश के लिए प्रेम ही तो है जो वे अपने घर वालों को पीछे छोड़कर देश की सेवा के लिए चले जाते हैं। एक फौजी का जीवन बहुत कठिन होता है। संघर्ष और गर्व का समन्वय होता है। जहाँ एक तरफ वो खतरे के लिए देश के लिए लड़ते हैं, वहीं उन्हें देश के लिए कुर्बान होने का भी गर्व है।

हम सब भले ही देश प्रेम के नाम पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने मात्र से अधिक और कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अगर सैनिक से आप पूछेंगे कि उनका देश के लिए प्रेम क्या है, तो उनका जो जवाब है वो आपको, उनकी बातों पर आपको यकीन ही नहीं होगा, पर सच्चे मायनों में वो आपको समझा देंगे। हमारे जवान पूरे देश में साल भर वर्दी पहने अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी जान की चिंता किए बगैर हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे त्योहारों की रौनक फीकी ना पड़े इसके लिए ज़्यादातर त्योहारों पर उनकी तैनाती भीड़भाड़ वाले इलाकों पर कर दी जाती है। वे सदैव देश के लिए जीते हैं और उनके लिए उनका सच्चा प्रेम क्या है अगर पूछें कि देश के प्रति प्रेम, तो वो यही कहेंगे कि देश के लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं, भारत उनको अपनी जान से भी प्यारा है।

सैनिक यानी फौजी शब्द अपने आप में ही बहादुर का समानार्थी है, क्योंकि फौजी बहुत ही बहादुर एवं शक्तिमान होते हैं। वे दिन रात सीमाओं पर डट कर हमारी रक्षा करते हैं। और एक सैनिक का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक भी होता है, वो बहुत अनुशासित भी होते हैं। हम सबको उनकी कुछ आदतें जरूर सीखनी चाहिए, जैसे कि अनुशासन, देशभक्ति, त्याग, हर परिस्थिति में खुश रहना, दूसरों की खुशी में शरीक होना, अपने देश को अपना परिवार समझना, सबकी निस्वार्थ सेवा करना आदि। और वाकई हमारे जो फौजी भाई हैं वो बहुत ही परिश्रमी होते हैं, और वे एक तरफ प्रेरणा का स्रोत तो होते ही हैं, साथ ही उनका जीवन भी बहुत कठिनाइयों से भी भरा रहता है।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। हैदराबाद के स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान के तहत श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। मिशन आगमन के तहत यह बहुप्रतीक्षित प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह देश के युवाओं की प्रतिभा का ऐतिहासिक प्रमाण है। राज्य में मच्छर जनित और जल जनित रोगों के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने रांची, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जनों को युद्ध स्तर पर मलेरिया नियंत्रण अभियान चलाने के आदेश दिए। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में मलेरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने मनोहरपुर और गोइलकेरा समेत 6 प्रखंडों को हॉटस्पॉट घोषित किया है। बड़ी संख्या में नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी के निर्देश पर डॉक्टरों की विशेष टीमें प्रभावित दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर रक्त नमूने ले रही हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। यह पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज रांची में प्रेस वार्ता कर जेपीएससी पीटी 14 परीक्षा परिणाम में अनियमितताओं का आरोप लगाया। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कट ऑफ अंक सार्वजनिक करने, उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने और आयोग के कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने की मांग की। उन्होंने 22 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन की घोषणा की।
1: 17-18-19 तारीख को पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है। 20 तारीख को सोशल मीडिया के कैंपेन के माध्यम से हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे पूरे प्रदेश के छात्र। 21 तारीख को शाम में सभी जगह मशाल जुलूस का आयोजन किया जाएगा और 22 तारीख को जयपाल सिंह स्टेडियम से सुबह 10 बजे छात्रों का एक रैली चलकर जेपीएससी कार्यालय जाएगा और उनसे सवाल जवाब और हिसाब और किताब मांगेगा।
0: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राजकीय श्रावणी मेले की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीएसपी स्तर के 69 पुलिस पदाधिकारियों को देवघर, दुमका और रेल धनबाद में तैनात किया है। प्रतिनियुक्त अधिकारियों में झारखंड सशस्त्र पुलिस, आईआरबी, एसटीएफ और एटीएस के अधिकारी शामिल हैं, जो भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा की कमान संभालेंगे। रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन में आज 135वें डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की प्रतिष्ठित ट्रॉफियों का भव्य शोकेस आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि खेल मंत्री सुदिव्य कुमार और विशिष्ट अतिथि मेजर जनरल सज्जन सिंह मान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खेल निदेशक छवि रंजन ने बताया कि रांची में पहली बार डुरंड कप का आयोजन हो रहा है।
2: पहली बार रांची की मेजबानी कर रहा है। ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है रांची शहर के लिए और पूरे झारखंड के लिए। हम चाहते हैं भवन का एक माध्यम बने जिसके माध्यम से हमारे कुछ अच्छे प्लेयर झारखंड से निकले नाम और युवा जो खिलाड़ी उनके बीच में एफएम के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी दूरदर्शन के माध्यम से भी उनके बीच में मैसेज गए। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम में हम लोग काउंटर्स बनाए हुए हैं, 21 जुलाई से वहां पर टिकट मिलने शुरू हो जाए। आपको काउंटर पे आके टिकट खरीदने पड़ेंगे, टिकट निःशुल्क रहेगा, उसमें एक रुपया नहीं लगता।
0: इस अवसर पर डूरंड कप, प्रेसिडेंट्स कप और शिमला ट्रॉफी का रांची के मोरहाबादी मैदान और फिरायलाल चौक सहित प्रमुख मार्गों पर भव्य रोड शो निकाला जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किनारा फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत दिया है आर डी परमन ने।

0: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉव पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
1: अगला गीत आइए अब सुनते हैं, घरोंदा फिल्म का, भूपेंद्र सिंह की आवाज में, गुलजार के बोल हैं, जयदेव का संगीत है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 3:10 होने को है। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे पॉडकास्ट सीरीज के अंतर्गत पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं समाज में अंगदान को बढ़ावा देने वाले नीलेश विनोद चंद्रा मांडलेवाला के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है लोपा।
2: नीलेश भाई, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे ख्याल आया कि आपको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है।
3: मेरे पिताजी की किडनी 97 में खराब हो गई थी और उस समय हमने मुंबई में उनका इलाज करवाया था। डॉक्टर भरत भाई ने कहा कि जो किडनी है उनके अंदर एक स्टेंट रखना पड़ेगा। 2004 में डॉक्टर ने कहा कि जो स्टेंट रखा था वो स्टेंट अभी काम करना बंद कर दिया है। अभी आपके पास दो इलाज है, या तो आप डायलिसिस कराओ या तो ट्रांसप्लांट कराओ। मैंने भी मेरे पिताजी को मेरी किडनी देने की बात कही कि मेरी एक किडनी आपको देता हूँ जिससे आपको अच्छी लाइफ मिल सके। मेरे पिताजी ने मना किया कि आपकी उम्र छोटी है। मेरे ब्रदर को भी मना किया कि मैं डायलिसिस के ऊपर ही रहूंगा। 2004 में मेरे पिताजी का हफ्ते में दो बार डायलिसिस शुरू हुआ और मैं मेरे पिताजी को जब भी डायलिसिस करवाने के लिए अस्पताल जाता था तो मैं देखता था कि बहुत कम उम्र के लोग भी डायलिसिस वहाँ पे करवा रहे थे। और वहाँ पे ख्याल आया कि परिवार में से कोई किडनी नहीं दे सकता है तो क्या ऐसे मरीज को लाइफ टाइम डायलिसिस पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि डायलिसिस की पीड़ा हमने तो देखी ही थी। तो डायलिसिस से व्यक्ति को जीवन तो मिलता है लेकिन वो क्वालिटी लाइफ नहीं होती है, क्वांटिटी लाइफ मिलती है। ये सोच, ये विचार कि मुझे डायलिसिस सेंटर के जो वेटिंग रूम है उसमें आता रहता था। 2004 में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑनररी सेक्रेटरी था। उस समय बहुत से लोगों के साथ मुलाकात होती थी तो ऐसी मुलाकात उस समय के गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख श्री चिनुभाई शाह हमारी चैम्बर की विजिट पे आए थे। तो चिनुभाई के साथ ऐसे एक अनौपचारिक बातचीत में किडनी के बारे में हम लोगों की चर्चा हुई। तो चिनुभाई ने कहा कि नीलेश भाई, आप इतना सब जानते हो किडनी के बारे में, इतना सब काम करना चाहते हो, आप हमारी संस्था में जुड़िए। मैंने शुरुआत में प्रिवेंशन के ऊपर ही काम करना शुरू किया कि किडनी खराब ना हो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, किडनी कैसे खराब हो जाती है उसके बारे में लोगों को समझाना शुरू किया। लेकिन मेरी सोच अलग थी। मेरी सोच थी कि जो लोग की किडनी खराब हो जाती है तो परिवार में से नहीं दे सकता है तो उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी। तो उसको क्वालिटी लाइफ मैंने जब ये रिसर्च किया तभी मुझे मालूम पड़ा कि ब्रेन डेड व्यक्ति के अंगों के दान से उनको किडनी का दान हो सकता है। तो मैंने सूरत शहर के अस्पताल के आईसीयू के डॉक्टर का कांटेक्ट करना शुरू किया, शहर के न्यूरोसर्जन न्यूरोफिजिशियन का कांटेक्ट करना शुरू किया कि ऐसे जब भी कोई ब्रेन डेड केस आता है तो हमें उनका जानकारी दीजिए कि जिससे हम उसका किडनी का दान करवा सके।
2: तो जब आप डॉक्टरों से मिलने जाते थे तो उनका रिस्पांस कैसा था?
3: 2005 की बात करें तो पूरे देश में अंगदान के बारे में बात ही नहीं थी और लोगों को ऐसा भी था कि एक जो टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़ा हुआ आदमी है वो कैसे लोगों को अंगदान के बारे में समझा पाएगा। लेकिन मैंने मेरी पूरी बात बताई कि मैं क्यों ये क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। मेरे फादर का इंसिडेंट उन लोगों को बताया तो मैंने बोला कि आप हमें जानकारी दीजिए तो मैं कोशिश करूंगा। वहां से ये जर्नी की शुरुआत हुई थी और 12 जनवरी 2006 के दिन सूरत की अशक्त आश्रम अस्पताल में एक व्यक्ति ब्रेन डेड थे, उनकी जानकारी हमें दी गई। हम लोगों ने अस्पताल जाके परिवारजनों को अंगदान का महत्व समझाया।
2: उनका रिएक्शन कैसा था जब
3: उसका तो वही था कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। तभी हमने बताया कि ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ, शरीर है लेकिन आत्मा चली गई है, लेकिन आप उनके किडनी का दान करोगे तो दो लोगों को नया जीवन मिलेगा और नया जीवन देने का काम ईश्वर का काम है और आप जब भी ये ईश्वरीय कार्य करते हो, जो दो व्यक्ति डायलिसिस पे जीवन जी रहा है तो उनको नया जीवन मिलेगा, एक डायलिसिस की जो पीड़ा है उसमें से उसको मुक्ति मिलेगी और वो परिवार ने हाँ कही।
2: पहले किडनी के लिए ही सोचा था आपने क्योंकि आपके फादर की किडनी के लिए आप डायलिसिस करवाते, उसके बाद में बहुत सारे अंगों का दान काट हुआ जिसमें सूरत में ही पहली बार कृत्रिम हाथ का भी मरण हुआ था, तो तब क्या आपने सोचा था कि ऐसा हो सकता है? और जब मैं डॉक्टर से बात की तो वो जर्नी कैसी थी आपकी?
3: जी, उस समय गुजरात में केवल 5-7 ही किडनी ट्रांसप्लांट की अस्पताल थी। 2005-6 की हम बात करें तो गुजरात में ट्रांसप्लांट भी केवल किडनी का ही हो रहा था। मैं बात करूं जनवरी 2006 में हमने किडनी का दान करवाया और दूसरे महीने 8 फरवरी 2006 के दिन सूरत के स्मीमेर अस्पताल में एक 24 साल का लड़का था, वो ब्रेन डेड हुआ। हमने उनके पिताजी के साथ में किडनी डोनेशन की बात कही, उन्होंने हाँ कही, तो हमने IKDRC को कांटेक्ट किया और उसी समय हमारे सूरत के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का कॉल आया कि नीलेश भाई, मुझे मालूम पड़ा कि आज आप किडनी का दान करवा रहे हो, तो क्या लीवर भी पॉसिबल हो पाएगा क्या? तो मैंने कहा कि गुजरात में तो लीवर ट्रांसप्लांट हो ही नहीं रहा है, तो लीवर भेजेंगे कहाँ पे? तो उन्होंने कहा वो चिंता आप छोड़ो, मैं बाकी की व्यवस्था करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ये बातचीत करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको जितने भी ऑर्गन्स का डोनेशन हो सकता है वो करवाइए। तो फिर लीवर का डोनेशन हम लोगों ने करवाया और वो लीवर हैदराबाद की ग्लोबल अस्पताल में भेजा गया था। किडनी अहमदाबाद की IKDRC में डोनेट की गई। मैं बात करूं तो हैंड डोनेशंस का 2015 में हैंड डोनेशन और ट्रांसप्लांट की शुरुआत हुई। कोची में पहला देश का हैंड का डोनेशन और ट्रांसप्लांट हुआ था। लेकिन सूरत ने अक्टूबर 2021 में सबसे कम उम्र के बच्चे का, 14 साल के बच्चे का हैंड का डोनेशन सूरत से करवाया था। वो देश में सबसे कम उम्र के बच्चे का हैंड का डोनेशन उस समय था। लेकिन सितंबर 2024 में हमने सूरत से ही वलसाड़ की एक 9 साल की बच्ची का हैंड का डोनेशन करवाया था। सभी डेटा हमने देखा तो उसके हिसाब से वो जो बच्ची है वो सबसे यंगेस्ट है इन वर्ल्ड हैंड डोनेशन के अंदर। सूरत से 4 या 5 दिन के बच्चे की किडनी का भी दान हुआ है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि सूरत से जो 2017 में एक 14 महीने का बच्चे का हृदय का भी डोनेशन हुआ था और उस समय देश में सबसे कम उम्र के बच्चे के हृदय डोनेशन की पहली घटना थी।

0: और उसका जो ट्रांसप्लांट है वो ट्रांसप्लांट मुंबई में एक 3.5 साल की बच्ची में हुआ था। इसी तरह से कोरोना के समय में पूरे देश में अंगदान की प्रवृत्ति बहुत कम चल रही थी और उस समय भी सूरत से लगातार ऑर्गन डोनेशंस हो रहे थे और उसी समय दिसंबर 2020 में सूरत से एक 2.5 साल के बच्चे का उनके किडनी लीवर हृदय फेफड़े और नेत्रों का दान किया गया और देश में सबसे कम उम्र के बच्चे के मल्टी ऑर्गन डोनेशंस की वो पहली घटना थी।
1: ऐसा कोई किस्सा जो आपके दिल को छू गया हो, से बात की और आंखों में आंसू आ गए?
0: लोबा जी, हर एक किस्सा जो है वो दिल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि किसी को अंगदान के लिए तैयार करना, राजी करना, और ऐसे समय पे जब ये परिवार में रुदन है, आकरण है, और ये कंसेप्ट को समझा के उसको तैयार करना और बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। हम लोग भी रोते हैं, लेकिन हर एक केस अलग अलग है, लेकिन मुझे दो केस बहुत ही टच किए हैं। वो एक है जो 2017 में 14 महीने का लड़का था, उसके हार्ट और दूसरे अंगों का दान करवाया था। वो बहुत ही मुझे टच हुआ था, क्योंकि पहली बार मैं इतने सालों में इतने छोटे बच्चे के परिवार के साथ काउंसलिंग कर रहा था और जब भी मैं सिविल अस्पताल के अंदर उनको काउंसलिंग किया और जब ये ऐसा फूल जैसा मासूम बालक सोया हुआ था, ऐसे बच्चों को, बच्चे के परिवार को समझाना बहुत ही कठिन था। लेकिन मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ के माता पिता को, के जिन्होंने ये निर्णय किया। बहुत सामान्य परिवार से वो लोग है, आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने हाँ कही तो उनके जो हृदय का दान हुआ और उनके हृदय दान की वजह से मुंबई में एक 3.5 साल की बच्ची जो 16 महीने से बेड पे ही रही थी, ऐसी बच्ची को नया जीवन मिला। और उसी तरह जब भी हमने हैंड्स का डोनेशन जो करवाया था अक्टूबर 2021 में, जो लड़का था वो लड़के का हैंड का डोनेशन करवाया, वो भी बहुत ही, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन का डोनेशन करवाना अलग है और एक्सटर्नल ऑर्गन का डोनेशन करवाना अलग है। इंटरनल ऑर्गन में कुछ दिखता नहीं है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में पूरी मानसिकता बदल जाती है।
1: ये पूरी जर्नी में आपने डोनेट लाइफ नाम कैसे आपने चूज किया?
0: ने, मैं तो 2005 से कार्य शुरू किया था। 2013 में सूरत के जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे उनकी किडनी खराब हो गई थी और चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, उनका कॉल आया कि हमारे एक ऑफिसर की किडनी खराब है, आप क्या हेल्प कर पाओगे? तो मैंने उनको कहा कि मैडम, मैं और तो कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर को गाइडेंस दे पाऊंगा। तो सर का नाम IKDRC में रजिस्टर्ड हुआ, वहीं सर अहमदाबाद ही रुके और वहीं डायलिसिस भी उन्होंने शुरू करवाया। थोड़े महीनों के बाद सूरत से एक किडनी का डोनेशन हुआ और वो किडनी सर के अंदर ट्रांसप्लांट हुई। उनमें ट्रांसप्लांट हुई तो सर ने बताया कि नीलेश भाई, आज मुझे नया जीवन मिला है तो मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। हम लोग मिलके एक ट्रस्ट बनाते हैं और वो ट्रस्ट बना के हम लोग नेशनल लेवल पे प्रवृत्ति को लेके चलते हैं। लेकिन मैंने मना किया कि सर, मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे मैं खुश हूँ, क्योंकि ट्रस्ट बनाना आसान है, चलाना मुश्किल है और टिकाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो सर खुद यूपी से थे तो उन्होंने बोला कि हम लोग बनाएंगे। फिर 1 साल के बाद मैंने हाँ कही तो अभी नाम क्या करना है उसके ऊपर सोच विचार हुई। बहुत से अलग अलग नाम, हमारी जो टीम थी हम लोग साथ में बैठते थे, तो फिर इसमें सोच आई कि जो हमारा, हम जो कार्य कर रहे हैं वो लोगों को जीवन देने का ही कार्य कर रहे हैं, तो ये डोनेट लाइफ के नाम से ही हम लोग ट्रस्ट बनाएंगे और डोनेट लाइफ नाम हमने फाइनल किया।
1: 25 सालों की मेहनत, जब पद्म से अवार्ड जब आपको पता चला, तब फैमिली के फ्रेंड्स को आपके रिएक्शन क्या?
0: मेरे पास इसके लिए कोई शब्द ही नहीं, क्योंकि मैं मेरी लाइफ को देखता हूँ आज इतने सालों की, वो कभी जीवन में ऐसा नहीं सोचा था कि भाई ये जगह पे हम लोग पहुंचेंगे। क्योंकि जो परिवार में ऑर्गन खराबी है और वो परिवार को जब भी किडनी मिलती है, लीवर मिलता है, हृदय मिलता है, फेफड़ा मिलता है, इवन हैंड का डोनेशन से उनको ट्रांसप्लांट होते हैं, तो उनके और उनके परिवार के चेहरे पे जो खुशहाली आती है वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था। भारत सरकार ने जो हमें सम्मान दिया है, ये सम्मान है जिन ब्रांडेड व्यक्ति के परिवारजनों ने अपने ब्रांडेड स्वजन के अंगों के दान करवा के हजारों अंग विफलता के मरीजों को जो नया जीवन दिया है, इन सभी का सम्मान है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो नींव रखी गई वो इतनी मजबूत नींव थी, जो उसके ऊपर जो इमारत खड़ी हुई

0: आंखों का दान करने से भी लोग आज आगे नहीं आते हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि आत्मा अजर और अमर है। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी आत्मा पहले चली जाती है, और जब जो हम उनका अग्निदाह करते हैं जो पार्थिव देखा वो तो सिर्फ एक खोखा ही होता है। आज हमारे देश में हर साल 5 लाख से अधिक लोगों की मौत समय सर अंग न मिलने की वजह से हो रही है। हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई ने हमें 2047 में जब भी हमारा देश आजादी की शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तभी हमारा देश विकसित भारत होगा वो परिकल्पना हमें दिखाई है। हमारी संस्था ने भी एक मिशन बनाया है कि 2047 में जब भी हमारा देश शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तभी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होनी चाहिए। ये प्रोग्राम में हम अभी यूथ को तैयार कर रहे हैं। हम यूथ को बोल रहे हैं कि जो 20 साल पहले जो हमने बीज बोया था वो बीज आज वटवृक्ष बना है, लेकिन आगे की रेस आपको कंप्लीट करनी है।
1: तो ये थे दिनेश भाई मालेवाला, जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी कहाँ से स्टार्ट की वो बताया, और इनके लिए हूँ इनके बहुत ही आभारी।
2: थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी समाज में अंगदान को बढ़ावा देने वाले नीलेश विनोद चंद्रा मांडलेवाला के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी लोपा।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।
4: अभी आप सुन रहे थे पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं रांची मेलोडीज। आज की रांची मेलोडीज में हम आपको सुनवाएंगे राजेश खन्ना के फिल्मों के गीत। जी हाँ, राजेश खन्ना का असली नाम था जतिन खन्ना, और आज ही के दिन यानी 18 जुलाई 2012 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो आज उनकी पुण्यतिथि है और इसीलिए आज का ये कार्यक्रम राजेश खन्ना के गीतों से सजा है। राजेश खन्ना ने 1966 में आखिरी खत से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जो 1967 में भारत की पहली आधिकारिक अकादमी पुरस्कार प्रविष्टि थी। राजेश खन्ना ने 1969 में शर्मिला टैगोर अभिनीत रोमांटिक संगीत में फिल्म आराधना से सुपर स्टारडम हासिल किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई और उन्हें इस फिल्म ने रातों रात स्टार बना दिया। तो आइए सुनते हैं आराधना फिल्म का ये गीत।

और फिर उसी वर्ष यानी 1969 में ही मुमताज के साथ उनकी रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म आई थी दो रास्ते, और इस ये फिल्म भी सुपर हिट हुई और राजेश खन्ना को इस फिल्म ने सुपरस्टार बना दिया। तो आइए सुनते हैं दो रास्ते फिल्म का ये गीत।

1970 के दशक की शुरुआत में राजेश खन्ना की स्टारडम की जो शुरुआत थी वो चरम पर थी। उन्होंने 1970 से 1971 में बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा जारी रखा और 1969 से 1972 के बीच लगातार 15 सोलो हिट फिल्में दी और ये हिट फिल्मों का रिकॉर्ड आज भी नहीं टूटा है। और इतनी हिट फिल्म देने के बाद राजेश खन्ना भारत के पहले सुपरस्टार बने।

जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 1970 और 1971 में बॉक्स ऑफिस पर राजेश खन्ना का दबदबा था। उनकी फिल्में बहुत सारी फिल्मों में काम करते हुए उन्होंने 3 साल के अंतराल में ही लगातार 17 सफलताएं हासिल की थी। राजेश खन्ना ने सच्चा झूठा में दोहरी भूमिका भी निभाई थी और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था। और फिर आनंद फिल्म में उन्होंने एक कैंसर रोगी की भूमिका निभाई थी और इसके लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुप

राजेश खन्ना ने अभिनेत्री मुमताज़ के साथ बहुत सारी फिल्में की और उनकी तकरीबन उनके साथ फिल्में जो हैं वो हिट भी रही और उनकी जोड़ी को जो दर्शक बहुत पसंद करते थे। फिर उनके साथ उनकी फिल्म आई थी दाग, और दाग फिल्म के लिए भी फिल्मफेयर पुरस्कार में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में 5वां नामांकन मिला था।

1974 का वर्ष राजेश खन्ना के लिए एक शानदार वर्ष था, जिसमें उन्हें आलोचकों और व्यावसायिक दोनों ही तरह से सराहना मिली थी। उनकी पहली फिल्म जो आई थी हमशक्ल, वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म आई थी आपकी कसम, जो सुपरहिट साबित हुई थी और इस फिल्म में भी उनके साथ मुमताज थी। इसके सभी गाने बहुत हिट हुए थे, विशेष रूप से किशोर कुमार के द्वारा गाया गया गाना जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम।

सुपरस्टार होने के साथ साथ राजेश खन्ना एक राजा की जिंदगी भी बिताते थे। वो इतने सुपरस्टार थे और उन्होंने मुंबई में बंगला भी खरीदा था जिसका नाम था आशीर्वाद, और ये बंगला जल्द ही लैंडमार्क भी बन गया और उनकी बेमिसाल स्टारडम का प्रतीक भी। प्रोड्यूसर्स राजेश खन्ना के मशहूर दरबार के बाहर घंटों इंतजार करते रहते थे और वे ऑडिशन देने भी उसके बाद तभी जाते थे जब उनका मन करता था, और अपनी मशहूर सिल्क लुंगी कुर्ते में उनको देखा जाता था। उनकी फिल्में आराधना, दो रास्ते के साथ साथ, द ट्रेन, सच्चा झूठा, सफर, आन मिलो सजना, कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, आनंद, अंदाज, मर्यादा, हाथी मेरे साथी, खामोशी और अजनबी थी, ये सारी फिल्में सुपरहिट थी। उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे। उन्हें 5 फिल्मफेयर पुरस्कार और 2005 में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

पर ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: इसी गीत के साथ ही आज की रांची मेलोडीज अब यहीं संपन्न होती है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, 4 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। हैदराबाद के स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान के तहत श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। मिशन आगमन के तहत यह बहुप्रतीक्षित प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। राज्य में मच्छर जनित और जल जनित रोगों के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने रांची, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जनों को युद्ध स्तर पर मलेरिया नियंत्रण अभियान चलाने के आदेश दिए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। यह पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के सिसई गांव निवासी वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार को वर्ष 2026 का IEI यंग इंजीनियर अवार्ड प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें कोयम्बटूर में आयोजित 39वें राष्ट्रीय धातुकर्म एवं पदार्थ अभियंता सम्मेलन में इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान और नवाचार के लिए दिया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर आज गिरिडीह में राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सिंडिकेट और दलालों का प्रभाव बढ़ा है तथा कोयला सहित अन्य खनिजों के अवैध कारोबार पर सरकार प्रभावी रोक लगाने में विफल रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज रांची में प्रेस वार्ता कर JPSC PT-14 परीक्षा परिणाम में अनियमितताओं का आरोप लगाया। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने 22 जुलाई को JPSC कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन की घोषणा की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कल्याणी। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। भेंट वार्ता भी आप सुनेंगे। भेंट वार्ता का विषय है घुटने का दर्द, कारण सावधानियां। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर धीरज कुमार जायसवाल और उनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने। एक और चर्चा होगी जिंदगी में दोस्त का महत्व। सूत्रधार है युवराज और प्रस्तुति है गौरव कुमार की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कल्याणी।

0: कल्याणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त युवराज और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप सब स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और मस्त हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारी जिंदगी से, हमारे परिवार से, पास पड़ोस से और समाज से जुड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातों की जानकारी और चर्चा आपके साथ करते रहते हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मुद्दे पर आपसे चर्चा करते हैं और विभिन्न पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, हमेशा ईश्वर को याद करना चाहिए, चाहे वह सुख के समय हो या दुख के समय। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है और जीवन में आगे बढ़ने और तरक्की करने की शक्ति मिलती है। यदि हम ईश्वर को स्मरण, ध्यान या भक्ति करते हैं तो जीवन में सच्ची शांति, अच्छी ऊर्जा और सही दिशा में चलने का ज्ञान प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज के चर्चा के इस कड़ी में हमें ईश्वर को सुख या दुख में हमेशा याद करना चाहिए। तो मित्रों, आज के चर्चा के इस कड़ी में हमें ईश्वर को सुख या दुख में हमेशा याद करना चाहिए पर आधारित दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई विषय पर विशेष चर्चा करते हैं। दुख में सुमिरन, सुख में करें ना कोई। मित्रों, ये कहावत संत कबीर के प्रसिद्ध दोहे से प्रेरित है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख में काहे को होए। दोस्तों, इस दोहे का अर्थ बहुत गहरा है। सामान्यतः यह मनुष्य किसी संकट, बीमारी, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक तनाव या किसी अन्य दुख से घिर जाता है, तब उसे ईश्वर की याद आती है। वह मंदिरों में जाता है, पूजा पाठ करता है, प्रार्थना करता है और भगवान से अपने दुख दूर करने की विनती करता है। लेकिन जैसे ही जीवन में सुख, सफलता और समृद्धि आती है, वह उसी ईश्वर को भूलने लगता है। साथियों, आज का मनुष्य अपनी उपलब्धियों पर इतना गर्व करने लगता है कि उसे लगता है कि सब कुछ उसने अपनी मेहनत से ही प्राप्त किया है। वह भूल जाता है कि जीवन, स्वास्थ्य, परिवार और अवसर, ये सब ईश्वर की कृपा और प्रकृति का उपहार है। यही भूल धीरे धीरे मनुष्य को अहंकारी बना देती है। वास्तव में ईश्वर का स्मरण केवल दुख के समय ही नहीं बल्कि हर परिस्थिति में होना चाहिए। जब हम सुख में भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तब हमारे भीतर विनम्रता बनी रहती है, हम दूसरों के प्रति संवेदनशील बनते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। मित्रों, ईश्वर का स्मरण केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। सच्चा स्मरण तब होता है जब हम सत्य बोले, ईमानदारी से अपना कार्य करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें तथा अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें। यही सच्ची भक्ति है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार सुख और दुख भी अस्थायी नहीं होते। यदि हम हर परिस्थिति में धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखे तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी हमें कमजोर नहीं कर सकती। आज के समय में तनाव, प्रतिस्पर्धा और भाग दौड़ ने लोगों को मानसिक रूप से बेचैन कर दिया है। ऐसा समय में प्रतिदिन कुछ मिनट ईश्वर का स्मरण, ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन मन को शांति देता है। इससे हमारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और हम कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक साहस के साथ कर पाते हैं। सुख के समय ईश्वर को याद करना, सुख के समय में ईश्वर को याद करने का एक और लाभ यह है कि हम अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव विकसित करते हैं। कृतज्ञ व्यक्ति कभी घमंडी नहीं बनता। वह अपनी सफलता का श्रेय केवल स्वयं को नहीं बल्कि परिवार, समाज, गुरु और ईश्वर को भी देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरे के दुख को भी समझता है और यथासंभव उनकी सहायता करता है। प्रिय श्रोताओं, हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर केवल संकट से बचाने का समाधान ही नहीं बल्कि वो हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक भी है। यदि हम प्रतिदिन कुछ क्षण उनके स्मरण में बिताएं तो हमारा मन शांत रहेगा, विचार सकारात्मक होंगे और जीवन अधिक सार्थक बन जाएगा। अंत में संत कबीर का यह संदेश हमें जीवन भर याद रखना चाहिए कि केवल दुख में ही नहीं बल्कि सुख में भी ईश्वर का स्मरण करें, क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर को याद रखता है, वह जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य, विश्वास और आत्मबल के साथ करता है। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सुबह सोकर उठते ही आपके घुटने में एक अजीब सा अकड़न महसूस होती है, या सीढ़ियां चढ़ने उतरने समय घुटनों में कट की आवाज आती है और तेज दर्द होता है? अगर हाँ, तो आज के कार्यक्रम खास आपके लिए ही है। आज हम वेट वार्ता में सुनने जा रहे हैं एक बेहद आम लेकिन गंभीर समस्या पर, घुटने का दर्द कारण और सावधानियां विषय पर। इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित है शहर के जाने माने हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कुमार जायसवाल जी, और इनसे बातें करेंगे श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों जोहार, नमस्कार। मित्रों, बदलती लाइफ स्टाइल में आजकल लोग घुटना के दर्द से परेशान रहते हैं, चाहे वो हमारे युवा साथी हों, बड़े बुजुर्ग हो या वृद्ध जन, हर लोग घुटने के दर्द से पीड़ित हैं। क्यों इससे हम ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं और क्या कारण है? क्या हमारी बदलती जीवन शैली इसके लिए जिम्मेदार है? हमारा खान पान इसके लिए जिम्मेदार है? और हम अपने जीवन शैली को कैसे सुधारें, कौन कौन सी सावधानियां रखें, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं रांची के प्रसिद्ध हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कुमार जायसवाल। डॉक्टर धीरज कुमार जायसवाल सर, स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, ये घुटना का दर्द बड़ा ही कॉमन होता जा रहा है, हर लोग इससे पीड़ित है, क्या कारण है सर?
2: हमारी आज की जीवन शैली काफ़ी अस्त व्यस्त होने के साथ साथ हमारा खान पान भी काफ़ी गड़बड़ होते जा रहा है। हम पौष्टिक आहार ना खा के स्वादिष्ट आहार की ओर जा रहे हैं। फास्ट फूड और तनाव के कारण अपना खान पान नियमित नहीं होने से और एक्सेसिव अपने जोड़ों का उपयोग करने से, प्रायः अधिक मात्रा में सीढ़ी चढ़ना उतरना, खान पान के साथ साथ हम अपने रख रखाव के कारण वो व्यायाम नहीं करते हैं, खान पान ठीक नहीं रहती है, धूप में नहीं बैठ पाते हैं, इसके कारण हमारी हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है और हमारे जोड़ भी ग्रसित होते जा रहे हैं। पहला कारण क्या होता है कि यदि आप जवान में, यदि आप यंग एज में आपको चोट लग गई है तो उसमें हड्डी जो शेप होती है वो टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाने के कारण उसके कारण भी दर्द हो सकती है। किसी किसी का लिगामेंट इंजरी होता है, उसके कारण भी इंजरी के कारण भी दर्द हो सकती है, जो कि चोट लगने के कारण होता है। किसी किसी को गठिया बहुत प्रकार के होते हैं। एक होता है कि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। तो उसमें यदि इन्फेक्शन होता है तो बच्चों में भी होता है, वो डायबिटीज़ में भी लोगों को मिलता है। दूसरा हो गया कि आपको गाउटी आर्थराइटिस, जिसमें प्रायः लोग बोलते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया, आपका खान पान गड़बड़ रहा तो यूरिक एसिड उसके कारण भी होते हैं। तीसरा होता है आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, उसमें और जोड़ भी इन्वॉल्व होते हैं। चौथा हो गया हमारा जो बुजुर्ग लोगों को प्रायः होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो प्रायः बहुत कॉमन देखा जा रहा है, बिना ना चोट लगा उन्हें ना कुछ हो रहा है, लेकिन अचानक 40 साल के बाद प्रायः लोगों को शुरू हो जाता है। आज इनका वजन अधिक है, उनको बहुत जल्दी हो जाता है। तो हमारे लिए सबसे मैटर करता है कि किस कारण से हुआ, चोट लगी नहीं चोट लगी, इन्फेक्शन हुआ नहीं हुआ, गाउटी आर्थराइटिस है नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बहुत सारे कारण होते हैं। यदि आपको चोट लगी है तो पहला काम है आप उस जगह को, चोट लगा तो उस पार्ट को इमोबिलाइज, जहाँ बाल ने एक्सीडेंट कर गया चाहे घर से गिर गए, तो आप उसको इमोबिलाइज, मतलब क्या होता है कि उसको ज़्यादा मूवमेंट ना करें, और उसको आइस से, बर्फ से, यदि आपके घर फ्रिज है पॉलीथीन में बर्फ लेके या आइस पैक है, उसे सेक लें। सेकने से क्या होगा, आपको दर्द आराम हो जाएगा, और उसको इमोबिलाइज करके, स्थिर करके अपने आसपास के डॉक्टर से संपर्क करके एक्सरे करा के उसके आगे की प्रक्रिया करें। किसी किसी को लिगामेंट इंजरी हो जाती है, अब लिगामेंट इंजरी एक्सरे में दिखता नहीं है, चलने में चल रहा है मेरा पैर लचक जाएगा, उसको बोलते हैं इनस्टेबिलिटी, या हम खेल कूद कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आग उस कारण से दौड़ते हैं, जब मेरा पैर लचक गया तुरंत सूजन हो जाती है, उसमें भी इमोबिलाइज करके, स्प्रे लगा के, बर्फ से सेक करके, डॉक्टर से सलाह लेके आगे की प्रक्रिया होती है। कभी कभी हड्डी टूट गई, टूट जाने के बाद जोड़ प्लास्टर हुआ चाहे ऑपरेशन हुआ, उसके कारण जो जाम हो जाता है, स्टिफनेस बोलते हैं, उसकी फिजियोथेरेपी से फायदा हो सकता है। तीसरा कारण जो कि इन्फेक्शन हो गया, बच्चे में होता है, अचानक बच्चा पैर हिलाना नहीं चाहता है, प्रायः जोड़ सूज गई, लाल हो गई, गर्म हो गई, छूने में गर्म हो रहा है, बच्चा रो रहा है, हिलाने नहीं दे रहा है, तो आप एकदम बेहिचक तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके आप उसका उचित इलाज कराएं, क्योंकि वो जाके धीरे धीरे आर्थराइटिस करके जोड़ खराब कर सकता है, इन्फ्लेमेशन कर सकता है, जोड़ जाम हो सकता है। किसी को ट्यूबरकुलोसिस भी होती है, बहुत रेयर मिलती है, तो उसका भी डॉक्टर से मिलकर संपर्क करें। एक और कारण है, जो इसको बोलते हैं मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया। प्रायः पैर के अंगूठे से शुरू होता है लेकिन घुटने में भी होता है। अचानक आया सर, अचानक मेरे पैर में सूजन हो गया सर, कुछ ना गिरे हैं ना कुछ हुआ है लेकिन मेरा पैर में सूजन है, चलने में बहुत कष्ट हो रही है, बाथरूम जाने में दिक्कत हो रहा है, ऐसे में आपको डॉक्टर सलाह लेके यूरिक एसिड जांच करके उसका इलाज कराना पड़ता है। फिर हो गया जिसको

0: प्रायः जो हमेशा लोग करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ मेरा घिस रहा है, जोड़ का मज्जा घिस रहा है, कोई ग्रीस खींच रहा है, प्रायः लोग बोलते हैं सर सुबह उठते हैं उठा नहीं जाता है, नीचे बैठते हैं चुकम को बैठते हैं खड़ा होने में दिक्कत होती है। तो इसका मूल कारण हो रहा है हमारा लाइफ स्टाइल में गड़बड़। यदि हम अपने लाइफ स्टाइल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रायः क्या हो रहा है आजकल, हम सुबह उठते हैं जो हमारा प्रक्रिया था टहलने का, प्रायः सब कोई अपने काम काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं, स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस वाले ऑफिस जा रहे हैं, मोबाइल से इतना ये हो गया है, लगाव हो गया है, तो उनका धूप का दर्शन कम हो गया, उनको उनको शरीर को धूप लगाना है। प्रायः हमें जाड़े में धूप में बैठना चाहिए, गर्मी तो फिर नहीं बैठ सकते हैं, जाड़े में शरीर को धूप लगाना है, स्पेशली महिलाओं को बाँह के नीचे धूप लगाना है। उसके साथ साथ हड्डी मजबूत करने के लिए विटामिन डी, जो हम दोनों ने धूप धूप इसलिए बोल रहे हैं कि धूप से आपको विटामिन डी मिलता है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी वहीं पर है, तो आपको धूप में बैठना है। जो धूप में नहीं बैठ सकते हैं उनको डॉक्टर से मिलकर विटामिन डी की जांच करके विटामिन डी की दवाइयां सुइयां, चाहे बसु भी लेते हैं, कोई कोई सिरप भी लेते हैं, तो वो विटामिन डी हो गया। अब बात उठा कि हड्डी में मजबूत करने के लिए और क्या करना है, कैल्शियम सबकी बात होती है, सर कौन सा कैल्शियम लाएं? हमारा कहना है कैल्शियम तो बाद में की बात है, आपके डाइट में दूध होना चाहिए, दूध दूध की बना हुआ सामान, दही हो गया, छेना हो गया, छाछ हो गया, किसी किसी को दूध नहीं पचती है सर, गैस हो जाता है, तो गैस का कारण और भी होता है, तो दूध को गैस के लिए ब्लेम ना करें, दूध आप खाने का कोशिश करें, दूध पीने का कोशिश करें। बहुत लोग दूध सादा नहीं पी सकते हैं तो कुछ डालने का बोलते हैं पिए, ठीक है, जिसमें उनको जो इच्छा लगे। किसी किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है तो ऐसे मरीज को हम लोग बोलते हैं दूध ना पिए और उन्हें सप्लीमेंट बोलते हैं। और 50 के बाद स्पेशली महिलाओं में जो मेनोपॉज बोलते हैं, तो मासिक बंद होने के बाद भी अचानक हड्डी कमजोर होने लगती है और घुटने में दर्द जल्दी शुरू हो जाती है, ऐसे मरीजों को दूध दूध का बना हुआ सामान जो भी आपको पीना है खाना पीना है, धूप और कुछ कसरत और डॉक्टर से मिलकर दवाइयाँ जो सप्लीमेंट होता है वो लेना पड़ता है। और एक कारण और है हमारा बढ़ता हुआ वजन, जिस पर एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं फास्ट लोग, आप बच्चे भी आजकल ग्रसित हो रहे हैं, तो आपके खान पान में बहुत नियमित पौष्टिक आहार होना चाहिए, शरीर का वजन बढ़ाया बढ़ने नहीं देना चाहिए, जो BMI होता है उसको कंट्रोल रखना होगा आपको, बाहर के फास्ट फूड पर ध्यान कम दें, ज़्यादा जो पौष्टिक आहार में ध्यान देना पड़ेगा। फिर तीसरा कारण हो गया कि आपके घर में सीढ़ियाँ बहुत हैं, ऑफिस में सीढ़ियाँ बहुत हैं, चढ़ उतर रहे हैं, आओ उतरते उतरते कभी अचानक घुटना कट से आवाज़ किया और उसका पैर सूजन हो गया, आप बैठ गए, तो उसमें भी एक कारण होता है कि आपके यहाँ यदि लाइफ स्टाइल चेंज करना है तो हम बोलते हैं बुजुर्गों में पड़ाया चुक्कू मुक्कू पालथी मार के नहीं बैठे, जो स्क्वाटिंग क्रॉस लेग सिटिंग को अवॉइड करें, कमोड अपनाएं, कमोड जो वेस्टर्न स्टाइल के लैटिन उसको अपनाएं, नीचे बैठ के प्राय बुजुर्गों में नीचे बैठ के खाना नहीं है, पूजा नहीं, पूजा जो पूजा करते हैं बोलते ऊपर पूजा करो। और हड्डी मजबूत करने के लिए आपको कुछ व्यायाम करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको डॉक्टर से मिलके फिजियोथेरेपी की मदद लेके कसरत करना पड़ता है, जिसमें बोलते हैं क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज, जो घुटने की कसरत करनी पड़ती है।
1: डॉक्टर साहब आजकल काम के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं, लगातार बैठकर काम करते हैं, लगातार बैठे रहते हैं काम करते रहते हैं, तो इससे भी घुटना कहीं ना कहीं प्रभावित हो जा रहा है।
0: हाँ आपने सही कहा, बेसिकली हमारा जो काम होता है चाहे बच्चों का हो, चाहे हम अपने व्यवसाय में व्यवसायी को लोग देखें, चाहे आप बैंकर्स में देखें, चाहे बड़े ऑफिस में देखें, इतना लोड रहता है कि वो एक जगह स्थिर होकर अपना काम पे अपने काम को सफलतापूर्वक करने की कोशिश में अपना शरीर पर ध्यान नहीं देना बंद कर देते हैं। तो लोगों ने कहा कि एक जगह बैठना भी अपने पे बीमारी को बुलावट है, आप एक जगह बैठेंगे तो आपकी गर्दन की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और आपका घुटना भी एक जगह स्टिफ हो जाएगा। तो सलाह यही है कि आप बीच में 15 मिनट आधे घंटे बाद उठ के अपना फाइल किसी कारण से आप उठिए, थोड़ा सा घूम लीजिए, एक मिनट के लिए घूम लीजिए, लेकिन आप निकलिए। आज इनके घर में ऑफिस में यदि जगह है तो अपना पैर का टोज का मूवमेंट घुटने का एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि आप उसका वो स्टिफनेस ना हो।
1: जी यदि घुटने के दर्द को हम लगातार इग्नोर कर जा रहे हैं तो फिर समस्या कितनी बड़ी हो जाती है डॉक्टर साहब?
0: यदि आपको घुटने का दर्द पहली बार हुआ, पहले आप जाने कि क्या हुआ, चोट लगी, इन्फेक्शन हुआ, यूरिक एसिड बढ़ी, सबको डॉक्टर से मिलकर बात करना होता है कि देखना पड़ता है। यदि अचानक हो गया कोई चीज़ तो आपको ध्यान देना है कि मेरे को ये क्यों हुआ, क्या मैंने आज बहुत सीढ़ियाँ चढ़ ली, क्या मैं आज बहुत नीचे बैठ के काम कर लिया, क्या मैं ये सब कुछ नहीं किया लेकिन मेरे दर्द हो रहा है, तो या क्या मैंने रात में दो दिन पहले क्या ऐसा कुछ खाना खाया जिससे मेरी यूरिक एसिड बढ़ गई, ये ध्यान देना होता है। किसी किसी को मेरा सब कुछ ठीक है, मैं शाकाहारी हूँ, मैं कुछ अटपट नहीं खाता हूँ, मैं कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया, मेरी घुटने दर्द हो रहे हैं, प्रायः ये मिलता है बुजुर्गों में, उठे सर बाथरूम से उठे अचानक घुटना आवाज़ किया कट गया, ये शो करता है कि आपके घुटने खराब हो रहे हैं, आपकी ग्रीस कम हो रही है, आपके कार्टिलेज घिस रहे हैं, आपको बीमारी होने जा रही है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जिसका पहचान आप डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपका जो बीमारी है लक्षण से अनुसार बताएगा। डॉक्टर फिर आपके घुटने के एक्सरे कराएंगे, जॉइंट कितना घिसा हुआ है। काफ़ी लोग जब बहुत घिस जाता है नहीं चल पाते हैं तो एक बत्तख वाली चाल हो जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग वैडलिंग गेट। यदि ऐसा होता है तो आपका घुटना घिस रहा है और उसके घिसने से आपकी चाल जब बदल जाएगी तो बाद में कमर भी दर्द हो सकता है। ऐसे में आपको देखना है कहीं आप ज़्यादा वजन आपका तो नहीं है या आप अपने घुटने के रख रखाव तो नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर उनके लिए एक्सरे करेंगे, देखेंगे कितना जॉइंट घिसा है, आपका पैर कहीं टेढ़ा तो नहीं हो रहा है। टेढ़ा इंद्र कहने बोलते हैं, चाहे तो नॉक नहीं बोलते हैं जिसमें घुटना सड़ जाता है उसको बोलते हैं जेनु वेलगस, या आपका पैर बोइंग जैसा हो गया हो मतलब पैर आपका टेढ़ा हो रहा है तो उसको बोलते हैं जेनु वायरस। यदि कम उम्र में हो जा रहा है तो डॉक्टर उसको आपको लंबे से पूरा एक्सरे करके देखेंगे कि हाँ आपका यदि जॉइंट स्पेस ठीक है तो उसको सीधा करने के लिए डॉक्टर उसकी औषधि करते हैं। लेकिन आजकल क्या है, सर मेरा घुटना घिस गया तो किसी ने कह दिया सर मेरा घुटना बदल दो, काफ़ी चल चुका है टोटल नी रिप्लेसमेंट, घुटने का प्रत्यारोपण बहुत हद तक बहुत जरूरी भी है। जो आदमी अपनी दिनचर्या नहीं कर पाते हैं उनको बाथरूम जाने में दिक्कत हो रही है, चला नहीं जा रहा है, वैसे जिनका जोड़ जॉइंट एकदम घिस चुका है, पैर टेढ़ा हो चुका है, उसके लिए एकमात्र विकल्प बचता है जोड़ नी रिप्लेसमेंट, जो आज के दौर पर काफ़ी अच्छा हो रहा है, अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। घुटना दर्द हुआ तो इग्नोर कर देते हैं, डॉक्टर से सलाह नहीं लेना चाहते हैं, चाहते हैं पहले यही करें। ठीक है, हम लोग भी करते थे ऐसा, पुराने दादी नानी का जो उपाय था, तेल लगा लिया, मसाज कर लिया, उससे लोगों को राहत हो गई। आप प्राथमिक अपने घर में कर सकते हैं एक दिन के लिए दो दिन के लिए, लेकिन यदि घुटने में सूजन बहुत हो गया हो, यदि घुटने गर्म हो गए हैं आपके, चलने में लचकपन हो रही है, तो आप देर ना करें। आपकी घुटने छूने में गर्म है, आपको फीवर हो गया है, तो आप तत्काल डॉक्टर से मिलकर क्यों हुआ दादी ये जानने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप अपने ऐसी चोट लग गई है तो उसको इग्नोर ना करें, घुटने के आसपास ऐसी चोट लगी है उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जाके आगे हड्डी टूटी हो, आपके शरीर में विकृति आ सकती है, इसीलिए आप डॉक्टर से मिलके उचित उसका इलाज कराएं। लाइफ स्टाइल, हम प्रायः क्या करते हैं, एक जगह बैठ के प्रायः हमारा सेडेंटरी लाइफ हो गया, सुबह उठे घर में ही सब कुछ हो गया, आप घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, निकले तो आप सीढ़ी निकाल लिए, सीढ़ी हटा दिया, लिफ्ट आ गई, उतर गए, आपने ना चलना सीखा, आपने चलना धीरे सीखा ही नहीं, भूलते जा रहे हैं हम। और ये सब घुटने के लिए नहीं, शरीर का हर अंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशली हम ऐसा नहीं कि ये खाली समाज के हर तबके के लोग, क्योंकि हाथ में मोबाइल आ जाने के बाद घर में टीवियां हट गई, मोबाइल आ गए, तो लोगों का सेडेंटरी लाइफ हो गया, गर्दन और घुटना सब स्थिर हो गया। तो स्थिरता अपने आप ही बीमारी ला रही है। कितने हम चलना सीखिए, चलते रहिएगा तो कब से घुटना आपका चलता रहेगा, इसलिए चलना सीखिए, लोग चलना भूल जा रहे हैं धीरे धीरे।
1: यदि हम अपने शरीर को दुरुस्त रखें, रोज व्यायाम करें और हम सैर करते हैं तो इन बीमारियों से हम अपना बचाव कर सकते हैं।
0: हाँ, कुछ हद तक बचा जा सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धीरज कुमार जायसवाल, वरिष्ठ हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, आज आप इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ। जोहार, नमस्कार।
0: जोहार, नमस्कार।
2: दोस्तों, घुटने का दर्द आज एक आम समस्या बन गई है। सही जानकारी, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो अभी हमने सुना डॉक्टर धीरज कुमार जायसवाल जी को, जो कि घुटने का दर्द कारण और सावधानियां विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे, और इनसे बातें कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। तो दोस्तों, आइए इस कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक बेहतरीन गीत।

जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा

तो दोस्तों अभी हमने सुना फिल्म प्रिंस से यह गीत, जिसे गाया था मोहम्मद रफी ने और संगीत दिया था शंकर जय किशन ने। मित्रों उम्मीद करते हैं कि यह गीत आप सबों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और खास विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों जरूरत के समय काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। इस कहावत का अर्थ यह है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में हमारा साथ देता हो। बहुत से लोग खुद को दोस्त कहते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त ही मुश्किलों में हमारा सहारा बनता है। यही गुण सच्चे दोस्तों को सिर्फ जान पहचान वाले से ही अलग करता है। तो साथियों आइए एक खास विषय पर हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि जिंदगी में दोस्त का महत्व। दोस्तों कहा जाता है कि दोस्ती वह रिश्ता होता है जो खून से नहीं बल्कि विश्वास, अपनापन और स्नेह से बनता है। एक सच्चा दोस्त हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। वो हमारी खुशियों में मुस्कुराता है और दुखों में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें किसी अपने की आवश्यकता होती है। कई बार परिवार के सदस्यों से भी पहले हम अपने मित्र के साथ अपने मन की बातें साझा करते हैं। एक अच्छा दोस्त हमारी बातों को बिना किसी स्वार्थ के सुनता है, हमें सही सलाह देता है और गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। यही कारण है कि दोस्ती को जीवन का अनमोल उपहार कहा गया है। साथियों सच्चा मित्र वही है जो हमारी सफलता पर ईर्ष्या ना करे बल्कि दिल से खुश हो। वो हमारी असफलता में हमारा मनोबल बढ़ाए और हमें फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। कठिन समय में जो साथ ना छोड़े वही वास्तविक मित्र कहलाता है। ऐसे मित्र जीवन को आसान और खुशहाल बना देता है। आज के समय में सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से परिचय हो सकता है, लेकिन सच्चे मित्र बहुत कम होते हैं। मित्रों की संख्या नहीं बल्कि उनकी सच्चाई और ईमानदारी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमें मित्र चुनते समय उनके संस्कार, व्यवहार और चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। अच्छी संगति हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, जबकि बुरी संगति जीवन को गलत दिशा में ले जा सकती है। दोस्ती केवल साथ घूमने फिरने

यह मनोरंजन का नाम नहीं है, यह जिम्मेदारी, विश्वास, सहयोग और सम्मान का रिश्ता है। सच्चा मित्र हमारी कमियों को बताने से नहीं डरता, क्योंकि वह चाहता है कि हम जीवन में बेहतर इंसान बने। वह हमें भी अपने मित्रों के प्रति वही हमें भी अपने मित्रों के प्रति ईमानदार, सहयोगी और संवेदनशील होना चाहिए। इतिहास और साहित्य में भी सच्ची मित्रता के अनेक उदाहरण मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी निस्वार्थ प्रेम, समानता और विश्वास की मिसाल मानी जाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती धन दौलत नहीं, बल्कि दिलों के रिश्तों पर आधारित होती है। प्रिय श्रोताओं, आज आपके जीवन में एक सच्चा मित्र है तो समझिए कि आप वास्तव में भाग्यशाली है। ऐसे मित्र का सम्मान कीजिए, उनके सुख दुख में साथ दीजिए, विश्वास के डोर को कभी कमजोर होने मत दीजिए। अच्छी मित्रता जीवन को नई ऊंचाई, आत्मविश्वास और खुशियों से भर देती है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि जीवन की राह चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि साथ में एक सच्चा दोस्त हो तो हर चुनौती छोटी लगने लगती है। आइए हम सब सच्ची मित्रता का सम्मान करें, अच्छे मित्र बने और अपने मित्रों के जीवन में खुशियों का कारण बने। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिकी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की प्रस्तुतियां, बातें और गीत संगीत का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो मित्रों, अब दीजिए अनुमति अपने मित्र युवराज को और फिर से होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कल्याणी कार्यक्रम। सूत्रधार थे युवराज, प्रस्तुति थी गौरव कुमार की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया गया।

अभी से बस थोड़ी देर बाद 4:35 पे आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम के 5 बजे और 6 बजे आप सुन सकेंगे। 5:02 पर युवाणी कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है भेदभाव से बचें युवा विषय पर। इतिहास में आज का दिन भारत और विश्व विशेष के संदर्भ में आज इसकी भी जानकारी दी जाएगी। रोचक तथ्य से आपको अवगत कराया जाएगा आज के इस कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में सूत्रधार हैं श्वेता और वैभवी, प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की। 5:30 पे श्रमिक लोक कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, साथ ही वज्रपात से बचाओ और बारिश में स्वास्थ्य कार्य के ध्यान विषय पर चर्चा होगी। आज सूत्रधार हैं कुमारी आरती और प्रीति कुमारी, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की।

किसान वाणी कार्यक्रम 6:02 पे। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है फूलों की व्यावसायिक खेती विषय पर।

आज की बात का विषय है बरसाती सब्जियों का रोग प्रबंधन। विशेषज्ञ डॉक्टर अरुणा कुमार सिंह। बारिश की अनिश्चितता की स्थिति में खरीफ की रणनीति विषय पर आज जानकारी देंगे वैज्ञानिक अशोक कुमार सिंह। इनसे बातचीत करेंगे कृष्ण जीवन पौराणिक। हमारे दुनिया कार्यक्रम 6:32 पे इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय आज की बचत कल की सुरक्षा। कुरमाली वार्ता आप सुनेंगे। कुरमाली साहित्य में नाट्य परंपरा विषय पर वार्ता कर रहे अशोक कुमार महतो। प्रस्तुति होगी इस कार्यक्रम की प्रभु शरण की। किसान वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की। प्रादेशिक समाचार शाम के 7 प्रसारित किए जाएंगे। जिले में आजकल आप सुन सकेंगे 7:11 पे। लोकगीत सुनेंगे हो भाषा में कलाकार कृष्णा हेमरम और साथी 7:15 पे। 7:20 से आप सुनेंगे क्षेत्रीय समाचार बारी बारी से नागपुरी उरांव मुंडारी हो और संताली भाषा में। समाचार ध्वनि चित्र रात्रि 7:45 रजनीगंधा कार्यक्रम रात्रि 8:00 सुर्खियों में रात्रि 8:30 पे। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण के तहत। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। ऐसे कार्यक्रम सांझ सरगम पहला गीत फिल्म कश्मीर की कली से। रचना है आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। संगीत ओपी नैयर का। तो आइए सुनिए प्यारा सा गीत।

फिल्म कश्मीर की कली का गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म शोर का ये प्यारा सा गीत।

फिल्म शोर का ये गीत है। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, रचना है संतोष आनंद की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आखिर शोर का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: फिल्म कटी पतंग का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीत था राहुल देव बर्मन का। और श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म छाया का गीत लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में। रचना राजेंद्र कृष्ण की है, सलील चौधरी का संगीत। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: एक बात समझ लीजिए ना, बीमारी दूर

0: फिल्म छाया के इस गीत के साथ ही आज का सांझ सरगम कार्यक्रम बस यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं, आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान के तहत श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। मिशन आगमन के तहत यह बहुप्रतीक्षित प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। गिरिडीह परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य में सिंडिकेट और दलालों का शासन चल रहा है और विकास कार्य अवरुद्ध है। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार को वर्ष 2026 का IEEE इंजीनियर अवार्ड प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें कोयम्बटूर में आयोजित 39वें राष्ट्रीय धातुकर्म एवं पदार्थ अभियंता सम्मेलन में इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान और नवाचार के लिए दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज रांची में प्रेस वार्ता कर JPSC PT-14 परीक्षा परिणाम में अनियमितताओं का आरोप लगाया। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने 22 जुलाई को JPSC कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन की घोषणा की। लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र में सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार तिसिया गांव निवासी 32 वर्षीय पूनम उराव को बीती रात सोते समय जहरीले सांप ने काट लिया। परिजन उन्हें तत्काल सदर अस्पताल लोहरदगा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र में आज एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार बुलियाडीह स्थित शीतला मंदिर के समीप अज्ञात अपराधियों ने जगन्नाथ गोप पर हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 MHz पर। शाम के 5:02 हो रहे हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण के बारे में जानते हैं।

अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। चर्चा होगी वर्षा जल प्रबंधन। होलोगी सुनेगा जगबंधु बारी और साथियों के स्वर में। आज के मेहमान के अंतर्गत होगी भेंटवार्ता, मिश्रित खेती से लाभ कमाएं। भेंटवार्ताकार होंगे तुरेंद्र नाथ चंपिया। इनसे बातें करेंगे डोबरो पुड़ियोली। पंच परगनीय लोकगीत का आनंद लीजिएगा प्रेमनाथ कुमार और साथियों के स्वर में। 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से और 6:02 पर सुनिए हमारे केंद्र से कार्यक्रम बंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। इसमें आज चर्चा होगी नेत्रदान महादान। भेंटवार्ता होगी नेत्रदान क्यों और कैसे करें। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर मनोज सिंह मुंडा और इनसे बातें करेंगे रमेश दास। 6:55 पर हम आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 पर आप सुनते हैं श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। 8:00 होगा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर हम आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 9:15 पर आप सुनते हैं आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम जिसे रिले किया जाता है आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 10:00 होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। 11:00 हिंदी में समाचार होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में और 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण।

हम आकाशवाणी के चाय भाषा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज से। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम गुलदस्ता का। तो गुलदस्ता कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहला गीत हमने लिया है फिल्म नागिन से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

और आई सुनते हैं फिल्म जब जब फूल खिले। गायक कलाकार है मोहम्मद रफी।

श्रोता सुन रहे हैं गुलदस्ता कार्यक्रम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। आज आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। अगला गीत है फिल्म जोहार महमूद इन गोवा। गायक लगा रहे मुकेश।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को आशा मणि गोप और
1: दोबरो बुड़ेल तिकिन पैते
0: जोहार। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे और इन दिनों आप सब अपने कृषि कार्य में लगे होंगे। डोबरो जी, आपका भी हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: या अभी नो आशा जी अब चास अकड़ा रे सो इसो सिविल धर्म ची जोहर धर्म चशिया घर को आशा जी तिसिंग है बुगिन बुगिन सिया सिविल जगर को लंग जगर को तिसिंग है चर्च जगर रे चिना मनते ची आशा जी टायर टायर रे बुगिले का गमा को हो बंतना ओंडो उकोन ता दो गमा को का हो बतना तो उकोन ता रे गमा को रिंगे मिना ᱫᱚ ᱤᱱᱛᱟᱨ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱵᱚ ᱥᱚᱸᱡᱚᱠ ᱫᱟᱭᱮ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱵᱚ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱫᱟᱭᱮ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱯᱟᱭᱴᱨᱮ ᱵᱟᱜᱩᱡᱚ ᱫᱟᱭᱮ ᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ
0: ᱛᱟᱢ
1: ᱭᱟ ᱮᱥᱚ ᱥᱟᱨᱮ ᱠᱟᱡᱮ ᱟᱥᱟ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨᱟ ᱵᱚ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱮᱢ ᱛᱮ ᱪᱟᱥ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱮ ᱜᱮ ᱦᱟᱛᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱟᱨᱤᱝᱜᱮ ᱠᱚ ᱦᱩᱵᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱚᱠᱚᱱ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱡᱮᱴᱮ ᱫᱤ ᱯᱤᱞᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱮᱰᱚᱜᱼᱟ ᱟᱸᱰᱚ ᱤᱱᱛᱟ ᱨᱮ ᱮᱥᱚ ᱯᱩᱨᱮ ᱩᱨᱤᱡ ᱠᱚ ᱱᱩᱭ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚ ᱪᱮ ᱚᱲᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨᱤᱭᱚ ᱪᱮ ᱯᱟᱭᱤᱴ ᱨᱮ ᱩᱡᱩᱜ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟ ᱦᱩᱵᱟ ᱫᱟᱭᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱪᱟᱥ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱟᱢᱟᱠᱮᱫ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱟᱯᱟ ᱡᱮ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱵᱚ ᱱᱤᱨ ᱮᱲᱟᱜ ᱤᱨᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱟᱸᱰᱚ ᱱᱤᱢᱤᱨ ᱱᱤᱢᱤᱨ ᱫᱚ ᱟᱥᱟ ᱡᱮ ᱦᱟᱛᱩ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱦᱟᱛᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱜᱟᱢᱟᱠᱮ ᱛᱚᱠᱚᱱᱟ ᱚᱛᱮᱯᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱚ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱛᱚ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱟᱞᱤ ᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱩᱨᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱟᱢᱫᱟᱱ ᱠᱮᱛᱮ ᱥᱟᱵ ᱡᱩᱲᱟᱹᱠ ᱱᱮᱛᱮ ᱜᱟᱭᱛᱟ ᱠᱩᱞᱮᱢ ᱚᱞ ᱠᱮᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱱᱟᱞᱤ ᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱭᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱡᱚᱠᱟᱱ ᱦᱟᱛᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱮᱭᱟ ᱵᱟᱸᱫᱟᱯᱟ ᱠᱚᱛᱮ ᱵᱩᱭ ᱰᱮᱦᱟᱨᱤᱭᱚ ᱪᱮ ᱠᱩᱰᱤᱯᱟ ᱠᱚᱛᱮ ᱵᱩᱭ ᱰᱮᱦᱟᱨᱤᱭᱚ ᱪᱮ ᱰᱟᱠᱩᱴ ᱯᱟ ᱛᱮ ᱵᱩᱭ ᱰᱮᱦᱟᱨᱤᱭᱚ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱜᱟᱢᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱦᱩᱸᱰᱤ ᱫᱟᱭᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱵᱟᱸᱫᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱚ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱫᱟᱭᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱨᱤᱸᱜᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱮᱱ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱱᱟᱭᱴᱤ ᱵᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱫᱟᱭᱮ
0: ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱰᱩᱵᱨᱩ ᱡᱤ ᱚᱨ ᱤᱥ ᱥᱚᱝᱜᱨᱟᱦ ᱡᱚᱞ ᱠᱟ ᱩᱯᱭᱳᱜ ᱦᱟᱢ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱠᱟᱨᱤ ᱠᱮ ᱥᱟᱛ ᱟᱱᱭᱟ ᱜᱷᱟᱨᱮᱞᱩ ᱠᱟᱨᱤᱭᱚ ᱢᱮ ᱵᱷᱤ ᱠᱟᱨ ᱥᱚᱠᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱚᱨ ᱤᱥ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱮ ᱩᱯᱟᱭ ᱦᱟᱢ ᱥᱚᱵᱠᱚ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱪᱟᱦᱤᱭᱮ डोबरो जी इस चर्चा के बाद अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये संदेश
2: प्रस्तावना जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं यह सूर्य की रोशनी हवा जमीन समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है इस वजह से गर्मी बढ़ रही है बाढ़ आ रही है सूखा पड़ रहा है और समंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इसे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
0: किसान भाई बहनों, अब हम आनंद लेते हैं होलो गीत का, जगबंधु बारी और साथियों के स्वर में।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
1: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
0: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
2: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
0: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
3: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
0: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
4: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
5: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ, मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया।
0: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
6: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
0: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।

0: फसल बीमा कर।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: कार्यक्रम किसानवाणी में आप सबका पुनः स्वागत है। किसान भाई बहनों, अब हम जानकारी लेते हैं मिश्रित खेती से लाभ। इस विषय में जानकारी दे रहे हैं दुरेंद्र नाथ चांपिया और उनसे बातचीत कर रहे हैं डोबरो बुड़ियोले।
5: आकाशवाणी चायबासा कार्यक्रम किसान वाणी परिवार पाते अबेन आतो बारकुंडी आतो रेलिंग हजू करना निंता अबेन मुख्य सड़क ची मेन रोड जपा रहे लगभग 10 डिसमल गोड़ा रे किली मिली मिनिसा कंती अबेन चास बास तना चासी हो गया किन एंते अबेन अभिषय ओडों रे जपगर अयर ते अबेन आ उनुरुम जागर तबेन
6: एंते आलिंगे उनुरुम दो नतुम दो श्री तुरिंद्रनाथ चंपिये हाथो लुपुंग हाथो पोस्ट ऑफिस खड़िया टांगर प्रखंड मंझारी
5: मैं दो तुरेंद्र चैंपियन थी अबेन मंझारी पीढ़ी जुम्बलायरन कि अबेन बारकुंडी रे चिलिकते निपा सदर चाय बस्तर में नाती आहतु रे निमिन्ने लेका बागने ती चिलिके बेन उड़ो कड़ा
6: उड़ो इन कलिंग उड़ो कड़ा चालिंग दो यार लिंग संबंधित ने लंदे इन दो या कुमार वा बंतन तले वानी नंदे गिया करना
5: या
6: इंदो या इंदो ने पा बारकुंडी पैसे तो गिया रहा होने से बिंग हो बंतन ना
5: अच्छा अच्छा या
6: एंते अलिंग दो होनगना को दो बंको एंते पूरे दिसंबरे इंदो झारखंड रे रिकॉर्डेड होबान का मेंते मिश्रित खेती मैंने रे दो कुंदरी दो मेन अच्छा उसके साथ साथ में बरबट्टी ओबू मने एंड रामबा ओबू मने एंड
5: मलान को
6: मलानो मलान
5: मेंडी दरिंग
6: पोलो ओबू मने नते लाउकी
5: अच्छा अच्छा अच्छा तुरेंद्र थिंकिंग अबे ना कोरी अदो अच्छा नेलकन चासरी आ अनुभव दो चिमिन दिने ते अभी ना
6: अलिंगे सुदिने ते उड़ उकड़ा लिंग अंडो

0: ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱫᱚ ᱠᱩᱸᱫᱽᱨᱤ ᱵᱟᱜᱟᱱᱮ ᱛᱟᱹᱞᱤᱧ ᱞᱚᱥᱚᱵᱤ ᱟᱱᱟᱞᱤᱧ ᱞᱟᱯᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱞᱚ
1: ᱤᱭᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱞᱤᱧ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱧᱚᱜ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱚᱜᱼᱟ उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं किलकिन बढ़ाओ या इंद्रिया स्वरूप तो शिक्षा मिना इतरे कब समझा अंतरना एंते शिक्षित शिक्षा रिया जारी है ते अब कमाओ खाओ और खिलाओ
1: या या अच्छा एंतो इना को ठीक गया एंद्र तो अबेन आले रेडियो स्टेशन पाते ने लेकले कुलिकेट बिना तिसिंग अबेन चिलिके बन अटकर के डंग
0: एंदो सो किलिंग रासरंगाड़े नयन तालिंगे नामकरण पालोयना ओबायना नो अटकरतना बोंडो वो
1: चासी आ गया कुछ ना बन जागरा को
0: एंते जागरा कोते ना किलिंग रासाक नची मन्ने ने कभी दीते वो पार्टी कमी के रे दो काबू
1: लापा बो नमे गया
0: लापा तो बो नमे या लापा जीड़ी ना बो बने ते मने मने पौष्टिक पदार्थों का उत्तो को बो जमनो दे ये
1: या अच्छा नैन तो मिश्रित खेती बन खेती है कड़े एंदो नैन रे नैन ना तो मेरो तो चितान ते नहीं हुआ तारा तो लतार नो रगे ये वो इन्हें जो बाय ने ते ना तो बन इन उड़ू ठीक कहते के बन रवा कड़ा
0: या या
1: या
0: एंदो अलग अलग दार दौर दाम तय करेंगे वहाँ तो पैसा आते रहता है कमाई होता रहता है और इसी तरह से आमदनी बढ़ती जाती है और उसमें कुछ बचत के रूप में बैंक में जमा देना होता है
1: या या
0: और
1: एंदो एंदो अच्छा ना
0: प्रयास
1: मेना
0: जमा अंडो इनके वो तो सब ना नमो रात बात तब बड़ा वेड़े इनका
1: या इंदो निंता आगे अलग अच्छा सगिया को तीसरी तो निम्यंग केर जगर के तलंग तुंडुते अमार मिसे तलंग जोरा कुआ
0: जोर
1: बार
2: प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव। यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है?
3: किसान भाई बहनों, इसी संदेश के साथ कार्यक्रम किसानवाणी अब यही संपन्न होता है। अब मुझे आशामणि गोप और
4: डोबरो बुड़ेल तिकिंग पे थे
3: जोहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान के तहत श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। मिशन आगमन के तहत यह बहुप्रतीक्षित प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। कोडरमा में आज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। झुंझुनी तिलैया में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि योजना के लागू होने और जन जागरूकता से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर राज्य के सभी शहरी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए आज विशेष सहायता शिविर लगाया गया। इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने जमशेदपुर पश्चिमी और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर इन्यूमरेशन फॉर्म संग्रहण और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया का जायजा लिया। धनबाद जिले के बीसीसीएल की मुराइडी कोलियरी में लोकल सेल के लिए डीओ जारी नहीं होने के विरोध में आज असंगठित मजदूरों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए कुलियरी का कार्य भी प्रभावित रहा। मजदूरों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से डीओ जारी नहीं होने के कारण कोयला लोडिंग का काम ठप है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हुई है। जामताड़ा जिले की पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से 27 मोबाइल फोन और 39 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

大家好。

ছিল যেখানে মুরজ মন্ত্রী নিবাস।

0: हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वह वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
0: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा।
3: पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वह वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोताओं को रमेश दास का नमस्कार। कैसे हैं श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। जी हाँ, आज हम बातें करेंगे नेत्रदान महादान पर। मृत्यु के बाद किसी नेत्रहीन व्यक्ति को नई रोशनी देना सबसे बड़ा परोपकार माना जाता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो या वह चश्मा लगाता हो, नेत्रदान कर सकता है। श्रोताओं, मृत्यु के 6 घंटे के भीतर नज़दीकी आई बैंक को सूचित करके यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। अब कुछ हम विशेष जानकारी आपको दे दें, जो मुख्य बातें हैं। कौन कर सकता है नेत्रदान? जी हाँ, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जिसे हम बीपी कहते हैं, और सामान्य दृष्टि दोष वाले व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी या रेबीज जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर कॉर्निया, जो आँख की पुतली होती है, निकाल लेना अनिवार्य होता है। आँख निकालने की प्रक्रिया में केवल 15 से 20 मिनट लगते हैं और चेहरे पर कोई दाग या विकृति भी नहीं आती है। श्रोताओं, अगर हम देखें तो नेत्रदान महादान का महत्व अनमोल है। यह दान, जैसे मैंने कहा, अंधे और दृष्टिहीन व्यक्तियों को नई उम्मीद और नया जीवन देता है। यह उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। नेत्रदान महादान करने से व्यक्ति को न केवल आत्मसंतुष्टि मिलती है, बल्कि उसे अन्य लोगों में नई आशा और उत्साह भी देखने को मिलता है। तो आइए इसी पर हम कुछ और विशेष जानकारी लें, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: परिवार जो इन बेटा क्रांति बेसरा आले नेहर में बोले नुकान परिस्थिति बोले सब वापस को रुड़ा
4: नाम मंगलो राय को गाँव बड़गड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहाँ बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमारे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार।
5: नाम है रंगबला देवी, गाँव बारे भक्तो घर आई में हमारे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है।
6: नितम बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भुरुपा सेना करना ऐसे दुखुर मिना यापा मैं तपा मैं रिया वहा बेटा का
7: अन्या नितम दो मुंबई को पटन गुंडे गुड़ा अंदो कदमी कोड़ा पटन पटन कितमी कोड़ा नीम उड़ी बागिया से आरती को पुलिस को लड़ाई चलावतना बुरुम गई जय तेरे काका गुंग बुको को काको मेल मे
8: मुनिशन पे अपील जहाँ मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते सेसन का है वागे बेटा उरन का आले आया नुतुम ते इनम अपील लेतना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि, 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: श्रोताओं, इससे महत्वपूर्ण संदेश के बाद आइए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत। लेकिन उससे पहले हम जानकारी लें कि नेत्रदान क्यों और कैसे करें। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोज सिंह मुंडा। और सभी श्रोताओं को रमेश दास का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे नेत्रदान पर। कहते हैं नेत्रदान महादान, जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान। आज हम नेत्रदान महादान पर जागरूकता के उद्देश्य से आज हम बातें करने आए हैं डॉक्टर मनोज सिंह मुंडा, जो सदर अस्पताल चैवासा में नेत्र पदाधिकारी हैं। तो सबसे पहले तो हमारा नमस्कार।
9: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, एक बात हम जानना चाहेंगे कि ये नेत्रदान है क्या?
9: ये नेत्रदान जो है, आँखों का मरणोपरांत नेत्र की कोर्निया को जो व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक दान देने का जो संकल्प है वो नेत्रदान कहलाता है। ये संकल्प या शपथ पत्र व्यक्ति के जीवित रहते ही होता है, और अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति शपथ पत्र नहीं भरा होता है तो मर जाने की स्थिति में भी उनके परिवार के सदस्य या उनके जो चाहने वाले हैं अगर वे चाहें तो स्वेच्छा से उस वक्त भी नेत्रदान करवा सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो नेत्रदान कौन कर सकता है?
9: नेत्रदान किसी भी उम्र या कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, स्वेच्छापूर्वक नेत्रदान शपथ पत्र भरकर नियमानुसार कर सकता है। और जो व्यक्ति चश्मा लगाते हैं, जिनकी आँखों का अगर मोतियाबिंद हो गया हो, ऑपरेशन हो चुका हो, और कोई दैहिक रूप से कोई बीमार हैं, अगर वो चाहते हैं कि नेत्रदान मेरा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी वो नेत्रदान का संकल्प भर सकते हैं, और नेत्रदान का संकल्प भरने के बाद मरणोपरांत नेत्रदान कर सकते हैं।
0: अच्छा, इसमें कोई आयु सीमा की कोई बंदिश?
9: इसमें आयु सीमा की वैसे कोई बंदिश नहीं है। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वृद्धावस्था की स्थिति में आते हैं, तो सभी वर्ग के लोग नेत्रदान कर सकते हैं, बशर्ते कि बहुत छोटा बच्चा नहीं हो, जो समझ में उनको आता हो कि मुझे नेत्रदान करना चाहिए, उनकी नेत्रदान किया जाना चाहिए।
0: अच्छा, एक बात तो हमारे श्रोता सोचते हैं कि या जानना भी चाहते हैं कि नेत्रदान तो हम कर दिए, लेकिन कैसे व्यक्ति को या कौन सा व्यक्ति को इसमें दृष्टि मिलती है?
9: वैसे व्यक्ति को मिलती है जिसकी कॉर्निया जिस किसी कारण से भी क्षतिग्रस्त हुई हो, या उनकी आँखों का कॉर्निया में ओपेसिटी हुई हो। वो जैसे बच्चों या बड़ों में भी गुल्ली डंडा का खेल के क्रम में या किसी भी कारण, कोई बीमारी के कारण से भी अगर आँखों के कॉर्निया में ओपेसिटी हो गई हो तो उन्हें देखने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो ऐसी व्यक्तियों को अगर कोई व्यक्ति कॉर्निया दान देता है, कॉर्निया के दान देने से, कॉर्निया का प्रत्यर्पण के माध्यम से उनकी दृष्टि पुनः प्राप्त हो सकती है।
0: अच्छा, कॉर्निया क्षतिग्रस्त होने के और भी कोई कारण है?
9: हाँ, कॉर्निया क्षतिग्रस्त होने के और भी कारण हैं, जैसे कि विटामिन ए की कमी संक्रमण का कारण भी है, और खास करके बचपन में अगर अच्छा से खान पान नहीं हुआ हो, कुपोषण का शिकार रहे हों, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे कॉर्निया से ग्रसित हो सकते हैं, कॉर्निया की दृष्टिविहीनता का कारण माना जा सकता है, और आँखों को इसके वजह से देखने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं।
0: तो एक बात हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ऐसे में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे?
9: हम श्रोताओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि ये नेत्रदान महादान है, क्योंकि जीते जीते लोग रक्तदान जरूर कर लेते हैं, लेकिन कहा गया है जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान, क्योंकि मरणोपरांत भी अगर आप दान दिए हुए होते हैं तो आपकी आँखों से जो व्यक्ति जीवित रहेंगे ये इस दुनिया के अनमोल दृश्यों को, सुंदर दृश्य को देखेंगे, और दृष्टिहीन व्यक्ति जिन्हें नहीं दिख रही थी दुनिया, उन्हें दुनिया दिखेगी, उन्हें अपनी आँख जो खो चुके हुए होते हैं जिस कारण से भी, उन्हें देखने का एक अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है नेत्रदान महादान है, इससे बढ़ के कोई दान नहीं है। और सभी जनमानस को मेरा सुझाव यही है कि नेत्रदान का संकल्प अवश्य लें, और संकल्प पत्र अपने नज़दीकी अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्रों में नेत्रदान का संकल्प भरें, और अंधापन की दर को कम करने में एक अच्छी भागीदारी निभाने का काम करें, ताकि देश में, दुनिया में, झारखंड में आपकी एक अच्छी नाम हो, एक अच्छी पहचान हो।
0: अच्छा, कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि हमने नेत्रदान किया है और हमारी मौत हो गई, तो ऐसे में कितने समय तक वो जो कॉर्निया है जीवित रहता है?
9: नेत्रदान का जो प्रक्रिया है वो मरणोपरांत ही होता है, और 6 घंटे के अंदर अंदर ही उसकी नेत्र के कॉर्निया गोलक के ऊपरी भाग को एक्सपर्ट टीम के द्वारा निकाला जाता है। इसीलिए नेत्रदान की प्रक्रिया जो होती है 6 घंटे के अंदर ही होनी चाहिए, 6 घंटे के अंदर ही सुरक्षित तरीके से नेत्र का संग्रह किया जाना चाहिए।
0: मैं फिर एक बार कहूँगा कि हमने नेत्रदान किया है तो हम कैसे, जब हमारी मौत हो जाएगी तो हम कैसे, जो डॉक्टर हैं जहाँ हमने ये दान दिया है उसे हम कैसे संपर्क करेंगे?
9: उसके लिए सबसे पहले आपके नज़दीक के जो हमारे आई से जुड़े हुए, नेत्र से जुड़े हुए हमारे विभाग के लोग हैं, पर ये नेत्र सर्जन, फिर नेत्र पदाधिकारी, फिर नेत्र सहायक, उनसे संपर्क करके उन्हें बता देना है कि हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो ये आगे हमारे झारखंड में आई बैंक है, झारखंड आई बैंक बरियातू में है, फिर रिम्स आई बैंक बरियातू में है, ये दोनों बढ़िया से संचालित हो रही है, तो इन दोनों में से रिम्स आई बैंक को खबर करना ज़्यादा उचित रहता है, क्योंकि वहाँ आई बैंक अच्छी है, और हमारे टीम के लोग जैसे ही खबर करेंगे, ये लोग दिन हो या रात हो ज़्यादा संभव आने का प्रयास करेंगे, और 6 घंटे के अंदर अंदर उस मृत व्यक्ति की आँखों को संग्रह करने का काम करेंगे। बरसते ये होना चाहिए कि मृत्युपरांत तुरंत ही हमें खबर हो जाए, ताकि हम आगे भी सूचित इस विषय में करेंगे, और एक्सपर्ट टीम जो हमारी होती है वो आएंगी, चाहे वो दिन हो या रात हो, वो उसकी आँखों को, कॉर्निया को संग्रहित करेंगे, और ऐसे व्यक्तियों को जिनकी कॉर्निया क्षतिग्रस्त हुई है, कॉर्निया से दृष्टिविहीन हो चुकी है, ऐसे लोगों पे, ऐसे व्यक्तियों पे उन्हीं कॉर्निया प्रत्यर्पण की जाती है, ताकि वे बेरंग दुनिया को रंगीन दुनिया देख सके।
0: तो सचमुच श्रोताओं, अगर हमारे मौत के बाद अगर हमारे शरीर के अंग अगर दूसरे में अगर जाता है और वो उसका उपयोग करता है, तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है? इसलिए तो कहते हैं कि नेत्रदान महादान है। तो आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी हम जानकारी ले रहे थे कि नेत्रदान महादान कैसे है और नेत्रदान क्यों और हम कैसे करेंगे, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मनोज सिंह मुंडा। अब आइए चलते चलते सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं अब आइए स्वागत देखरेख में है। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वत्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। श्रोताओं यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकतानुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि ये फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है। जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती है। श्रोताओं अगर आप पश्चिम सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परिवार हर बच्चे का अधिकार, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। एक और हम जानकारी आपको दे दें कि इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। श्रोताओं मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना के बारे में और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं कल कार्यक्रम सन्मार्ग में इसी समय यानी 6:30 से, तो आप सुनना ना भूलें और इसकी जानकारी अवश्य लें। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम भी समाप्त होता है। अगले बार कुछ विशेष जानकारियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे ये निर्मिष दास को बिता दें। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। कृपया प्रतीक्षा करें।

भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह उपलब्धि युवाओं को नवाचार में योगदान के लिए करेगी प्रेरित। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लागू होने और जन जागरूकता से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में आई कमी। SIR अभियान के तहत राज्य भर के शहरी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर में लोगों ने जमा किया इन्यूमरेशन फॉर्म। बचे हुए मतदाताओं से 20 जुलाई तक फॉर्म जमा करने की अपील। जामताड़ा में पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 27 मोबाइल फोन और 39 फर्जी सिम कार्ड बरामद। और बोकारो पुलिस लाइन मैदान में कोयला क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 254 पुलिसकर्मी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हुए शामिल। और अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम-1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम-1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी। कोडरमा में आज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। झुमरी तिलैया में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि योजना के लागू होने और जन जागरूकता से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।
2: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये एक बहुत ही बड़ी पहल है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भारत सरकार की ओर से सीधे DBT के माध्यम से उन्हें पैसे दिए जाते हैं ताकि गर्भवती माता का और बच्चों का वो अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। NFSH 6 का जो रिपोर्ट आया है उसमें अगर आप देखेंगे तो पहले मातृ मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा था, अब वो बहुत ही घटा है।
0: इस मौके पर विधायक अमित यादव सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहियाएं, गर्भवती महिलाएं उपस्थित थीं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। गिरिडीह परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य में सिंडिकेट और दलालों का शासन चल रहा है और विकास कार्य अवरुद्ध है।
3: संवाद में जो कोयला की चोरी हो रही है, मुझे लगता है कि राज्य के सरकार या मुख्यमंत्री खुद उसमें शामिल है और इसलिए चोरों के हौसला बड़ा बुलंद है और केंद्र सरकार तो इसमें कोशिश कर रही है कोयला चोरी रोके, इसीलिए ड्रोन या बाकी सारी चीजों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ये सारे काम राज्य सरकार का है, कोयला चोरी को रोकना राज्य सरकार का काम है, इससे राज्य सरकार को राजस्व मिल रहा है।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर राज्य के सभी शहरी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए आज विशेष सहायता शिविर लगाया गया। इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने जमशेदपुर पश्चिमी और ईटागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर इन्यूमरेशन फॉर्म संग्रहण और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे 20 जुलाई तक अपना भरा और हस्ताक्षरित इन्यूमरेशन फॉर्म BLO को अवश्य जमा कर दें ताकि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज रांची में प्रेस वार्ता कर JPSC PT 14 परीक्षा परिणाम में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कट ऑफ अंक सार्वजनिक करने, उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने और आयोग की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने की मांग की। उन्होंने बताया कि JPSC की कार्यशैली के खिलाफ 21 जुलाई को पूरे झारखंड में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 22 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले की पुलिस ने कुख्यात नक्सली अजय महतो को गिरफ्तार कर लिया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने अजय महतो को गिरफ्तार किया है। उस पर झारखंड सरकार ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। एसपी ने बताया कि नक्सली अजय के खिलाफ हत्या और सरकारी भवन को क्षति पहुँचाने समेत 68 मामले गिरिडीह जिला में दर्ज हैं।
4: इसकी गिरफ्तारी से झारखंड पुलिस को भी एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। गिरिडीह पुलिस के साथ साथ आने वाले समय में हम अपील करते हैं कि जो भी बचे खुचे यहाँ पे नक्सली हैं, वो या तो आप समर्पण कर दें, अन्यथा आपके खिलाफ गिरिडीह पुलिस की, झारखंड पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी। वो अपने आप को ग्रामीण के रूप में आने का प्रयास कर रहा था और वो छुपते छुपाते जंगल में आ रहा था, लेकिन चूंकि वही गुप्त सूचना थी उसके आने की और जिस पर हम लोगों ने कार्रवाई किया है।
0: जामताड़ा जिले की पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से 27 मोबाइल फोन और 39 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं।
5: दो अलग अलग टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में कर्माकार के सियाकार और मड्डा जामताड़ा थाना क्षेत्र के कोसोई के पास से छापेमारी किया गया, जिसमें कुल 9 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुल 27 मोबाइल और 39 सिम कार्ड बरामद हुआ है।
0: चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई गई है। धनबाद क्लब की लगभग 4.95 एकड़ भूमि को लेकर नया विवाद सामने आया है। जिला परिषद ने इस भूमि पर अपना दावा करते हुए DCLR न्यायालय में याचिका दायर की है। परिषद की अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि यदि न्यायालय में परिषद का दावा सिद्ध होता है तो संबंधित संस्थानों से नियमानुसार किराया वसूला जाएगा।
6: 170 एकड़ जमीन वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाम से मेंशन है। हम अपनी जो जमीन है उस पर हम लोगों ने दावा किया है और LRDC कोर्ट पे हम लोगों ने ये किया है कि हमारा है, हमारे पास हथियार है, सारे उसके पेपर हैं हमारे पास, उसको लेकर हम लोग दावा किए। अगर ये सिद्ध हो जाता है, जितना जमीन उन्होंने एक्वायर किया है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, उसका उनको रेंट देना पड़ेगा।
0: हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने अपने निजी स्तर की सांसद तीर्थ दर्शन योजना के 1 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस अवधि में 5,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराई गई। उन्होंने बताया कि अब श्राद्ध किट वितरण की सुविधा पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों तक विस्तारित की जाएगी। बोकारो पुलिस लाइन मैदान में आज कोयला क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए कहा कि खेल पुलिसकर्मियों में शारीरिक क्षमता, मानसिक दृढ़ता और टीम भावना का विकास करते हैं। पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने बताया कि प्रतियोगिता में धनबाद और बोकारो जिला पुलिस के कुल 254 खिलाड़ी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, हैंडबॉल और एथलेटिक्स सहित विभिन्न स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह उपलब्धि युवाओं को नवाचार में योगदान के लिए करेगी प्रेरित। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लागू होने और जन जागरूकता से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में आई कमी। SIR अभियान के तहत राज्य भर के शहरी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर में लोगों ने जमा किया इन्यूमरेशन फॉर्म। बचे हुए मतदाताओं से 20 जुलाई तक फॉर्म जमा करने की अपील। जामताड़ा में पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 27 मोबाइल फोन और 39 फर्जी सिम कार्ड बरामद। और बोकारो पुलिस लाइन मैदान में कोयला क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 254 पुलिसकर्मी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हुए शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता।
1: रथ यात्रा को लेकर बुधवार को संपूर्ण जामताड़ा जिले में भक्तिमय वातावरण देखा गया। एकांत वास के बाद भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा श्रद्धालुओं को दिव्य दर्शन दिए। इस दौरान मंदिरों एवं पूजा स्थलों में भजन कीर्तन एवं मेले का भी आयोजन किया गया। जामताड़ा के गायछंद स्थित राधा माधव मंदिर से निकली रथ यात्रा में नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता शामिल हुई और जिले वासियों को सुख समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की।
2: रथ यात्रा का बहुत ही पवित्र दिन है, पूरा जामताड़ा भक्ति में बना हुआ है। चारों बगल भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे गायछंद में स्थित राधा माधव मंदिर से रथ निकल के हम लोग जामताड़ा गांधी मैदान के लिए प्रस्थान करेंगे। मैं अपनी ओर से सभी जामताड़ा वासियों को रथ यात्रा के अवसर पे सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ।
1: जामताड़ा जिले के सभी 6 प्रखंडों में निर्धारित तिथियों को चरणबद्ध प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों एवं जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है।
3: इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज है उसमें डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ चाहिए, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट या पैन कार्ड, रेसिडेंस का प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड और ब्लड ग्रुप का प्रूफ चाहिए। इसके साथ आप नजदीकी सीएससी या प्रज्ञा केंद्र में जाकर के आवेदन करें, फी ऑनलाइन जमा करें और स्लॉट बुक कर लें। कैंप में आप आए, ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट के बाद आपको पास अगर सफल होते हैं आप तो लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा।
1: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां स्मरण दिवस के अवसर पर जामताड़ा जिले के कुंडहित स्थित डाक बंगला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी एवं पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने भाग लिया। इस क्रम में डॉक्टर मुखर्जी के जीवन वृत्त एवं नीतियों से कार्यकर्ताओं को सीख लेने की अपील की। इस दौरान श्री मरांडी ने वर्तमान राज्य सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की और जल जंगल जमीन को बचाने का आह्वान किया।
4: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अप्रैल उनके जन्म जयंती बंगाल में व्यक्ति जन्म और 1952 में जनसंघ की स्थापना की 1953 जम्मू कश्मीर में वो शहीद। यानी आप सोच सकते हैं छोटा सा कार्यकर्ता कहाँ बंगाल में जन्म और जहाँ जम्मू कश्मीर शहीद, यानी देश की एकता और अखंडता के लिए जहाँ जाने के लिए परमिट लगता था उसका उन्होंने विरोध किया था और बिना परमिट के प्रवेश किए थे।
1: जामताड़ा सदर अस्पताल में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर विकलांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि पंजीकृत विकलांगों की जांच मेडिकल बोर्ड के द्वारा करने के उपरांत प्रमाण पत्र लाभुक विकलांगों को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनके घरों तक पहुँचा दिया जाता है। जामताड़ा जिले में मतदाताओं के बीच इन्यूमिनेशन फॉर्म का वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्य जारी है। जिले में गुरुवार शाम तक 99.98% मतदाताओं के बीच इन्यूमिनेशन फॉर्म वितरित, जबकि 51.70% फॉर्म का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
0: अभी आप सुन रहे थे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz से। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम आपकी पसंद का। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहली पसंद आप सबों की गांव कुड़ा से पोंडे बोईपाई, रेशनल बोईपाई, यशमती बोईपाई, कश्मीरा बोईपाई, मोनिका बोईपाई, सुनीता बोईपाई, मीनाक्षी बोईपाई, देवी चरण भंज और तारकेश्वर बांधा। कुचाई बिद्री से KP सेठसोए, सरिता सोए, दुर्गामती, राजकुमारी, रेशमी, विशाल, मुन्ना और सनी। ग्राम सूराबेड़ा से बासिंग सरदार, बिरू सरदार, रमेश, कमल सिंह और अंशु एवं सरदार परिवार। डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, देवी अनिष्का और तन्मय गजभिये। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। बेडी से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर, प्राची कर्मकर, तनु कर्मकर। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, सोएब खान, पोतरा मुश्तवा खान, रऊफ भाई, साहिद भाई। गांधीबाग अंकोला से रमेश कटनकर।

अली कटनकर, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, कासम कॉलोनी थनाबद मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, सफ़ी खत्री, इद्रिस खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, इरफान मीना, काशिफ मीना और हासिम मीना। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म खामोशी का ये नगमा, आवाज़ें लता मंगेशकर की है।

قبلك अगली पसंद आप सबों की है अलका डॉबली से अलका बसंत सिंह चाना राजकुमार सुनीता कुलदीप गांधी ग्राम खेड़ियाघर प्रखंड मंझारी से बसंत वेंकुरा सुलोचना पान हेमंत पात्रो कौशिक कुमार पान दीपक कुमार कल्पना कुमारी रूपाली कुमारी झीपी कुमारी जयमनी जयंती अल्पना और नवीन तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी रीना तड़वी सनी बाबू रोजू बाई तड़वी परू मुबारक बारीकर मनोहर ठाकुर तैमूर तारिक बारीकर मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी आरिस अरसलान यूनुस तड़वी सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशरफ खां तड़वी जरीना तड़वी मुबारक तड़वी परवेज तड़वी बिटिया रोजमिन तड़वी तैमूर तड़वी समस्त तड़वी परिवार बड़ा बंबू सुपाई साई से देवेंद्र तांती राकेश तांती कुमारी निशा तांती प्रकाश तांती ललित प्रधान उग्रसेन प्रधान सुदर्शन प्रमाणिक सुशीला प्रमाणिक श्यामदेव नायक पूजा और सीमा ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा बसंती रमेश बनमाली बेसरा अन्नु सिद्धु कुमारी और पूजा पाकुड़ झारखंड से उत्तम भगत श्वेता भगत ईशु ताशु तथा भगत परिवार खम्हरिया बिलासपुर से साबित खान सावित्री देवी धर्मेंद्र प्रजापति प्रतीक कुमार सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी सुरुमणि मुंडरी हीरामणि मुंडरी हिमांती मुंडरी डोबरो मुंडरी साजन मुंडरी सिद्धेश्वर मुंडरी पाड़ापुर शिवाजी डोबरो मुकेश कुशल मुंडरी जानुम सिंह मुंडरी सिद्धि बोस सोना बाबू सोना एफ एम शिवा मुंडरी खसवा गांव दलाईकेला से लक्ष्मण सोय आयुष सोय गीता सोय सिनीमाई सोय सरिता सोय तनुजा सोय सारिका द्वारिका सोय खसवा पतिसाई से सुकरा नायक मंजू नायक जलेश्वर नायक गौरव नायक सोनवा गांव पोड़ाहाट से मिथुन नायक राकेश नायक मुकेश नायक और मखरू आचार्य आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सौतन की बेटी आवाजें हैं किशोर कुमार की

अगली पसंद आप सबों की है, बरियातूर रांची से नीतीश मेघा, आकांक्षा और अरब घोड़ा, उत्तराखंड रुद्रपुर से राजीव, सुमन और आदित्य, चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत, कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष, आनंद, आज़ाद नगर रक्षक हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, इंदिरा बिहार रायगढ़ से अक्रम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां, वलीउल्ला नूरजहां, राजनंदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, सरोज ध्रुवंशी, मास्टर शानू ध्रुवंशी, रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, लेबई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरेगी से भागवत वर्मा, दुर्गाई सेलू जिला परभनी से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सी आर कुलकर्णी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म ईश्वर का ये नगमा, आवाज़ें नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति की है।

अगली पसंद आप सबों की, रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, जो जो कुड़मा से सुकरा महतो, पीताम्बर महतो, मुरारी महतो, राजेश महतो, कविराज महतो, सुपाईसाई से कर्ण प्रधान, ज्योति प्रधान, जगबंधु प्रधान, दुश्मन प्रधान, मिथुन प्रधान, बड़ा कुड़मा से सुदर्शन महाली, चिगड़ू महतो, चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनमहिनी महतो, मनोरमा और दीन बंधु, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, विनोद गोप, आशीष गोप, विकी गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप, शुभम गोप, मोहल्डिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदनी, दीपक संतोष, राहुल बिट्टू, आयुष, गीतेश, अन्नु तन्नू, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो, मेन रोड सोनवा से गुरुचर नायक, अनसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पानी प्रधान, निक पानी प्रधान, रेलवे रोड गंज डोंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख और अब्दुल सत्तार अंसारी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म एक सपेरा एक लुटेरा। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी।

अगली पसंद आप सबों की खसमा बड़ा बम्बो सो से नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, डॉली महतो, तरुण महतो, समस्त परिवार के सदस्य, बड़े बाजार चायबासा से मुअज्जम बिहारी, समीमा खानम, निम्मी, बिट्टू किरण, रोशनी परी, मुस्कान नबीहा, बड़े बाजार चायबासा से भगीरथ महतो एवं इनके परिवार के सभी सदस्य, छोटा निमडी चायबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन, कोमल, ऋतिक, बड़ा निमडी चायबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार, सुमेध कुमार, हजारीबाग गोला रोड से सेठ मोहल्ला से अन्नपूर्णा देवी, सुधा देवी, प्रिया देवी, आशा देवी, उदय जायसवाल, हन्नू, ऊर्जा, उन्नति, उत्कर्ष, अंशु जायसवाल, भाटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी, लोकेश जोशी, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, भाटपारा दत्तरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, न्यू कॉलोनी निमडी से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना देवी, खुशबू, खुशी, अभिषेक, अंश, अंशु और अनीश। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म ब्लैकमेल का ये नगमा, आवाज़ें किशोर कुमार की है।

अगली पसंद आप सबों की, जो जो कुड़मा से मनोज गगराई, बासंती गगराई, सोनाली गगराई, आयशा गगराई, रचना गगराई, जितेंद्र गगराई, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोध, निखिल कागड़ा, अंकित कागड़ा, साहिल कागड़ा, तुरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी, अर्पिता कुमारी, आमजोड़ा पोखरिया, मल्लुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, प्यारी बहने संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी सोनी से परवीन डोम, फरफुद्दीन डोम, कुमारी बल्ली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम, आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार, गोल्डन रेडियो लिस्टनर क्लब राजपल मोहनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, राजीव वर्मा, रितेश सोनी, दूतनाथ भारती, पारुल पल्लवी, शैलजा सोनी, रविदास मंदिर हकीकतपुरा यूपी से मुन्ना स्वर्णकार, सोनू स्वर्णकार, आर्यन स्वर्णकार, ट्विटिल पीहू स्वर्णकार एवं पूरा स्वर्णकार परिवार, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बीरक, जयतंग बीरक, मिका बीरक, महाली साई से बिरोल मारी, सरस्वती महाली, प्रेमचंद महाली, पुलवनी महाली, शकुंतला महाली।

समांती महाली, यशोदा महाली, शांति महाली, आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म स्वीकार किया मैंने का ये गाना, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं आप सबों की पसंद पे अगला गीत। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, रंजुलता आदित्य और कृष्ण श्रीवास्तव। अमरपुर पिंडा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। पटेल नगर मलौट पंजाब से रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, बेबी आरजू जजोरिया। दौलतबाग मुरादाबाद से जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। अमलाटोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और सोनू। लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, अदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला फकीर, डब्लूउल्ला फकीर, परवीन आश्मा फकीर। बुलंदशहर से बद्रुबली अंसारी, फर्जुबली अंसारी, फर्जुबली अंसारी। आदर्श नगर मलौट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा। वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोलाराम मधुर, मधु लकड़ा, नताशा और बेबी। बड़े बाजार चाईबासा से विनोद कुमार पवन और मीना पवन। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म नया दौर का ये नगमा।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहली फरमाइश है न्यू कॉलोनी निमरी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला निर्मला देवी अर्चना राम खुशबू खुशी अभिषेक अनीश अनामिका अंकित अमित मनीष और मुन्ना की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म थानेदार का ये नगमा। आवाज़ें आशा भोसले और अमित कुमार की है। गीत लिखा है समीर ने, संगीत लक्ष्मी बप्पी लहरी का।

अगली पसंद आप सबों की सदाबहार टाउन से, सदाबहार टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म रोटी का ये नगमा, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है।

श्रोता सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के चाय बासा केंद्र से। अगली फरमाइश है गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप सुनीता देवी उमा कुमारी गीता देवी रीता देवी अमित कुमार अंकित गोप अभिषेक गोप आशीष गोप शुभम गोप सुमित गोप विकी गोप सरस्वती देवी विनोद गोप राजू गोप राजन गोप माहिर गोप और आराध्या कुमारी की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म साजन का ये नगमा। आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार शानू की है। गीत लिखा है समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का।

अगली फरमाइश है पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुढ़ाना से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म तीन देवियाँ। इस फिल्म का गाना आवाज़ें किशोर कुमार और साथियों की है। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत SD बर्मन का।

अगली फरमाइश है पुणे से पंकज बड़ोदे, आर्या आदि, बीटी बड़ोदे, चंद्रप्रभा बड़ोदे। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सड़क का ये नगमा। आवाजें अनुराधा पॉटवाल और मनहर उदास की है। गीत लिखा है समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का है।

और आइए सुनते हैं आप सबों की फरमाइश से अगला गीत। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सिर्फ तुम का ये नगमा, आवाज़ें कुमार शानू और अलका याग्निक की है।

कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे ये गीत सेंटोला चाईवासा से भोला राम मधुर, विनोद कुमार पवन और मीना पवन। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सफ़र का ये प्यारा सा गाना। आवाज़ें किशोर कुमार की है, गीत लिखा है इंदीवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पे, और आइए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती।

0: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोर्गोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन बाली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। बल्कि 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं

0: मार्बल।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
2: टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री,
3: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
2: इट्स ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
1: हुर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमेरिका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले दो दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में एक व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग 1 दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरो मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस, 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस्ड। Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370, Mammootty for Brahma Yugam and Kartik Aaryan for Chandur Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain to be India's flag and baton bearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. And in FIFA World Cup, France to clash with England for third place at Miami Stadium tonight. Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards today in New Delhi this evening, Chairman of Jury Feature Film Jairaj said Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahma Yugam and Chandu Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370.
4: बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल आर्टिकल 370 हिंदी फिल्म प्रनाउंस परफॉर्मेंस दैट पोर्ट्रेज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स अनवेयरिंग परस्यूट ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस विद सेंसिटिविटी करेज एंड कंपैशन ए परफॉर्मेंस दैट लीव्स अ प्रोफाउंड एंड लास्टिंग इम्पैक्ट एक्ट्रेस यामिनी गौतम बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल शेड चंदू चैंपियन हिंदी For a performance that transcends the conventions of a sports biopic, bringing an unsung hero story to life with dignity, sincerity, and lasting impact. Actor Karthik Aryan.
0: Chairman of Jury, non-feature film Asim Kumar Sinha said, Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the Best Non-Feature Film Award. Best Short Film is Hamsafar in Marathi. He said Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Pratik.
5: Best Direction, Statue of Unity, Ekta Ka Pratik, Hindi, Citation, for creatively chronicling the making of the world's tallest statue through dynamic cinematic storytelling, transforming and engineering marvel into a stirring tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, Unity and National Pride, Director Anand L. Rai. Best Short Film, Hamsafar Marathi. Through a compassionate cinematic narrative, the film reveals how ordinary objects become deeply personal and how their loss opens a poignant void sparking and heartfelt search for memory, identity, and emotional connection.
0: Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastav. Award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannada book, Nani Iruvude Nimagagi, Nadi Iruvude Nanagagi, Kannada Cinema, the Tattva Mattu Rajakiya. A report.
6: Rajkumar Periyasamy will get Best Direction Award for her Tamil film Amaran. Sanjay Mishra will receive the award for Best Actor in a Supporting Role, while Sachana Namidas and Rupashree Varkadi will receive the award for Best Actress in a Supporting Role. Shashwat Sajdev and G.V. Prakash Kumar will get the award for Best Music Direction. Abhay Jodhpurkar and Vaikom Vijayalakshmi will receive the Best Playback Singer Award. Telugu movie Chinna Kathakadu will get the Best Children Film Award. Kalki 2898 AD was named Best Feature Film, providing wholesome entertainment. Captain Miller has got award for Best Film Promoting National Social Values. Best Gujarati Film is Maran. Best Oriya Film is Lahari. Best Kannada Film is Mithya. Best Manipuri Film is Sunita. And Best Gadwali Film is Dholi. With Dipendra, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
0: Lok Sabha Speaker Om Birla has given approval for a separate seating in the House for the 20 rebel TMC MPs who have joined Nationalist Citizens Party of India, NCPI. Mr. Birla also gave his approval to the merger of 6 Shiv Sena UBT MPs with the Shiv Sena led by Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde. With the merger of the 6 MPs, the strength of the Shiv Sena has gone up to 13 from 7 in the lower house of Parliament. The government has convened an all-party meeting tomorrow ahead of the monsoon session of Parliament beginning on Monday. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of Parliament. The monsoon session will commence on Monday and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In Gujarat, 5 people were killed and several others injured today after a massive fire broke out at a firecracker manufacturing and processing unit on the Ramol Gutrad Road in Ahmedabad. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have expressed deep grief at the loss of lives in the fire and prayed for the speedy recovery of the injured. The Prime Minister announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. Our correspondent reports that the fire has been brought under control.
7: Following the tragic outbreak of a massive fire at fireworks factory in Ahmedabad, Rapid Action Force personnel from the nearby Vastral camp rushed to the site immediately to rescue the trapped workers and retrieve the bodies. The injured have been admitted to nearby hospitals for urgent medical treatment, while the Ahmedabad Fire Brigade has brought the blaze under control and initiated the cooling operations. Senior civic officials, including municipal commissioner and mayor, visited the spot to assess the situation. Expressing deep condolences over the tragedy, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel announced an ex gratia assistance of 4 lakh rupees to the next kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. Preliminary police investigation suggests that the manufacturing unit was operating illegally. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
0: Union Home Minister Amit Shah

आकाशवाणी है। आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में स्मृति शेष में नमन, फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं, जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
1: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जानी माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी, जाने माने फिल्मकार, अभिनेता, गायक और संगीतकार की भाग्यराज,
2: संग

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार

अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानूभाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एम एस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य भूमिका

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

0: बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थीं। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
1: प्यादे तो ठीक है
2: जी,
1: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा।
2: तो सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, लीमू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
3: बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साइज सगन विचार करें।
4: क्या खड़ा हो गया
5: यार? मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुई। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थीं। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक, दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थीं विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, एके हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं। पिस्टन जी, राव साहब और हमीदा बाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद निहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती रानी की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पेस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
6: तूने जरू की सूरत देखी है, उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष के अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने। बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी, बीमार, तू सुख नहीं बात करे। उस औरत ने तेरे को इतना सेल्फिश बना दिया है। पन खुदा ये सब देखता है, याद रख जे।
0: इस फिल्म को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
4: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर।
4: इसे दिग्गज कहना भी कम होगा, रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, यह सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज नेहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982। कड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की। 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखी।
7: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: पहलाज नेहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
8: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
0: पहलाज नेहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहाँ भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

उनकी कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्ना बीडू और इधु नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।

अनिल कपूर की 1983 में आई फिल्म वो सात दिन असल में के भागीराज की कल्ट तमिल फिल्म अन्ना सात नाटकल की हूबहू रीमेक थी।

तेलंगा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

के भागीराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रहीं। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा, आउटडोर में न अच्छी लाइटिंग होती है न आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बेताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो।

0: सन 1980 में भारती राजा ने अपनी फिल्म सिगप्पू रुज़ाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौटी।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा। सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया है।

ये आकाशवाणी का चाय भाषा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की आवाज़ में गजल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का गजलू का कार्यक्रम महफिल अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरों के रंग।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। पहला गाना है फिल्म अभिमान से, गायक लकार है लता मंगेशकर।

अभी आपने सुना फिल्म सुहागरात का ये नगमा, आवाज़ें थी किशोर कुमार की। और आई सुनते फिल्म राज में मोहम्मद रफ़ी को।

अभी आपने सुना फिल्म मदर इंडिया का ये नगमा, आवाज़ें थी मन्ना डे की, और आइए सुनते हैं फिल्म आकाशदीप में लता मंगेशकर को।

अभी आपने सुना फिल्म 20 साल बाद। इस फिल्म का गाना आवाज़ें थी लता मंगेशकर की। और आइए सुनते हैं फिल्म तीसरी कसम का ये गाना, आवाज़ें मन्ना डे और साथियों की है।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का सुरों की रंग कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकरी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गातात्र रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अडप्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।